मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज पर, एफएम पर 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 30वीं तिथि, तदनुसार 21 जुलाई 2026 ईस्वी। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय प्रातः के 5:56 हुए हैं। अब हमारी आज की ये सभा आरंभ होती है।

ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। सुबह के 6 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे समाचार। समाचार पहले हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण में उत्तरी मैसेडोनिया पहुंच गई हैं। ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की मैसेडोनिया की पहली यात्रा है। राष्ट्रपति मुर्मू मैसेडोनिया के राष्ट्रपति गोर्डाना सिल्जानोस्का दावोका के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे प्रधानमंत्री क्रिस्टियन मिकोस्की, असेंबली के स्पीकर अफ्रिम गाशी से भी मुलाकात करेंगी और उत्तरी मैसेडोनिया की असेंबली को संबोधित करेंगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचावास्केस से मुलाकात की। बैठक में डॉ. जयशंकर ने लैटिन अमरीका और कैरेबियाई क्षेत्र के लिए प्रवेश द्वार के रूप में पनामा के साथ भारत के संबंधों को और प्रगाढ़ करने के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने व्यापार, कारोबार, विकास, समुद्री मामलों, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और डिजिटल सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई। इससे पहले विदेश मंत्री ने भरोसा जताया कि पनामा के विदेश मंत्री की यात्रा से सभी क्षेत्रों में

0: द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। पनामा की विदेश मंत्री के साथ बैठक में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और पनामा आपसी साझेदारी प्रगाढ़ करने के लिए उत्सुक हैं। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन शुरुआत हंगामे से हुई। विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच कल दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही कई बार स्थगित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मॉनसून सत्र में सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया है। सत्र से पहले संवाददाताओं से बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा कि केवल एक महीने में देश ने कई उपलब्धियां प्राप्त की हैं।
1: मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं, और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो, और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
0: नई दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में 118 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि विरोध प्रदर्शन करने वालों ने पुलिसकर्मियों पर हमला किया, पुलिस और दूसरी सरकारी गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की। पुलिस ने कहा कि झड़प के दौरान करीब 60 प्रदर्शनकारियों के भी घायल होने की खबर है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में कल प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधि मंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य बनाने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से अयोध्या राम मंदिर के दान में कथित हेराफेरी की जांच के लिए विशेष जांच दल बनाने की संभावना के बारे में जानकारी मांगी है। सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को इस मुद्दे का राजनीतिकरण न करने की चेतावनी दी। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में मौसम विभाग द्वारा जारी रेड अलर्ट के मद्देनजर आज सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और सिरमौर जिलों में भी भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र के अनुसार मंडी जिले की 11 और चंबा जिले की 10 सड़कों सहित कुल 36 सड़कें बंद हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी ऐसा ही मौसम रहेगा। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल, कर्नाटक, तेलंगाना, विदर्भ और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बिजली गरजने और तेज हवाओं के साथ तूफान आने की आशंका व्यक्त की है। इस बीच दिल्ली में हुई बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दिलाई है। पीवी सिंधु आज से शुरू होने वाले चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय दल का नेतृत्व करेंगी। महिला सिंगल्स में सिंधु के साथ देविका सिहाग और उन्नति हुडा शामिल हैं। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी और HS प्रणॉय टीम का हिस्सा हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

भक्ति संगीत का वंदना कार्यक्रम। इस समय आप आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से सुन रहे हैं। आइए अब सुने नरेंद्र चंचल और साथियों की आवाज में भक्ति रचना।

0: अभी आप भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। लीजिए सुनिए चिंतन, वाचक स्वर स्वामिनी सत्या प्रभा का है।
1: जब भी हम आज का विषय है शिक्षा आदि है पराविद्या अपराविद्या। अपराविद्या जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली है जिसमें ज्ञान विज्ञान और भौतिकता के विकास की सारी दिशाएं हमारे सामने हैं और आज का मानव संपूर्णतया इसी को सब कुछ मान करके चल रहा है। विचार करें क्या विद्याओं का इतिहास मात्र 100-200 वर्षों का ही है? क्या ज्ञान की सीमा यहीं तक निर्धारित है? नहीं, भारतीय विद्याएं या जिसको हम पराविद्या के नाम से जान सकते हैं हजारों वर्ष पुरानी हैं। आज गणित की बात करते हैं, हमारे सामने पाइथागोरस

उरस आता है। दर्शन की बात करते हैं, हमारे सामने सुकरात आता है। विज्ञान की बात करते हैं, हमारे सामने आइंस्टीन आता है। बड़ा विचित्र लगता है, क्या भारत में कोई दार्शनिक नहीं हुआ? क्या भारत में कोई गणितज्ञ नहीं हुआ? क्या भारत में कोई वैज्ञानिक नहीं हुआ? ये सारे प्रश्न हमें सोचने को विवश करते हैं कि यदि हम भारतीय ज्ञान शाखाओं से परिचित होते तो हमारा ज्ञान इतना सीमित नहीं होता, संकुचित नहीं।

0: अपने आप को जान सके। वैदिक प्रसंग है जब याज्ञवल्क्य मैत्री से कहते हैं कि आपको क्या चाहिए, मैं सारी संपदा का बंटवारा कर देता हूँ। उस समय मैत्रेयी कहती हैं, येनाहम नामृतम स्यामे तेनाहम किम कुर्मह, उससे मुझे क्या जिससे मैं अमृतत्व को प्राप्त न कर सकूं। वस्तुतः जीवन का सार केवल भौतिक विकास में नहीं, उसके साथ साथ में अपने आप के विकास में निहित है, अध्यात्म के विकास में निहित है। और उस दिशा में यदि हमारा चिंतन जागृत होता है तो हम अपनी शक्तियों को पहचान सकते हैं और हमारा अपना अस्तित्व क्या है उसके प्रति भी एक जिज्ञासा जागृत कर सकते हैं। वैज्ञानिकों का चिंतन है कि आज तक हम एनर्जी की खोज करते रहे बाहर के जगत में, ऑब्जेक्ट पर ही रिसर्च करते रहे, लेकिन हमें अपने आप के अस्तित्व के लिए रिसर्च करनी बाकी है। हम सौभाग्यशाली हैं कि भारत में प्रारंभ से ही यह चिंतन रहा है। उस चिंतन को प्राप्त करके हम नया नवनीत प्राप्त कर सकते हैं। सौभाग्य यह भी है कि आज भी उन भारतीय विद्याओं के ज्ञाता हमारे सामने उपलब्ध है और अनेक ऐसे प्रशिक्षण के कार्यक्रम भी वे हमें प्रदान कर रहे हैं जिनके माध्यम से हम सर्वांगीण व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं, या आज की भाषा में कहें तो आध्यात्मिक वैज्ञानिक व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी द्वारा प्रदत्त प्रेक्षा ध्यान और जीवन विज्ञान ऐसे ही आयाम हैं जिनके माध्यम से एक व्यक्ति शारीरिक विकास भी कर सकता है, मानसिक विकास भी कर सकता है, बौद्धिक विकास भी कर सकता है और भावनात्मक विकास भी कर सकता है। आज की जो शिक्षा पद्धति है हम उसे गलत तो नहीं कहेंगे, लेकिन इतना अवश्य कह सकते हैं कि वह अपूर्ण है, क्योंकि भावनात्मक विकास का पक्ष वहाँ बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया गया है। एक वैज्ञानिक है, वह भी टेंशन में जीता है और उस टेंशन के चलते कई बार सुसाइड जैसी स्थितियाँ भी उसके सामने आ जाती हैं। तो एक अनपढ़ व्यक्ति और पढ़े लिखे व्यक्ति में अंतर क्या? अंतर होना यह चाहिए कि शिक्षा के माध्यम से हम अपने आवेगों पर, संवेगों पर नियंत्रण स्थापित करना सीख सकें, भावनात्मक विकास कर सकें, सबके प्रति प्रेम और मैत्री का भाव जागृत कर सकें।
1: ये था आज का चिंतन। वाचक स्वर स्वामिनी सत्या प्रभा का था। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं।

0: लक्ष्य रहेगा। नर्मा कपास में कीट नियंत्रण। ग्रामीण श्रोताओं के लिए कार्यक्रम चौपाल होगा शाम 7 बजे। इसमें चर्चा के विषय रहेंगे सुअर पालन, बरसात के मौसम में गहरे पानी और बिजली तारों से दूर रहें, मूंगफली में कीट नियंत्रण। इसके अलावा उपलब्ध होने पर मौसम और बाजार भाव की भी जानकारी दी जाएगी। लोक संगीत के कार्यक्रम मरु मंगल में सुबह 9:10 पर कलाकार होंगी सुलोचना खमीर। मानस गान सुनेगा सुबह 7:20 पर। इसमें आज आप सुनेंगे भक्त संख्या 311 है। सुबह 7:30 पर आप सुना करते हैं कार्यक्रम सुपर भात। आज इसमें विषय रहेंगे गुण यानी योग्यता पूजित है, विवेकशील बने, दुख सुख प्रदाता वाणी। कार्यक्रम सुगम संगीत में भजन सुनेगा सुबह 8:45 पर और चंद गजलें पेश की जाएंगी दोपहर 12:30 पर। हमारे केंद्र से फिल्म संगीत का समय रहेगा सुबह 9:30 11 बजे दोपहर 2:30 पर। गा मेरे मन गा ये कार्यक्रम सुनेगा सुबह 10 बजे। एक ही शीर्षक से कार्यक्रम 12:05 पर। आज का शीर्षक होगा कहानी। दिन में 1:05 पर कार्यक्रम सुनिएगा घर आंगन। इसमें विषय रहेंगे बुजुर्गों का सम्मान व घर के संस्कार, कुटीर उद्योग व योजनाएं, प्राकृतिक तरीकों से निखारे रूप, राजस्थान का प्रमुख भोजन। युवा श्रोताओं के लिए युववाणी कार्यक्रम होगा शाम 5 बजे। इसमें विषय रहेंगे विकसित भारत 2047 में युवाओं की भूमिका, भारत को स्टार्टअप कैपिटल बनाने में युवाओं का योगदान, परीक्षा प्रणाली, प्रतियोगिता परीक्षाएं और युवाओं की चुनौतियां, ऑनलाइन शिक्षा बनाम पारंपरिक शिक्षा और आज का इतिहास। सराय की आप सुना करते हैं शाम 6:05 पर। भक्ति संगीत शाम 7:45 पर। एक ही फिल्म से रात्रि 8:15 पर। हमारे दिल्ली और जयपुर केंद्र से कार्यक्रम होंगे उर्दू सर्विस के कार्यक्रम होंगे दोपहर 3 बजे से। जिले की चिट्ठी शाम 6:40 पर। अभी आप कार्यक्रम विवरण सुन रहे थे, ये आकाशवाणी सूरतगढ़ है। 6:55 होने वाले हैं। अब आप सुनेंगे समाचार।
1: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः स्वीय त्रिराष्ट्र आधिकारिक यात्रायाः द्वितीय चरणे उत्तर मैसेडोनिया देशं सम्प्राप्तवती। कस्यश्चित् भारतीय राष्ट्रपतेः उत्तर मैसेडोनिया देशस्य एषा प्रथमा आधिकारिक यात्रा वर्तते। राष्ट्रपतिः स्व समकक्षया गोर्दाना सिल्जानोस्का दावकोवा इत्यनया सह द्विपक्षीय वार्तां करिष्यति। सा उत्तर मैसेडोनिया देशस्य प्रधानमन्त्री क्रिस्टिजन मिकोस्की तथा संसदः अध्यक्षम अफ्रीम गाशी इत्येताभ्यां सह अपि मेलिष्यति। तदनन्तरं सा उत्तर मैसेडोनिया संसदं तथा भारतोत्तर मैसेडोनिया व्यापार मञ्चमपि सम्बोधयिष्यति। उभय देशौ कृषि औषधोद्योग विज्ञान प्रौद्योगिकी सूचना प्रौद्योगिकी सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवा क्षेत्रेषु आर्थिक सहयोगम इतोपि सुदृढीकर्तुं रुचिं प्रदर्शितवन्तौ। राष्ट्रपति ही सेंट्स पास चर्च इत्यत्र अभी गमिष्यति। ह्यः नवदिल्ल्यां यदा विरोध प्रदर्शनम हिंसायां परिवर्तितः तदा अष्टादशोत्तरैक शततोप्यधिकाः आरक्षकाः व्रणिताः। व्रणितेषु विशेषारक्षक आयुक्तः, संयुक्तारक्षकायुक्तः, अपरायुक्तः, उप आरक्षकायुक्तः, अन्ये च वरिष्ठाधिकारिणः सम्मिलिताः सन्ति। एकस्मिन् वक्तव्ये दिल्ल्याः आरक्षकाः अवदन् यत् विरोध प्रदर्शनसमये प्रदर्शनकारिभिः आक्रामकं हिंसात्मकं च आचरणं प्रदर्शितम्।

ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। किसान भाइयों के लिए प्रातः है 7:10 पर। खेतीहर वास्ते कार्यक्रम में जानकारी का विषय रहेगा फल वृक्षों में सिंचाई व्यवस्था। दिन में 12:50 पर खेत खलिहान में सुनेंगे जानकारी जिसका

0: पुनः पूर्वसूचनाः विधिसम्मतानि निर्देशानि च प्राप्यापि ते विद्रोहं कृतवन्तः, प्रवर्तमानानां निषेधात्मक आदेशानां च उल्लङ्घनं कृतवन्तः। दिल्ल्यारक्षिबलेन उक्तं यत् प्रदर्शनकारिभिः आरक्षकाणाम् उपरि आक्रमणं कृतवन्तः, आरक्षकाणां प्रशासकीयवाहनान् च भङ्गं कृत्वा हिंसाम् आचरितवन्तः, येन सार्वजनिकव्यवस्थायाः कृते गम्भीरा विभीषिका समुत्पन्नासीत्। बलेन उक्तं यत् अवशिष्ट व्रणितानां आरक्षक कर्मचारिणां चिकित्साविधि परीक्षणं प्रचलति। दिल्ल्यारक्षिबलेन उक्तं यत् कलह समये प्रायः 60 आन्दोलनकारिणः अपि व्रणिताः जाताः। ते उक्तवन्तः यत् प्रायः 70 प्रदर्शनकारिणः निगडिताः सन्ति, समुचितविधिप्रक्रिया आरब्धा अस्ति। सहैव भारतीयन्यायसंहितायाः प्रासङ्गिकोपबन्धैः अथ अन्यप्रासङ्गिकविधिभिः च FIR प्राथमिकी इति पञ्जीकृतमस्ति। युक्रेन देशस्य ओडेसा पत्तनात् प्रस्थानावधौ MV गोल्डन लियो इत्यस्यां नौकायां कृताक्रमणस्य भारतेन निन्दा कृता। विदेशमन्त्रालयः एकस्मिन् वक्तव्ये अवदत् यत् चत्वारः भारतीयाः नागरिकाः दुर्दैववशात् मृत्युमुपगताः, एकः गम्भीरावस्थायां चिकित्सालये उपचाराधीनः अस्ति। मन्त्रालयेन उक्तं यत् उपलब्धसूचनानुसारं घटनासमये 5 भारतीयनागरिकैः सह 17 चालकदलस्य सदस्याः आसन्। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः नवदिल्ल्यां पनामादेशस्य विदेशमन्त्रिणा हेवियर एडवार्डो मार्टिनेज आचा वास्केज इत्यनेन सह मेलनं कृतवान्। ह्यः जाते उपवेशने डॉ जयशंकरः लैटिन अमेरिका कैरिबियन क्षेत्रयोः प्रवेशद्वाररूपेण पनामादेशेन सह भारतस्य सम्बन्धस्य गहनतायाः महत्वम् अधोरेखितवान्। व्यापारोद्योग विकास स्वास्थ्य कृषि शिक्षा आंकिकीय सहयोगादीनां प्रगति विषये उभौ विस्तृतं विमर्शं कृतवन्तौ। बहुपाक्षिक मञ्चेषु सहभागित्वस्य विषये अपि तौ अवदताम्। प्रशासनेन संसूचितं यत् अस्य वर्षस्य जून मास पर्यन्तं देशे प्रायः 51,55,55 कोटि उपयोक्तारः UPI इत्यनेन सह सम्बद्धाः जाताः इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। तीन राष्ट्रों की यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तरी मैसेडोनिया पहुंच गई हैं। ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की उत्तरी मैसेडोनिया की पहली यात्रा है। राष्ट्रपति मुर्मू मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्डाना सिल्जानोवस्का दावकोवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे प्रधानमंत्री क्रिस्टीजन मिकोस्की और असेंबली के स्पीकर आफ्रिम गाशी से भी मुलाकात करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू उत्तरी मैसेडोनिया की असेंबली को संबोधित भी करेंगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज से मुलाकात की। बैठक में डॉ जयशंकर ने लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई क्षेत्र के लिए प्रवेश द्वार के रूप में पनामा के साथ भारत के संबंधों को और प्रगाढ़ करने के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने व्यापार, कारोबार, विकास, समुद्री मामलों, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और डिजिटल सहयोग को आगे बढ़ाने सहित कई मुद्दों पर व्यापक चर्चा की। इससे पहले विदेश मंत्री ने भरोसा जताया कि पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज की सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करेगी। पनामा के विदेश मंत्री के साथ बैठक में डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देश आपसी साझेदारी को प्रगाढ़ करने के लिए उत्सुक हैं। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच कल दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही कई बार स्थगित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मानसून सत्र में सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया है। सत्र से पहले संवाददाताओं से बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा कि महज एक महीने में देश ने कई

0: उपलब्धियां हासिल की हैं।
1: मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है और देशवासी गर्व से भर जाएं, इस प्रकार की सिद्धियों का सिलसिला चला है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
0: नई दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में 118 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि विरोध प्रदर्शन करने वालों ने पुलिसकर्मियों पर हमला किया, पुलिस और दूसरी सरकारी गाड़ियों में तोड़फोड़ की और हिंसा की। पुलिस ने कहा कि झड़प के दौरान करीब 60 प्रदर्शनकारियों के घायल होने की भी खबर है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से कल मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और सामान्य स्थिति बहाल करने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से अयोध्या राम मंदिर के दान में कथित हेराफेरी की जांच के लिए विशेष जांच दल बनाने की संभावना के बारे में जानकारी मांगी है। सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को इस मुद्दे का राजनीतिकरण न करने की चेतावनी दी है। जब उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले में विशेष जांच दल की जांच के बारे में जानकारी देगी तो सर्वोच्च न्यायालय इस महीने की 27 तारीख को याचिका पर फिर से सुनवाई करेगा। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में मौसम विभाग द्वारा तेज बारिश का रेड अलर्ट के मद्देनजर आज सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और सिरमौर जिलों में तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र के अनुसार मंडी जिले की 11 और चंबा जिले की 10 सड़कों सहित कुल 36 सड़कें बंद हैं। भारत ने डेंगू की पहली वैक्सीन को मंजूरी दी है। औषधि महानियंत्रक ने टेकोडा बायोफार्मास्यूटिकल्स इंडिया की क्यूडेंगा वैक्सीन के विपणन की अनुमति दी है। और पीवी सिंधु आज से शुरू होने वाले चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय दल का नेतृत्व करेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. The National Democratic Alliance NDA Parliamentary Party's weekly strategy meeting, now known as Mangal Milan, will be held in the Parliament House this morning. Prime Minister Narendra Modi is scheduled to address the meeting. The meetings are traditionally held on Tuesdays during Parliament sessions with an intent to demonstrate complete alliance unity. On the second leg of a three-nation state visit, President Draupadi Murmu has reached North Macedonia. This is the first ever visit by an Indian president to North Macedonia. President Murmu will hold bilateral talks with a Macedonian counterpart, Gordana Siljanovsku Davkova. She will also meet the Prime Minister Hristijan Milskosti, Speaker of the Assembly, Afrim Gashi, and will also address Assembly of North Macedonia. The President will also address India-North Macedonia Business Forum. Both sides have keen interests in deepening economic ties in the priority sectors like agriculture, pharmaceuticals, science and technology, IT and ITES. President Murmu is also scheduled to visit the Church of St. Spa and will also lay a wreath at the grave of eminent Macedonian revolutionary Gotse Delchev. External Affairs Minister S. Jaishankar met his Panamanian counterpart Javier Eduardo Martinez Achavasque in New Delhi. During the meeting, Dr. Jaishankar underscored the importance of deepening India's engagement with Panama as a gateway to Latin America and the Caribbean region. Both leaders held wide-ranging discussions, including advancing trade, business development, maritime, health, agriculture, education and digital cooperation. They also spoke about engagement at the multilateral fora.
3: Panama serves as a natural bridge for us, for global trade routes, gateway for the wider Latin

0: America region, and anchored by the Panama Canal, your logistics infrastructure certainly sets a global landmark. We value your interest in collaborating across a wide array of domains from education, scholarships, pharmaceuticals, technology, and of course, most important, trade. We note that you have had a consistently high growth trajectory, and as we ourselves accelerate our development towards the quest of Viksit Bharat or developed India by 2047.
1: India condemned the attack on the vessel MV Golden Leo while departing the port of Odisha in Ukraine. External Affairs Ministry said four Indian nationals have tragically lost their lives while one is hospitalized in a critical condition. The ministry said that at the time of the incident, there were 17 crew members on board, including five Indian nationals. The ministry has reiterated that targeting commercial shipping and endangering innocent civilian crew members or otherwise impeding freedom of navigation and commerce is deplorable and should be avoided. The ministry said that the Indian mission in Ukraine is closely monitoring the situation and is making every effort to extend all possible assistance to those affected. The government of India extended deepest condolences to the families of the deceased Indian nationals and wished them speedy and full recovery. More than 118 police personnel sustained injuries yesterday when a protest escalated into violence in New Delhi area. The injured include senior officers of the ranks of Special Commissioner of Police, Joint Commissioner of Police, Additional Commissioner and Deputy Commissioner of Police. In a statement, Delhi police said during the protest, the protesters displayed unruly, aggressive and violent behavior. And despite repeated warnings and lawful directions, they refused to disperse and violated the prohibitory orders in force. National Security Advisor Ajit Doval has been selected for this year's prestigious Lokmanya Tilak National Award. The award will be presented on August 1st in Pune on the occasion of the 106th death anniversary of Lokmanya Tilak. In hockey, the Indian sub-junior men's and women's teams made a winning start to their respective campaigns at the FIH Youth Hockey Asian Championship 2026 in Muscat, Oman yesterday. The Indian women's team was the first to start its campaign on the tournament's opening day against Kazakhstan and won 8-3. Ace Indian shuttler PV Sindhu is set to lead India at the China Open 2026 badminton tournament beginning today. Sindhu will face compatriot Unnati Hooda in opening round of 32 clash of the women's singles today. Devika Sihag will also compete in the women's singles draw. Moreover, Lakshya Sen, Ayush Shetty and Aegis Pranoy are the three Indian entries in the men's singles draw. And that is the end of this news bulletin.
2: ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेतीहर वास्ते। आज इसमें जानकारी का विषय है फल वृक्षों में सिंचाई व्यवस्था।
3: किसान भाइयों राम राम। भाई लोग अपने भांत भांत की फसल लगे इनके साथ साथ अपने क्षेत्र में भाई लोग जो बाग बगीचा भी खूब लगावा, पर अब इन टाइम में बाग बगीचा की देखभाल करना बहुत जरूरी है। विशेष तौर जब भी अपने ठंड पड़ती हो तो पाले से हर एक बूंटे ने बचाना आप जरूरी है। तो सारों अच्छो तरीको ये कि जब भी आप पौधे ने आप टाइम से सिंचाई करता रहा ताकि पालो भी ने कम से कम असर कर सके। जटे भी हो सहनशील किस्मों को आपने चुनाव करना चाहिए, जहाँ नींबू प्रजातियों में किन्नू है, माल्टा है, बारामासी और कागजी नींबू आंगो चयन करना चाहिए। जगह छोटा बूंटा है वहां चारों तरफ आपने घास है, फूस है, खींप है, केर है, सरकंडो है, तो आंगो चार अच्छी तरह ढक के रखना चाहिए। बागे किनारा में आसपास घास फूस है वो ढेरी कर देनी चाहिए। जगह दिन आपने संभावना हो कभी अब आज पाड़ो पड़सी तो बीन टाइम रात ने आधी रात ने बने दुखा देनी चाहिए, तो धुएं छूके कि वातावरण गर्म हो जाए, बूंटा को जो बचाव हो जाए। ज्यादा ठंड या पाड़ो पड़ने वाले दिन जो आपने सिंचाई कर देनी चाहिए। पर अब अपने क्षेत्र में भाई लोग जो का किन्नू का बाग बगीचा लगा रखा है, तो अब जगह बाग बगीचा पूरा पाकेड़ है, तो बाद में कई बातों का अपने ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सारों वाई के जगह पूर्ण रूप में पाक के बाग तो बने फसल तुड़ाई करते टाइम बड़ी सावधानी रखनी चाहिए। जबकि क्योंकि अपने तुड़ाई एक तो शाम के टाइम करनी चाहिए, सुबह के टाइम धूप न हो या कम तापमान हो, परंतु ध्यान देने वाली बात आई है कि दिनों के टाइम फल पर ओस या गिलो न हो। फल की कटाई डाली से कैंची या क्लिपर के द्वारा नजदीक से डंडी ने काट के करनी चाहिए, जब डंडी लंबी नहीं रहनी चाहिए। फलांग सागा आप गालां तो भी मैं क्या एक दूसरा फल नुकसान नहीं दो या निबाने सुराख नहीं हो जाए, छेद नहीं हो जाए, तो ये भी आपने सावधानी जकी रखनी चाहिए। पर इनके साथ साथ और भी जगह काट छांट बांगो भी ध्यान रखना चाहिए। जगह अंगूर है, अनार है, फाल्स है, आड़ू है, आम भी आपने काट छांट जकी करनी चाहिए। सूखे रोगस्त जकी शाखा में बने काट देना चाहिए। काट छांट के तुरंत

0: बाद 1 सेंटीमीटर की मोटी टेन यानी ब्रोडेक्स पेंट यानी कापर सल्फेट नीलो थोथो 1 किलोग्राम, बुजड़ो चुनो 2 किलोग्राम, श्रेस 400 ग्राम और पानी 40 लीटर इनमें घोल बनाकर इनको लेप करके लगा देना चाहिए। खाद और उर्वरक की बात करें तो जिया जिया बूटे की उम्र हो भी हिसाब अपने खाद और उर्वरक का जो देना चाहिए। पर सिंचाई की बात करें तो कांट छांट के और खाद देने के तुरंत बाद है जबकि अपने सिंचाई कर देनी चाहिए। जबकि भाई लोग बेर का बगीचा लगा रखा है और बेर तो एक ईसो बगीचा है जो अपने मरु प्रदेश में कम पानी वालो बगीचो है, तो इनमें सारा मोटी सावधानी आई रखनी के कम पानी में अलग है। पर आप आशु लाभ आप ज्यादा जदि ले सका जाग टेम सरो देखभाल करा तो बेर के बगीचा में अब जो फल मक्खी को प्रकोप हो रहा है, फल मक्खी बेर को सारों ज्यादा हानिकारक कीट है। जब फल छोटा और हरिया हुआ है तो वो कीट ने आक्रमण शुरू कर दिया। शुरू में फल एक लट के रूप में पाए जाए, छोटा फलिंग का प्रभाव के कारण काणा हो जाए, लेकिन बड़े फलांगों आकार में कोई विशेष अंतर कौन पड़े और लटा अंदर में पूरा फल खा गए फिर बाहर निकले, जगह कारण कहेंगी गुणवत्ता जकी बेरगी खत्म हो जाए। पर इनकी रोकथाम खातर अपने कई उपाय जगह करना चाहिए। तो जब भी बेरगी फसल में फल मक्खी को प्रकोप हो तो मोनोक्रोटोफॉस 36 SL 1 मिलीलीटर या डाईमिथोएट 30 CC 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव कर देना चाहिए। ज्यादा हुए तो दूसरा छिड़काव जो 15-20 दिन का अंतरा पर आपने दोहरा देना चाहिए। चेफर बिटल की बात करें वो भी एक हानिकारक कीट है, जब वातावरण में नमी हुए तो बिन टाइम वो आक्रमण आपको शुरू करे। इनकी रोकथाम खातर भी आपने मोनोक्रोटोफॉस 36 SL 1 मिलीलीटर या कार्बोरिल 4 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना के बेड़ों के ऊपर आपने छिड़काव जो कर देना चाहिए। छाल भक्षक कीट की बात करा तो वो भी एक कीट है जो बेरगी पेड़ की छाल ने खाऊ तो रहे धीरे धीरे बिंग माँ भी छिपड़ो रहे, पर जब भी वो डाली में अंदर तय जाए तो गहरी सुरंग बना ले, जबकि शू कदे कदे डाली शाखा कमजोर हो जाए गिर जाए तो इनकी नियंत्रण खातर जकी सूखी डाली बिन काट के जला देनी चाहिए। मेलाथियान 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी ने घोल बना के शाखाओं और डालियों में छिड़क देना चाहिए। सुरंग ने अच्छी तरह साफ करके पिचकारी की सहायता से बिंग माँ केरोसिन 305 मिलीलीटर प्रति सुरंग में डालकर अच्छी तरह रूई के फोम में लगा के दबा देना चाहिए। ऊपर गिली मिट्टी है जकी लगा देनी चाहिए। तो ई शाह बापा आपने जगह भी बेर का बगीचा है या जगह भी बाग बगीचा आपने तो बंग आप देखभाल है जबकि टेम सारू कर सका तो इन तरह आप अपने बाग बगीचा में टेमो सारू काम धाम कर गए और बांसू आप अच्छो लाभ है जो को ले सका। तो किसान भाइयों अब हूँ खेत का नहीं चालू, राम राम सा राम राम।
1: फल वृक्षों में सिंचाई व्यवस्था, अभी किसान भाई इस विषय पर खेतिहर वास्ते कार्यक्रम में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। लीजिए सुनिए लोक भजन। कलाकार हैं भंवरलाल सोलंकी।

अभी आप लोक भजन सुन रहे थे। कलाकार थे भंवर लाल सोलंकी। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए मानस गान। इसमें सुनते हैं भाग संख्या 311, मुख्य स्वर भूपेंद्र सिंह और श्रीकांत पारगांवकर का है।

अंगद के मुख से कई रावणों के उपहास की कथाएं सुन रावण तिरस्कार भरे स्वर में बोला, मूर्ख वानर, मैं वही रावण हूं जिसकी भुजाओं का बल कैलाश पर्वत को ज्ञात है, जिसका पराक्रम स्वयं महादेव जानते हैं, जिसने अगणित बार अपने सिर काट और चढ़ाकर उनकी पूजा की थी, दिशाओं की रक्षा करने वाले हाथियों के विशालकाय दांत मेरी छाती से टकराकर गाजर मूली की तरह टूट गए थे, मेरे चलने मात्र से पृथ्वी ऐसे डोलती है मानो भूकंप आ गया हो, मैं वही जगत प्रसिद्ध रावण हूं। क्या ये सब तूने अपने कानों से नहीं सुना, जो मुझे छोटा समझ एक मनुष्य की बड़ाई करता है? तू कितना अज्ञानी है अब मैं समझ गया। रावण के वचन सुन अंगद श्री राम की महिमा और

अनंत शक्ति का बखान करते हुए कहते हैं, तू मूर्ख है जो श्री राम को साधारण मनुष्य, हनुमान को वानर, कामदेव को धनुर्धर, कल्प वृक्ष को एक सामान्य पेड़, गरुड़ को मात्र एक पक्षी और शेषनाग को एक मामूली सर्प समझता है। यदि तूने श्री राम से वैर मोल लिया तो ब्रह्मा और रुद्र भी तेरी रक्षा नहीं कर सकेंगे।

मानस गान की भाग संख्या 311 है। अभी आपने सुनी मुख्य स्वर भूपेंद्र सिंह और श्रीकांत पारगांवकर कर का था। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतकर से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुप्रभात। कार्यक्रम सुप्रभात सुनने वाले सभी श्रोताओं को आज नमस्कार देवेंद्र शर्मा की ओर से। श्रोताओं, गुण यानी योग्यता पूजित है। श्रोता, व्यक्ति अपने रूप पद या कुल से नहीं बल्कि अपने गुणों और योग्यता के कारण पूजा और सम्मान पाता है। श्रोता, संसार में मनुष्य का मूल्य उसकी रूप रंग वेशभूषा धन दौलत या उच्च कुल से नहीं बल्कि उसके गुणों योग्यता और चरित्र से आंका जाता है। संस्कृत में एक प्रसिद्ध उक्ति है, गुणा सर्वत्र पूज्यन्ते न पितृ विभवा, अर्थात गुण ही सब जगह पूजे जाते हैं, पिता की धन दौलत या नाम नहीं। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जिन लोगों ने अपने जीवन में सद्गुणों ज्ञान और कर्मनिष्ठा को स्थान दिया वे ही अमर हुए। बाहरी चमक दमक और उच्च पद तात्कालिक आकर्षण तो दे सकते हैं लेकिन सच्चा आदर और स्थायी सम्मान केवल व्यक्ति की आंतरिक योग्यता और गुणों से ही प्राप्त होता है। गुण केवल किताबी ज्ञान या किसी विशेष कला तक सीमित नहीं है, गुण का व्यापक अर्थ है।

जब योग्यता के साथ नम्रता और सदाचार का संगम होता है तब व्यक्ति समाज के लिए एक आदर्श बन जाता है। फूल की सुगंध हवा के रुख के साथ फैलती है, परंतु गुणी व्यक्ति की कीर्ति चारों दिशाओं में बिना किसी सीमा के फैलती है। श्रोतो, गुण जन्मजात होने के साथ साथ अभ्यास और साधना से भी अर्जित किए जाते हैं। गुणों के विकास के लिए निरंतर अपने ज्ञान और कौशल को लगातार तराशना पड़ता है। श्रोतो, यह पूरी तरह सत्य है कि गुण ही पूजित है। भौतिक वस्तुएं, धन और बाहरी रूप समय के साथ नष्ट हो जाते हैं, लेकिन व्यक्ति के गुण और उसकी योग्यता अमर रहती है। हमें अपने जीवन में बाहरी दिखावे और आडंबरों से दूर रहकर अपने आंतरिक गुणों, ज्ञान और चरित्र के निर्माण पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अंततः संसार में वही व्यक्ति याद रखा जाता है जिसने अपनी योग्यता से समाज और मानव जाति का कल्याण किया हो।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: श्रोताओं, मानव जीवन ईश्वर की सबसे सुंदर और अनुपम कृति है। ईश्वर ने मनुष्य को सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता प्रदान की है। इसी क्षमता का नाम विवेक है। विवेकशील होने का अर्थ केवल शिक्षित होना नहीं है, बल्कि परिस्थिति के अनुसार सही और गलत, सत्य और असत्य तथा स्थायी और क्षणिक के बीच अंतर करने की क्षमता रखना है। अज्ञानता और भावावेश में आकर लिए गए निर्णय अक्सर दुख और पश्चाताप का कारण बनते हैं, जबकि विवेक के आधार पर लिया गया एक छोटा सा निर्णय भी जीवन की दिशा बदल सकता है। इसीलिए भारतीय संस्कृति में कहा गया है कि विवेक ही मनुष्य का सच्चा मार्गदर्शक और मित्र है। श्रोताओं, जिस प्रकार हंस दूध और पानी को अलग अलग करने की क्षमता रखता है, उसी प्रकार एक विवेकशील व्यक्ति हर परिस्थिति से अच्छाई को ग्रहण करता है और बुराई का त्याग कर देता है। कठिन परिस्थितियों में क्रोध या भय के वशीभूत न होकर शांत मन से विचार करना ये विवेकशील व्यक्ति का कर्तव्य है। श्रोताओं, विवेकशील बनना जीवन को सही अर्थों में जीने की कला है। विवेक मनुष्य के भीतर की वह रोशनी है जो अंधेरे से अंधेरे रास्ते पर भी सही दिशा दिखाती है। यह हमें न केवल एक सफल व्यक्ति बनाती है, बल्कि समाज में एक जिम्मेदार, संवेदनशील और आदरणीय नागरिक भी बनाती है। इसलिए जीवन के प्रत्येक मोड़ पर जल्दबाजी, अति उत्साह और

को त्याग कर विवेकशीलता को अपनाएं। जब बुद्धि और मन पर विवेक का अंकुश होगा, तभी जीवन में वास्तविक शांति, सफलता और आनंद की प्राप्ति होगी।

श्रोताओं, ईश्वर ने संसार के समस्त जीव जंतुओं में केवल मनुष्य को ही मधुर और अर्थपूर्ण वाणी का अनमोल उपहार दिया है। वाणी मनुष्य के विचारों, भावनाओं और संवेदनाओं को प्रकट करने का सबसे सशक्त माध्यम है। यह एक ऐसा द्विधारी अस्त्र है जिसका सही उपयोग किया जाए तो वह जीवन में शांति, प्रेम और सुख लाती है, और यदि इसका दुरुपयोग हो तो यह भयंकर दुख, कलेश और विनाश का कारण बन जाती है। इसलिए यह कहा गया है कि वाणी ही मनुष्य के जीवन में सुख और दुख की सबसे बड़ी परदाता है। हमारी बोली ही यह तय करती है कि हम समाज में आदर पाएंगे या तिरस्कार। श्रोतो, वाणी मनुष्य की वह शक्ति है जो चाहे तो जीवन को स्वर्ग बना दे या नरक। यह पूरी तरह हमारे हाथ में है। हम अपनी वाणी से दूसरों को स्वयं को सुख देना चाहते हैं, दुख। शब्दों में अपार ऊर्जा होती है। यदि हम अपनी वाणी को संयमित, मधुर और सत्य के धागे से पिरोकर प्रयोग करेंगे तो हमारा जीवन और समाज प्रेम, शांति और अखंड सुख से भर जाएगा। इसलिए सदैव याद रखें, बोलने से पहले तोलिए, फिर मुंह खोलिए।

श्रोताओं, एक और नगमा सुनते हैं। इसी आवाज़ में लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म अनामिका का।

0: बाहू में चले आ।
1: श्रोताओ, इसी के साथ कार्यक्रम समाप्त करने के अपने साथी देवेंद्र शर्मा को दिया गया नमस्कार। अभी आप कार्यक्रम सुप्रभात सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। 8 बजने को है, अब आप सुनेंगे समाचार।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संसद भवन में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन संसदीय दल की बैठक को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज स्कोपिये में उत्तरी मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्दाना सिल्यानोवस्का दाफकोवा के साथ वार्ता करेंगी। यूक्रेन के ओडेशा बंदरगाह के पास एक व्यापारिक जहाज पर हुए हमले में 4 भारतीयों की मौत, 1 घायल। भारत ने हमले की निंदा की। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वरिष्ठ नागरिकों, विधवा और दिव्यांगों के लिए मासिक पेंशन बढ़ाई। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जवाबी कार्रवाई की चेतावनी के बाद अमरीका ने ईरान पर घातक हमले किए। और पीवी सिंधु आज से शुरू हो रहे चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत का नेतृत्व करेंगी। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक मंगल मिलन आज संसद भवन में होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक को संबोधित करेंगे। सत्र के दौरान ये बैठक पारंपरिक रूप से मंगलवार को आयोजित की जाती है। बैठक का उद्देश्य गठबंधन की पूर्ण एकता और समन्वय को प्रदर्शित करना है। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच कल दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही कई बार स्थगित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मानसून सत्र में सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया है। सत्र से पहले संवाददाताओं से बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि महज एक महीने में देश ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं।
4: मानसून हो या मानसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं, और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो। भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।

0: तीन राष्ट्रों की यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तरी मैसेडोनिया पहुंच गई हैं। ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की उत्तरी मैसेडोनिया की पहली यात्रा है। राष्ट्रपति मुर्मू स्कोपिये में मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्दाना सिल्यानोवस्का दाफकोवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे प्रधानमंत्री क्रिस्टिजन मिकोस्की और असेंबली के स्पीकर आफ्रिम गाशी से भी मुलाकात करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू का उत्तरी मैसेडोनिया की असेंबली को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज से मुलाकात की। बैठक में डॉक्टर जयशंकर ने लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई क्षेत्र के लिए प्रवेश द्वार के रूप में पनामा के साथ भारत के संबंधों को और प्रगाढ़ करने के महत्व पर बल दिया।
1: पनामा वैश्विक व्यापार मार्गों के लिए एक प्राकृतिक सेतु और व्यापक लैटिन अमेरिकी क्षेत्र का प्रवेश द्वार है। पनामा नहर के कारण यहाँ की लॉजिस्टिक अवसंरचना विश्व स्तर पर एक महत्वपूर्ण पहचान रखती है। हम शिक्षा, छात्रवृत्ति, औषधि उद्योग, प्रौद्योगिकी और सबसे महत्वपूर्ण व्यापार सहित अनेक क्षेत्रों में आपके सहयोग और साझेदारी की रुचि की सराहना करते हैं। हमें विश्वास है कि इन क्षेत्रों में मिलकर कार्य करने से दोनों देशों के बीच आर्थिक, शैक्षिक और तकनीकी संबंध और अधिक सुदृढ़ होंगे।
0: श्री जयशंकर ने बेल्जियम के राष्ट्रीय दिवस पर वहां के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मैक्सिम प्रिवोट तथा देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत बेल्जियम के साथ अपनी बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने यूक्रेन के ओडेशा बंदरगाह से रवाना हो रहे जहाज एमवी गोल्डन लियो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई, जबकि 1 भारतीय गंभीर रूप से घायल है। मंत्रालय के अनुसार घटना के समय जहाज पर 17 चालक दल के सदस्य सवार थे, जिनमें 5 भारतीय नागरिक शामिल थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि यूक्रेन स्थित भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता उपलब्ध करा रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने 1 अगस्त से वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन जैसी सामाजिक कल्याण पेंशन योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाली मासिक आर्थिक सहायता को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये करने की मंजूरी दी है। कल जारी एक आदेश में सरकार ने कहा कि बढ़ी हुई राशि सभी पात्र लाभार्थियों को मौजूदा प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण DBT प्रणाली के माध्यम से दी जाएगी। निर्वाचन आयोग आज कोलकाता में डाक मतपत्र प्रणाली को अधिक समावेशी, सुरक्षित और सुलभ बनाने पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के सभी 24 चुनावी जिलों के चुनाव अधिकारी, साथ ही भारत और कई अन्य देशों के चुनाव प्रशासक, नीति निर्माता, शिक्षाविद और चुनाव विशेषज्ञ शामिल होंगे। चर्चा का मुख्य विषय पोस्टल बैलेट और विशेष मतदान व्यवस्थाओं को ज्यादा समावेशी, सुलभ और सुरक्षित बनाने के तरीकों पर होगा। पश्चिम बंगाल की मुख्य चुनाव अधिकारी नीलम मीना इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। कार्यक्रम में पोस्टल बैलेट, चुनावी निष्पक्षता बनाए रखने, धोखा धड़ी रोकना, ऑडिट सिस्टम, कानूनी ढांचे, टेक्नोलॉजी पर आधारित विशेष वोटिंग सिस्टम और रिमोट वोटिंग के भविष्य जैसे विषयों पर सत्र होंगे। अंतर्राष्ट्रीय सत्र के दौरान नेपाल, अल्बानिया, बोस्निया और हर्जेगोविना और अन्य देशों के चुनाव विशेषज्ञ वर्चुअली अपने अनुभव साझा करेंगे। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।

0: हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मानसून सक्रिय है और कई क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्थानीय मौसम विभाग ने आज राज्य के 5 जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है।
1: हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार हो रही मानसूनी वर्षा से जनजीवन प्रभावित हुआ है। भूस्खलन के कारण अनेक संपर्क सड़कें अवरुद्ध हैं, जबकि कुछ क्षेत्रों में बिजली और पेयजल आपूर्ति भी बाधित हुई है। प्रभावित इलाकों में बहाली का कार्य जारी है। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज कांगड़ा, मंडी, चंबा, सिरमौर और कुल्लू जिलों में भारी से अत्यधिक भारी वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। एहतियात के तौर पर कांगड़ा, मंडी, चंबा और सिरमौर जिलों में सभी सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों को आज लगातार दूसरे दिन भी बंद रखने का निर्णय लिया गया है। प्रशासन ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों से अनावश्यक यात्रा से बचने तथा नदियों, नालों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: उधर जम्मू कश्मीर में बारिश से जुड़ी नई घटनाओं में एक महिला और उसके दो बच्चों सहित 11 लोगों की मौत हो गई है। इससे पिछले 3 दिनों में मरने वालों की संख्या 23 हो गई है। इस बीच मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी दिन के दौरान मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। सिक्किम के नामची जिले के समरडुंग में NHPC जल विद्युत परियोजना की बन रही सुरंग में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए तलाश और बचाव अभियान जारी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: ये घटना कल दोपहर दक्षिण सिक्किम के समरडुंग में NHPC प्रोजेक्ट पर घटी। NDRF, SDRF और दूसरी एजेंसियों को तुरंत ही बचाव कार्यों में लगाया गया है, लेकिन गैस लीक होने के कारण बचाव दल शुरुआत में घटना स्थल तक नहीं पहुंच पाए थे। हालांकि सभी की कोशिशों से अब तक 8 शव बरामद किए जा चुके हैं। माना जा रहा है कि भूस्खलन के कारण बन रही सुरंग को नुकसान पहुंचा है, लेकिन असली वजह अब तक नहीं पता चल पाया है। बचाव दल फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिनमें मजदूर, NHPC के अधिकारी और एक प्राइवेट इंजीनियरिंग फर्म के कर्मचारी शामिल हैं। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एंडी बर्नहम को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि भारत और ब्रिटेन साझा लोकतांत्रिक मूल्यों से बंधे हैं और दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा और जन संबंधों में व्यापक सहयोग है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी जवाबी कार्रवाई की चेतावनी देते हुए कहा है कि ईरान को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हाल ही में जॉर्डन में 2 अमेरिकी सैनिकों और इराक में 1 सैनिक के मारे जाने के बाद उनकी ये चेतावनी आई है। इस बीच अमेरिकी सेना ने आज ईरान के खिलाफ नए हमलों की शुरुआत की है। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इन हमलों का उद्देश्य ईरान की उस सैन्य क्षमताओं को और कमज़ोर करना है, जिनका इस्तेमाल हॉर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाज़ों पर हमले के लिए किया जाता है। इससे पहले ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने कहा कि उसने ईरानी प्रांतों पर अमरीकी हमलों के जवाब में मिसाइल और ड्रोन हमलों के 3 दौर के जरिए बहरीन और कुवैत में अमरीकी संपत्तियों और ठिकानों पर तेज प्रहार किए हैं। चाइना ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता आज से शुरू हो रही है। प्रतियोगिता में भारत का नेतृत्व पीवी सिंधु करेंगी। महिला सिंगल्स के पहले दौर में सिंधु का सामना उन्नति हुडा से होगा। देविका सिहाग भी महिला सिंगल्स में खेलेंगी। पुरुष सिंगल्स में भारत की ओर से लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी और HS प्रणॉय चुनौती पेश करेंगे। पुरुष डबल्स में MR अर्जुन और हरिहरन अंश करुणन भारत के खिलाड़ी हैं। वहीं ओलंपियन तनिषा क्रेस्टो और ध्रुव कपिला, रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गड्डे मिक्स्ड डबल्स में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। महिला डबल्स में भारत की कोई भी खिलाड़ी नहीं है। और हॉकी में FIH यूथ 5S एशियाई चैंपियनशिप में भारत की पुरुष और महिला सब जूनियर टीमों ने जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की है। ओमान के मस्कत में खेले गए मुकाबले में भारतीय महिला टीम ने कजाकिस्तान को 8-3 से हराया। भारतीय पुरुष टीम ने अपने पहले मैच में बांग्लादेश को 7-3 से शिकस्त दी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
3: राजधानी दिल्ली से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने आज अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। अमर उजाला ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से अपने मुख्य पृष्ठ पर लिखा है, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर राजनीति ना हो।

0: एसआईटी की पुनर्गठन की संभावना तलाशें। हिंदुस्तान ने इसी खबर पर सुर्खी दी है, चढ़ावा चोरी की जांच नई एसआईटी करे। दिल्ली में कल हुए प्रदर्शन को भी अधिकतर अखबारों ने सचित्र प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स लिखता है, संसद मार्च में झड़प, सरकार से बात, आंदोलन जारी। राजस्थान पत्रिका ने केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और सीजेपी प्रतिनिधियों की मुलाकात का चित्र प्रकाशित करते हुए लिखा है, सरकार से आश्वासन के बाद दीपके ने अनशन तोड़ा, 100 प्रदर्शनकारी घायल। अमर उजाला ने संपादकीय में इसी खबर का उल्लेख किया है, संसद के बाहर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच टकराव लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनौती का संकेत है, जिसमें संवाद का स्थान धीरे धीरे टकराव लेता जा रहा है। ये निर्विवाद है कि संविधान नागरिकों को शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखने का अधिकार देता है। लोकतंत्र की मजबूती भी इसी में है कि असहमति को स्थान मिले और सरकारें जन भावनाओं के प्रति संवेदनशील हों, लेकिन ये भी उतना ही आवश्यक है कि प्रदर्शन संविधान और कानून की सीमाओं के भीतर हो। हिंदुस्तान ने कुछ अलग शीर्षक से लिखा है, एथेनॉल से कार ही नहीं चलेगी, चूल्हा भी जलेगा। एलपीजी के अलावा एथेनॉल को रसोई ईंधन का विकल्प बनाने की तैयारी, सितंबर तक नीति का मसौदा तैयार कर सकती है सरकार।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संसद भवन में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन संसदीय दल की बैठक को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज स्कोपिये में उत्तरी मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्दाना सिल्यानोवस्का दाफकोवा के साथ वार्ता करेंगी। यूक्रेन के ओडिशा बंदरगाह के पास एक व्यापारिक जहाज पर हुए हमले में 4 भारतीयों की मौत, 1 घायल। भारत ने हमले की निंदा की। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वरिष्ठ नागरिकों, विधवा और दिव्यांगों के लिए मासिक पेंशन बढ़ाई। और पीवी सिंधु आज से शुरू हो रहे चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत का नेतृत्व करेंगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to address NDA Parliamentary Party meeting at Parliament House this morning. President Draupadi Murmu to hold talks with her North Macedonian counterpart in Skopje today. 4 Indians killed and 1 critically injured in attack on commercial vessel near Odessa port in Ukraine. India condemns attack on the ship. West Bengal government hikes monthly pension for senior citizens, widows and specially abled persons in the state. US launches fresh strikes on Iran as President Donald Trump warns of massive retaliation. And PV Sindhu to lead India's challenge at the China Open Badminton tournament beginning today. The National Democratic Alliance, NDA Parliamentary Party's weekly strategy meeting, now known as Mangal Milan, will be held in the Parliament House this morning. Prime Minister Narendra Modi is scheduled to address the meeting. The meetings are traditionally held on Tuesdays during Parliament sessions with an intent to demonstrate complete alliance unity. NDA Alliance partners will pass a congratulatory motion during the meeting, honouring Mr. Modi for becoming the longest serving elected Prime Minister of India. President Draupadi Murmu will hold talks with her North Macedonian counterpart Gordana Siljanovska Davkova in Skopje today. President Murmu is also scheduled to meet Prime Minister Hristiyan Miskosti and Speaker of the Assembly Afrim Gashi and address the Parliament. She will also address the India-North Macedonia Business Forum. More from a correspondent.
3: President Murmu arrived in North Macedonia last night on a two-day state visit as part of her three-nation tour to Moldova, North Macedonia and Romania. She is the first Indian president to visit North Macedonia. The visit reflects the importance India attaches to strengthening bilateral ties with the three countries and its engagement with wider Eastern European region. Both sides have shown keen interest in deepening economic ties in priority sectors such as agriculture, pharmaceuticals, science and technology, information technology, and IT-enabled services. North Macedonia is a landlocked country in southeastern Europe. The Indian community in the country is very small, with most members working in the IT sector, teaching at universities, or serving as executives in multinational companies. With Subhashree Mahapatra, this is Yashasvi Kiryal for Akashvani News, Delhi.
2: India condemned the attack on the vessel MV Golden Leo while departing the port of Odessa in Ukraine. External Affairs Ministry said 4 Indian nationals have

आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं कलीम अहमद। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह पार्लियामेंट हाउस में एनडीए पार्लियामानी पार्टी की मीटिंग से खिताब करने वाले हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज स्कोपेई में शिमाली मकदूनिया के अपनी हमनसब से बातचीत करेंगी। यूक्रेन में ओदेसी बंदरगाह के नज़दीक कमर्शियल बहरी जहाज पर हमले में 4 भारतीय शहरियों की मौत हो गई जबकि एक शदीद तौर पर जख्मी हुआ। भारत ने बहरी जहाज पर हमले की मजम्मत की है। मगरबी बंगाल सरकार ने रियासत में बुजुर्ग शहरियों, बेवाओं और दिव्यांगजनों के लिए माहाना पेंशन में इजाफा कर दिया है। अमरीका ने ईरान पर फिर हमले किए हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ज़बरदस्त जवाबी कार्रवाई का इंतबाह दिया है। और चांगजू में आज से शुरू होने वाले चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु भारतीय चैलेंज की क़यादत करेंगी। अब खबरें तफसील से। कौमी जमहूरी इत्तेहाद एनडीए की पार्लिमानी पार्टी की हिकमत अमली से मुतालिक हफ्तावार मीटिंग आज सुबह पार्लियामेंट हाउस में होने वाली है जिसे अब मंगल मिलन कहा जाता है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस मीटिंग से खिताब करेंगे। इस तरह की मीटिंग पार्लियामेंट इजलास के दौरान रिवायती तौर पर हर मंगल को हुआ करती है जिसका मकसद एनडीए के मुकम्मल इत्तेहाद का मुजाहरा करना है। एनडीए इत्तेहाद में शामिल पार्टियां इस मीटिंग के दौरान सबसे तवील अरसे तक अपने ओहदे पर फाइज रहने वाले मुंतखब वजीर आजम बनने पर जनाब मोदी की इज्जत अफजाई के लिए मुबारकबाद से मुतालिक एक तहरीक मंजूर करेंगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज स्कोपेई में शिमाली मकदूनिया की अपनी हमनसब गोर्डाना, सिलजानो, वस्का, दाओकोवा के साथ बातचीत करेंगी। मोहतरमा मुर्मू वजीर आजम क्रिस्टीजन मिकोस्की और असेंबली के स्पीकर अफरीम गाशी से भी मुलाकात करेंगी। वो शिमाली मकदूनिया की पार्लियामेंट और भारत शिमाली मकदूनिया कारोबारी फोरम से खिताब करेंगी। सदर जमहूरिया तीन मुल्कों मोलदोवा, शिमाली मकदूनिया और रोमानिया के दौरे के तहत कल रात दो रोज़ा सरकारी दौरे पर शिमाली मकदूनिया पहुंची। ये किसी भारतीय सदर जमहूरिया का शिमाली मकदूनिया का पहला दौरा है। उनका ये दौरा मस्कूरा तीनों मुल्कों के साथ दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने और मशरकी यूरोप के वसी खित्ते के साथ भारत के रिश्तों को फरोग देने की अहमियत को उजागर करता है। दोनों मुल्कों ने ज़रात, दवासाजी, साइंस और टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आईटी से वाबस्ता खिदमात जैसे तरजीही शोबों में इकतसादी ताउन

0: मजीदुसा देने में गहरी दिलचस्पी जाहिर की है। शिमाली मकदूनिया जनूब मशरकी यूरोप का चारों तरफ से खुश्की से घिरा मुल्क है। यहाँ भारतीय बिरादरी की तादाद बहुत कम है और ज़्यादातर भारतीय अफराद आईटी के शोबों, यूनिवर्सिटियों में तदरीस या कसीर मुल्की कंपनियों में आला ओहदों पर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। भारत ने यूक्रेन में ओदेसा बंदरगाह से रवाना होते वक्त बहरी जहाज़ MV गोल्डन लियो पर हमले की मजम्मत की है। वजारत खारजा ने कहा है कि इस वाक़े में चार भारतीय शहरियों की मौत हो गई जबकि एक शख्स को नाजुक हालत में अस्पताल में दाखिल कराया गया है। वजारत के मुताबिक जब ये वाक़या पेश आया तो उस वक्त इस बहरी जहाज में 5 भारतीय शहरियों समेत अमले के 17 अहलकार सवार थे। वजारत खारजा ने ये बात दोहराई है कि कमर्शियल बहरी जहाज़ों को निशाना बनाना और बेकसूर सिविलियन अफराद पर मुश्तमिल अमले के अहलकारों की जान खतरे में डालना निज बहरी जहाज़ों की आज़ादाना नकलो हरकत और तजारत में रुकावट डालना काबिल मजम्मत है और इस तरह की हरकत नहीं होनी चाहिए। वजारत ने कहा है कि यूक्रेन में भारतीय मिशन सूरत हाल पर करीबी नज़र रखे हुए है और मुतासिर अफराद को हर मुमकिन इमदाद पहुंचाने के लिए भरपूर कोशिश कर रहा है। भारत सरकार ने मरने वाले भारतीय शहरियों के कुंबों से ताज़ियत का इजहार किया है। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में पनामा के अपने हमनसब हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने पनामा के साथ भारत के ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने की ज़रूरत पर जोर दिया क्योंकि पनामा लातिनी अमरीका और कैरिबियाई खित्ते तक रसाई का एक अहम दरवाज़ा है। दोनों रहनुमाओं ने तजारत, कारोबार, तरक्की, बहरी उमूर, सेहत, ज़रात, तालीम और डिजिटल ताउन समेत मुख्तलिफ शोबों में इश्तराक बढ़ाने पर तफसीली तबादले ख्याल किया। उन्होंने कसीर रुखी बैन अलाक़वामी फोरम्स पर बाहमी ताउन के सिलसिले में भी गुफ्तगू की। इससे कबल वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने इस एतमाद का इजहार किया कि पनामा के वज़ीर ख़ारजा का ये दौरा दोनों मुल्कों के दरमियान तमाम शोबों में दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाएगा। पनामा के वज़ीर ख़ारजा के साथ मीटिंग के आगाज़ में इजहार ख्याल करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये दौरा हालिया अरसे में दोनों ममालिक के दरमियान होने वाले आला सतही रवाबित और तबादलों को मज़ीद तकवीत देगा जिससे दो तरफ़ा ताल्लुकात नई बुलंदियों तक पहुँचेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जनाब एंडी बर्नहैम को बरतानिया के वज़ीर आज़म का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि भारत और बरतानिया मुश्तरका जमहूरी अकदार से मुंसलिक हैं और दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी, दिफा और अवाम से अवाम के राबतों समेत मुख्तलिफ शोबों में वसी तर इश्तराक हो रहा है। जनाब मोदी ने कहा कि वो भारत बरतानिया जामे कलीदी साझेदारी को मज़ीद मुस्तहकम बनाने की खातिर जनाब बर्नहैम के साथ मिलकर काम करने के मुतमन्नी हैं। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। मगरबी बंगाल हुकूमत ने रियासत के बुजुर्गों, बेवाओं और माजूर अफराद की माहाना पेंशन में इजाफा कर दिया है। अगले महीने से पेंशन की रकम 1000 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये माहाना कर दी गई है। कल जारी किए गए एक सरकारी हुक्मनामे में हुकूमत ने कहा कि पेंशन की इजाफा शुदा रकम फवाइद की बराह रास्त मुंतकली DBT निज़ाम के जरिए तमाम मुस्तफिदीन के बैंक खातों में मुंतकिल की जाएगी। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर BJP के IT महकमे के इंचार्ज अमित मालविया ने कहा कि मगरबी बंगाल की ये महरूम बिरादरियां कई बरसों से इंतजामी बेतवज्जुही का शिकार रही हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मगरबी बंगाल में BJP हुकूमत बामाना और सबको साथ लेकर चलने वाली तरक्की की जानिब तेज़ी से गामजन है और समाजी बहबूद की पेंशन में 50% के इजाफे का फैसला हुकूमत के इसी विजन का मजहर है। इंतखाबी कमीशन आज कोलकाता में एक बैन अलाक़वामी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद कर रहा है जिसका मकसद डाक के ज़रिए वोट डालने के अमल को मज़ीद जामे, महफूज और आसान बनाना है। इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद जमहूरियत और इंतखाबी बंदोबस्त से मुतालिक बैन अलाक़वामी इदारे IIIDEM और बैन अलाक़वामी IDEA मुश्तरका तौर पर कर रहे हैं। मज़ीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: इस कॉन्फ्रेंस में मगरबी बंगाल के तमाम 24 इंतखाबी ज़िलों के चुनाव अफसरान शिरकत करेंगे। इसके अलावा भारत और कई दिगर मुल्कों से इंतखाबी मुंतजमीन, पॉलिसी साज, माहरीन तालीम और इंतखाबी उमूर के माहरीन भी शरीक होंगे। कॉन्फ्रेंस में डाक के ज़रिए वोट डालने के अमल और खसूसी पोलिंग के निज़ाम को

0: जामे आसान और महफूज बनाने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। मगरबी बंगाल की आला चुनाव ऑफिसर नीलम मीना इस कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगी। कॉन्फ्रेंस में डाक के जरिए वोट डालने का अमल, इंतखाबी अमल की शफाफियत और दयानतदारी को बरकरार रखने, चुनाव में धोखाधही की रोकथाम, ऑडिट के निज़ाम, कानूनी ढांचे, टेक्नोलॉजी पर मबनी खसूसी पोलिंग के निज़ाम और दूर दराज इलाकों से वोट डालने के निज़ाम के मुस्तकबिल पर खसूसी इजलास मुनक़िद होंगे। संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
1: सिक्किम में नामची जिले में समरदुंग के मुकाम पर NHPC के छठे मरहले के तीस्ता पनबिजली प्रोजेक्ट की जेर तामीर सुरंग के अंदर फंसे हुए अफराद को बहिफाजत बाहर निकालने के लिए तलाश और बचाव कार्रवाई जारी है। नामची जिले के SSP ने बताया है कि इमदादी टीमों ने अब तक 8 लाशें बाहर निकाली हैं। ऐसा शुभा है कि सुरंग के अंदर कम अज कम 25 अफराद फंसे हुए हैं। ऐसा ख्याल है कि चट्टानों के टुकड़े गिरने की वजह से ये सुरंग ढह गई थी। मुख्तलिफ एजेंसियां बचाव और इमदादी कार्रवाई जारी रखे हुए हैं। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: जनूबी सिक्किम में समरदुंग में कल NHPC प्रोजेक्ट के मकाम पर यह अफसोसनाक वाकया पेश आया। NDRF, SDRF और दीगर एजेंसियों को फौरी तौर पर बचाव मिशन पर लगाया गया। गैस के रिसाव की वजह से शुरू में इमदादी टीमें वहां नहीं पहुंच सकी। अलबत्ता इमदादी टीमों ने तालमेल के साथ कोशिश करते हुए 8 लाशें बाहर निकाल ली हैं। इमदादी टीमें वहां फंसे हुए अफराद को बाहिफाजत बाहर निकालने के लिए भरपूर कोशिशें कर रही हैं। इनमें कारकुन, NHPC के अहलकार और एक प्राइवेट इंजीनियरिंग फर्म के मुलाजमीन शामिल है। गंगटोक से मानस प्रतिम शर्मा के रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शोएबा।
1: हिमाचल प्रदेश के बेशतर हिस्सों में मानसून सरगर्म है और कई इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। शिमला के मौसमियाती मरकज़ ने आज रियासत के 5 ज़िलों में शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश के इम्कान के मद्देनज़र रेड अलर्ट जारी किया है। मज़ीद तफसील हमारे नामा निगार से।
3: हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में मानसून की बारिश लगातार होने से रोजमर्रा की जिंदगी मुतासिर हुई है। चट्टानों के टुकड़े गिरने के वजह से कई राब्ता सड़कें बंद हो गई हैं, जबकि कुछ इलाकों में बिजली और पीने के पानी की सप्लाई में रुकावट पड़ गई है। बहाली का काम जारी है। शिमला के मौसमियाती मरकज ने कांगड़ा, मंडी, चंबा, सिरमौर और कुल्लू जिले में आज शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश होने की पेशगोई की है। एहतियाती इकदाम के तौर पर कांगड़ा, मंडी, चंबा और सिरमौर में सभी सरकारी और प्राइवेट तालीमी इदारे आज लगातार दूसरे दिन भी बंद रहेंगे। इंतजामिया ने लोगों और सयाहों पर जोर दिया है कि वो गैर जरूरी सफर करने से गुरेज करें। शिमला से रितेश कपूर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं नरगिस सलीम।
1: भारतीय मौसमियात महकमे ने आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद के बाज़ हिस्सों में बहुत तेज़ बारिश होने की पेशगोई की है। इधर दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, शिमाली मशरकी भारत के कुछ हिस्सों, मशरकी मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी औसत से लेकर शदीद बारिश होने का इम्कान है। नई दिल्ली इलाके में कल एक एहतजाज के पुरतशद्दुद रुख इख्तियार करने के बाद 118 से ज़्यादा पुलिस अहलकार जख्मी हो गए। जख्मी होने वालों में पुलिस के स्पेशल कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के ओहदों पर फायज सीनियर अफसरान भी शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने एक बयान में कहा कि एहतजाज के दौरान मुजाहरीन बेकाबू हो गए और उन्होंने जारहाना और पुरतशद्दुद रवैया इख्तियार कर लिया। कई बार की तंबीह और कानूनी हिदायत के बावजूद उन्होंने मुंतशिर होने से इनकार किया और इलाके में आयद इम्तनाई अहकाम की खिलाफ वर्जी की। दिल्ली पुलिस ने कहा कि मुजाहरीन ने पुलिस अहलकारों पर हमला किया, पुलिस और दीगर सरकारी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया और तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किया, जिससे अमन व अमान को संगीन खतरा लाहिक हुआ। दिल्ली पुलिस ने मजीद बताया कि जख्मी पुलिस अहलकारों का तिब्बी और कानूनी जाँच जारी है। अमरीकी फोर्सेज ने ईरान के खिलाफ फिर हमले किए हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर अमरीका की मरकजी कमान ने कहा है कि ये हमले ईरान की फौजी सलाहियत को मजीद कमज़ोर करने के मकसद से किए गए हैं, जिसका इस्तेमाल वो आबनाए हुरमुज़ में कमर्शियल बहरी जहाज़ों पर हमले करने के लिए करता है। उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहते हुए ईरान को ज़बरदस्त इंतकामी कार्रवाई की वार्निंग दी है कि ईरान को कई गुना भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। 3 अमरीकी फौजियों की हालिया हलाकत के तनाजुर में सदर ट्रंप ने यह तंबीह की है। भारत की सरकर्दा बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु आज से शुरू होने वाले चाइना ओपन 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में

0: सुगम संगीत में अभी आप भजन सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। सुबह के 9 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने डेंगू की पहली वैक्सीन को मंजूरी दी। 4 से 60 वर्ष आयु वर्ग के लोग ये टीका लगवा सकेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, यमुना जल समझौते से शेखावाटी क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी। 12 जिला और बगरू विधानसभा क्षेत्र से आज मुख्यमंत्री युवा सुयोग योजना का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। और प्रदेश में आमजन को राहत देने के लिए आज से शहरी और ग्रामीण सेवा शिविरों के फॉलो अप कैंप लगाए जाएंगे। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने डेंगू की पहली वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। औषधि महानियंत्रक ने टाकेड़ा बायो फार्मास्यूटिकल्स इंडिया द्वारा विकसित क्यूडेंगा वैक्सीन के विपणन को अनुमति प्रदान की है। कंपनी के अनुसार ये वैक्सीन 4 से 60 वर्ष आयु वर्ग के लोगों के लिए स्वीकृत है और इसे डेंगू संक्रमण के पूर्व इतिहास की जाँच के बिना लगाया जा सकता है। इसे यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, ब्राजील, इंडोनेशिया और अर्जेंटीना सहित 40 से अधिक देशों में मंजूरी मिल चुकी है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं के रेफरल प्रबंधन को और मजबूत बनाया जाएगा। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कल स्वास्थ्य भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समीक्षा बैठक की। उन्होंने उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं, विशेषकर गंभीर एनीमिया से पीड़ित महिलाओं की नियमित निगरानी और समय पर उपचार के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर 104 और 108 एम्बुलेंस की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित की जाए और मरीज को भेजे जाने वाले अस्पताल में पहले से सूचना दी जाए ताकि उपचार में देरी ना हो। बैठक में दवाइयों, रक्त और अन्य जरूरी चिकित्सा संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने और सरकारी अस्पतालों में दवाइयों की खरीद निर्धारित नियमों के अनुसार करने के निर्देश भी दिए गए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि यमुना जल समझौते से शेखावाटी क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी। जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में शेखावाटी फाउंडेशन की ओर से आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि समझौते के तहत करीब 295 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन के माध्यम से सीकर, झुंझुनू और चूरू सहित आसपास के क्षेत्रों तक यमुना का पानी पहुंचाया जाएगा। इससे करीब 75 लाख लोगों को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शेखावाटी में जल, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन सहित विभिन्न क्षेत्रों के विकास पर काम कर रही है। साथ ही क्षेत्र की ऐतिहासिक हवेलियों के संरक्षण और पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं।
2: आपने देखा किस तरह से हमने शेखावाटी की 662 हवेलियां हमारी चिन्हित हो गई हैं, जिनको बनाने वाले, जिनको सुधारने वाले जो वहाँ के लोग हैं या ओनर हैं, वो लगातार उस पर काम कर रहे हैं हमारी सरकार के साथ। शेखावाटी हमारा धार्मिक आस्था का केंद्र है। लगातार आप देख रहे तो खाटू श्याम जी के लिए भी हमने सरकार ने कहा है कि वहां उनको भी

0: बनारस हनुमान जी का भी विकास करेंगे, शाकंभरी माता भी है, जीण माता भी है, उसके लिए भी काम करेंगे, और इसको कैसे नेटवर्क से जोड़ना है ये भी काम करेंगे। जब हमें किसी क्षेत्र का विकास करना है तो उसका नेटवर्क, सड़क नेटवर्क बहुत आवश्यक है।
1: अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित किए गए जैसलमेर रेलवे स्टेशन के लिए अब एक और नई परियोजना की मंजूरी मिली है। उत्तर पश्चिम रेलवे ने स्टेशन की परिचालन क्षमता बढ़ाने के लिए 110 करोड़ रुपए 51 लाख रुपए की परियोजना स्वीकृत की है। इसका क्रियान्वयन रेलवे की गति शक्ति इकाई करेगी। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
2: स्टेशन पर दो नई रनिंग लाइन, दूसरी पिट लाइन, दो नए प्लेटफॉर्म, मौजूदा फुट ओवर ब्रिज का विस्तार तथा सेकेंड एंट्री स्टेशन भवन का निर्माण किया जाएगा। इन कार्यों से स्टेशन पर ट्रेनों के ठहराव और परिचालन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। अतिरिक्त रनिंग लाइन और नए प्लेटफॉर्म बनने से अधिक ट्रेनों का संचालन संभव हो सकेगा। दूसरी पिट लाइन तैयार होने से ट्रेनों के रखरखाव, धुलाई और तकनीकी जाँच की व्यवस्था मजबूत होगी। पर्यटन सीजन में यात्रियों और ट्रेनों का दबाव बढ़ने को देखते हुए यह विस्तार परियोजना स्टेशन को भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार करेगी। मनीष व्यास, आकाशवाणी समाचार, जैसलमेर।
1: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। मुख्यमंत्री युवा सुयोग योजना का पायलट प्रोजेक्ट आज से जयपुर जिले के बगरू विधानसभा क्षेत्र और बारा जिले से शुरू होगा। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज शाम वर्चुअल माध्यम से इसका शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर बारा के जिला परिषद सभागार में स्थानीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में युवा भाग लेंगे। योजना का उद्देश्य युवाओं को खेल, कौशल विकास, डिजिटल साक्षरता और महिला सशक्तिकरण से जोड़ना है। इसके तहत विधानसभा स्तर पर केंद्रीय सुयोग युवा क्लब बनाए जाएंगे, जिन्हें पंचायत और वार्ड स्तर के क्लबों से जोड़ा जाएगा। इस योजना के माध्यम से युवाओं को खेल किट और कौशल प्रशिक्षण तथा खेल और नेतृत्व विकास कार्यक्रमों का लाभ मिलेगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सवाईमाधोपुर जिले के एक सरकारी विद्यालय में छात्राओं के साथ कथित दुर्व्यवहार की घटना का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने इस मामले में प्रदेश के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार विद्यालय में एक महिला शिक्षक के 1,000 रूपए खो जाने के बाद कक्षा 9 और 11 की छात्राओं की 2 शिक्षकों ने तलाशी ली और उन्हें कपड़े उतरवाने के लिए मजबूर किया। छात्राओं के साथ मारपीट किए जाने का भी आरोप है। घटना के विरोध में अगले दिन अभिभावकों ने विद्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। जोधपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सत्येंद्र सिंह ने कहा है कि साइबर अपराध और नशे के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। ये बात उन्होंने पाली के सदर थाना परिसर में आयोजित CLG बैठक में कही। उन्होंने बताया कि साइबर अपराध से बचाव के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हुड़दंग करने वाले बाइक चालकों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जाएगा।
3: इसमें जो सिटी में जो पुलिसिंग का जो है उसका जो इवनिंग जो गश्त है उसको मजबूत करके शाम के समय जो मोटरसाइकिल या अन्य तरीके से जो हुड़दंग का प्रयास करते हैं उनके बारे में एक विशेष कार्रवाई करके जल्दी अभियान चला के उनके रोकथाम के प्रयास करेंगे। देखो, नशे खत्म के लिए हम विशेष प्रयास कर रहे हैं और आपने बताया यहाँ पर प्रचलन भी है और मुख्य रूप से यहाँ रूट भी है। पहाड़ी के दूसरी तरफ से जो ओपियम ग्रोइंग इलाके हैं उधर से अभी माने का ये रास्ता भी पड़ता है, तो इसके बारे में समय समय पर हम निर्देश देते हैं, नाकाबंदी भी कराते हैं और काफी मात्रा में पकड़ी भी जा रही है। उस पे और हम अधिक प्रयास करके इनको पूरा एक तरह से खत्म करने का पूरा हमारा प्रयास है।
1: प्रदेश भर में आज से शहरी और ग्रामीण सेवा शिविरों के फॉलो अप कैंप शुरू हो रहे हैं। ये शिविर 31 अगस्त तक आयोजित किए जाएंगे। राजस्व विभाग के प्रमुख शासन सचिव टी रविकांत ने बताया कि इन शिविरों में राजस्व, पंचायती राज, कृषि, चिकित्सा, शिक्षा, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी और महिला एवं बाल विकास सहित 22 विभागों के आमजन से जुड़े लंबित प्रकरणों का निस्तारण किया जाएगा। सभी जिला कलेक्टरों और संबंधित विभागों के अधिकारियों को शिविरों का व्यापक प्रचार प्रसार कर अधिक से अधिक लोग

0: को योजनाओं का लाभ दिलाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश में मॉनसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। इसके असर से कई स्थानों पर बारिश हुई। पिछले 24 घंटों में जयपुर सहित प्रदेश के करीब 16 शहरों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। धौलपुर जिले के बसेड़ी में सबसे अधिक 65 मिलीमीटर वर्षा हुई। वहीं पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में बारिश की गतिविधियां तेज होने की संभावना है। केंद्र के अनुसार मॉनसूनी परिस्थितियां अनुकूल हो गई है। इसके असर से आज और कल पूर्वी और उत्तर पूर्वी राजस्थान के कई हिस्सों में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। इसके अलावा जयपुर और भरतपुर संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश का भी पूर्वानुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने डेंगू की पहली वैक्सीन को मंजूरी दी। 4 से 60 वर्ष आयु वर्ग के लोग ये टीका लगवा सकेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, यमुना जल समझौते से शेखावाटी क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी। 12 जिला और बगरू विधानसभा क्षेत्र से आज मुख्यमंत्री युवा सुयोग योजना का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। और प्रदेश में आमजन को राहत देने के लिए आज से शहरी और ग्रामीण सेवा शिविरों के फॉलो अप कैंप लगाए जाएंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। प्रस्तुत है मरु मंगल। कलाकार हैं सुलोचना खमीर।

सुलोचना खमीर की गई राजस्थानी लोक रचनाएं अभी अपने मरुमंगल में सुनी। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में सुनते हैं जसपाल सिंह और साथियों की आवाज में, गीत रचना गुहार कानपुरी की और संगीत राजकमल का, और फिल्म का नाम है सावन को आने दो।

कार्यक्रम का गला नगमा आनंद बख्शी की रचना, संगीत से स्वारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की, और फिल्म का नाम है लोफर।

मेरा गांव मेरा देश। श्रोताओं, सुनते हैं इस फिल्म में लता मंगेशकर को। आनंद बख्शी की रचना को संगीत से संवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

फिल्म संगीत इस समय आप आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से सुन रहे हैं। आज आपके साथ में मैं देवेंद्र शर्मा। श्रोतो, कार्यक्रम का अगला नगमा हमने लिया है फिल्म प्रतिज्ञा से। आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की, आनंद बख्शी की रचना को संगीत से संवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

अभी आप फिल्म संगीत सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। प्रस्तुत है कार्यक्रम गा मेरे मन का। श्रोताओ, कार्यक्रम का पहला नगमा लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़, साहिर लुधियानवी की रचना को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और फिल्म का नाम है दाग।

0: 10 लाख की लॉटरी
1: मुझे।
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
3: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
6: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
5: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
7: श्रोताओ, आइए सुने यशुदास को फिल्म चितचोर में। गीत और संगीत रविंद्र जैन का।
8: जब मैं 18 साल का

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: जॉनी मेरा नाम, श्रोताओं सुनते हैं इस फिल्म में लता मंगेशकर को। गीत रचना इंदिवर की और संगीत कल्याण जी आनंद जी का।
3: पता है वो तुम्हारा बाप कहलाने के लायक नहीं, उसके लिए अपनी जिंदगी बर्बाद न

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी को सुनते हैं फिल्म कारवां में। मजरूह सुल्तानपुरी की रचना को संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं।

0: और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मणप्पुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: आशा भोसले और मोहम्मद रफी को सुनते हैं फिल्म नागिन में। गीत रचना वर्मा मलिक की और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: गांव मेरे मन गा, ये कार्यक्रम इस समय आप आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से सुन रहे हैं। आज आपके साथ में मैं देवेंद्र शर्मा। श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला नगमा हमने लिया है फिल्म प्यार का मौसम से। आवाज़ें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की। मजरूह सुल्तानपुरी की रचना को संगीत से संवारा है आर डी बर्मन ने।

लता मंगेशकर और नितिन मुकेश को सुनते हैं फिल्म नूरी में, गीत रचना जान निशार अख्तर की और संगीत खय्याम का।

जानी दुश्मन। श्रोताओं, सुनते हैं इस फिल्म में मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले और साथियों को। आनंद बख्शी की रचना को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

श्रोताओं, मन्ना डे को सुनते हैं फिल्म जंजीर में। गुलशन बावरा की रचना को संगीत से संवारा है कल्याण जी आनंद जी ने।

मुकद्दर का सिकंदर। श्रोताओ, सुनते हैं इस फिल्म में लता मंगेशकर और किशोर कुमार को। अनजान की रचना को संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने।

श्रोताओं, अभी आपने कार्यक्रम सुना गा मेरे मन गा। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म।

लता मंगेशकर और साथियों को अभी आपने सुना फिल्म थी दाग। इस गीत को लिखा था साहिर लुधियानवी ने और धुन तैयार की थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। प्रोग्राम की अगली पेशकश एक बार फिर साहिर का गीत, रवि का संगीत, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ और फिल्म है आज और

श्रोताओं, आनंद बख्शी का लिखा गीत अभी आपने सुना, जिसका संगीत एसडी बर्मन ने तैयार किया था, आवाज़ दी थी लता मंगेशकर ने, और इस गीत को हमने फिल्म अनुराग से लिया था। लीजिए एक बार फिर लता मंगेशकर का गाया ये गीत सुनिए, बोल राजा मेहदी अली खां के संगीत मदन मोहन का, और फिल्म का नाम है मेरा साया।

मिस्टर एंड मिसेस 55। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना, आवाज़ें थी गीता दत्त और साथियों की। फिल्म संगीत इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से। अब जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं उसे आवाज़ें दी हैं महेंद्र कपूर और आशा भोसले ने। गीत के बोल साहिर के हैं, संगीत रवि का और फिल्म का नाम है गुमराह।

अभी आपने लता मंगेशकर को सुना फिल्म थी हरियाली और रास्ता। गीत के बोल हसरत के थे और धुन तैयार की थी शंकर जयकिशन ने। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपको सुनवाते हैं आशा भोसले की आवाज़ में ये गीत। इस गीत को लिखा है SH बिहारी ने, संगीत तैयार किया है OP नैयर ने और फिल्म का नाम है कश्मीर की कली।

मजरू का लिखा गीत अभी आपने सुना, आवाज़ थी लता मंगेशकर की। इस गीत की धुन तैयार की थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और फिल्म का नाम था शागिर्द। फिल्म संगीत इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में ये गीत। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीतकार शंकर जयकिशन और फिल्म का नाम है धरती।

ममता फिल्म का गीत अभी आपने सुना, आवाज़ें थी मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की। गीत के बोल मजरू के थे और संगीत रोशन का था, बेमिसाल। लीजिए इस फिल्म का गीत सुनिए, आवाज़ लता मंगेशकर की, गीत आनंद बख्शी का, संगीत आर डी बर्मन का।

श्रोताओं, लता मंगेशकर को इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म है आदमी, और इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये प्रोग्राम अब यहीं समाप्त होता है।

अब से कुछ ही देर बाद यानी 12:05 पर कार्यक्रम होगा एक ही शीर्षक से। आज का शीर्षक रहेगा कहानी। 12:30 पर सुगम संगीत और 12:50 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम खेत खलिहान। आज इसमें चर्चा का विषय होगा नरमा कपास में कीट नियंत्रण। दिन में 1 बजे हिंदी प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से रिले किए जाएंगे। 1:05 पर बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम घर आंगन। आज इसमें चर्चा के विषय होंगे बुजुर्गों का सम्मान व घर के संस्कार, कुटीर उद्योग व योजनाएं, प्राकृतिक तरीकों से निखारे रूप और राजस्थान का प्रमुख भोजन। दिन में 2 बजे अंग्रेजी समाचार और 2:15 पर हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। 2:30 पर फिल्म संगीत प्रसारित किया जाएगा और दिन में 3 बजे उर्दू सर्विस हमारे दिल्ली केंद्र से रिले की जाएगी।

शाम 5 बजे युवा साथी सुन सकते हैं कार्यक्रम युववाणी। आज चर्चा के विषय रहेंगे विकसित भारत 2047 में युवाओं की भूमिका, भारत को स्टार्टअप कैपिटल बनाने में युवाओं का योगदान, प्रतियोगी परीक्षाओं और युवाओं की चुनौतियां, और ऑनलाइन शिक्षा बनाम पारंपरिक शिक्षा। शाम 6 बजे कार्यक्रम विवरण में 6:05 पर सिराई के प्रसारित की जाएगी। शाम 6:30 पर हिंदी प्रादेशिक समाचार, 6:40 पर जिले की चिट्ठी और 6:45 पर राजस्थानी प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से रिले की।

योगदान, प्रतियोगी परीक्षाओं और युवाओं की चुनौतियाँ, और ऑनलाइन शिक्षा बनाम पारंपरिक शिक्षा। शाम 6 बजे कार्यक्रम विवरण में 6:05 पर सिराई की प्रसारित की जाएगी। शाम 6:30 पर हिंदी प्रादेशिक समाचार, 6:40 पर जिले की चिट्ठी और 6:45 पर राजस्थानी प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से रिले किए। 7:45 पर भक्ति फिल्म संगीत प्रसारित होगा। 8 बजे संसद समीक्षा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले की जाएगी। 8:45 पर समाचार संध्या और रात्रि 9 बजे News@9 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही रिले की जाएगी। रात्रि 9:15 पर टेलीफोन कॉल्स पर आधारित राजस्थानी फरमाइशी कार्यक्रम होगा हेलो गोरबंद। कार्यक्रम के संयोजक नवीन सिसोदिया और प्रस्तोता होंगे श्रीपाल शर्मा। रात्रि 10 बजे संसद में हुए प्रश्नकाल की रिकॉर्डिंग के संपादित अंश आप सुन पाएंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। ये था कार्यक्रम विवरण। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही शीर्षक से। आज का शीर्षक है कहानी।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को सुमन शेखावत का नमस्कार। सूरज चंदा जैसी जोड़ी हम दोनों, दिन का राजा रात की रानी हम दोनों, एक दूजे से मिलकर पूरे होते हैं, आधी आधी एक कहानी हम दोनों। श्रोताओं, कहानियां हमारे जीवन का अहम हिस्सा हैं। बचपन में हम कहानियां सुनकर सोते हैं, बड़े होने पर हम कहानियां पढ़ना शुरू करते हैं और फिर एक दिन खुद कहानी बन जाते हैं।

साथियों, जब हम किसी वक्त को जी रहे होते हैं तो वो हकीकत होती है, और जब वो वक्त गुज़र जाता है तो कहानी बन जाता है। और इस कहानी में न जाने कितने ख्वाब छुपे होते हैं।

साथियों, कहानियाँ हमारी ज़िंदगी की देखी सुनी बातों से ही निकलती है, और कभी कभी किसी को देखकर लगता है ये शख्स हमारी कहानी का हिस्सा बनेगा।

श्रोताओं, इस समय आप कार्यक्रम सुन रहे हैं एक ही शीर्षक से, और आज के इस कार्यक्रम में हम आपको कहानी शीर्षक से कुछ गीत सुनवा रहे हैं।

श्रोताओं, कहानियाँ कभी कभी बहुत लंबी हो जाती है, ख़त्म नहीं होती। इन्हीं में से कुछ कहानियाँ खामोश कहानियाँ होती है, जज्बातों से भरी। ये कहानियाँ कहीं नहीं जाती, सिर्फ महसूस की जाती है।

चेहरे पे आंसुओं ने लिखी है कहानियाँ, आईना देखने का मुझे हौसला नहीं। सुमन को इजाज़त दीजिए।

श्रोता, अभी आपने कार्यक्रम सुना एक ही शीर्षक से। आज का शीर्षक था कहानी। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। 12:30 हुए हैं। पेश है सुगम संगीत।

अभी आपने चित्रा सिंह की आवाज़ में ये गज़ल सुनी, और लीजिए अब जगजीत सिंह और चित्रा सिंह को सुनिए। कलाम शाहिद मीर का है।

कार्यक्रम सुगम संगीत इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से, और ये है प्रोग्राम की अगली पेशकश।

0: चित्रा सिंह की गाई इस गज़ल के साथ ही सुगम संगीत का ये प्रोग्राम अब यहीं ख़त्म होता है। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेत खलिहान। आज इसमें जानकारी का विषय है नरमा कपास में कीट नियंत्रण।
1: किसान भाइयों राम राम। किसान भाइयों आपने क्षेत्र में अपन जाना ही यहाँ के नरमो कपास जी को है वह बहुत सा किसान भाई बिजांत करे और नरमे कपास में जे अपन कीट की बात करें तो बिया तो बहुत सारा कीट है जिका नुकसान पहुँचावे लेकिन बिंग में बहुत सा कीट ईशा है जिका आर्थिक दृष्टियों बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचावे वह ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बाकी जे अपन बात करें तो कीट की किया अपन ने पहचान करनी है वह नुकसान कितो करे के तरीके से करे और बंगू जी को सक्रिय काल है वो के रवे फिर बंगी जिकी कीट रोधी किस्म है बंगू भी आप जिक्रो कर लिया तो ये चीज़ा अपन ने ध्यान में रखनी पड़ सी और आ सब शु आ कीटा शु बचा गए और अपनी फसल ने जिको है वो बटवार कर ले जानो है और बढ़िया उत्पादन लेनो है। प्रमुख जिको कीट है बिंग में बात करा पा हरे तेले की तो इंगी पहचान आप किया कर सा कि इंगो रंग जिको है वो हरियो वैगो शकल इंगी हेलीकॉप्टर वर्गी हो सी आकार इंगो 5 मिलीमीटर तई बद जाओ और व्यसक जिको कीट हो सी बिंगे तो पंख होगा ए व्यसक जिको वैगो जो कह ना अपा निम्फ कवा वो पंख रही तो वैगो चाल इंगी आडी तिरछी हो सी नुकसान किया करे हो कि वो पत्तियाँ की निचली सतह पर जटे शीरा हुआ भटकन बैठ के रस चूस के बिना नुकसान पहुँचावे।

किनारा जी कहे वह हल्का पीला पड़न लाग जाए। पी शू परिणाम के हुए कि पत्तियां के किनारे शू नीचे की तरफ मुड़ गए और टूटन लाग जाए। तेले को जो ज़्यादा प्रकोप हो जाए फसल के ऊपर तो पत्तियां पर लाल बैंगनी रंगा धब्बा जिया अपने जलेड़ो फफोल होवे बिशरंगा हो जिसी एर बिंगो परिणाम ओ वैगो कि पत्तियां मुड़ गए सूख गए नीचे गिरन लाग जाए। इनमें जे आप किस्मों की बात करें तो बीकानेरी नरमा है, RST-9 है, RS-810 है, आम पर आक्रमण जी को है इंकीट को वो कम हुआ है, लेकिन अब तो आप बिजांत कर रखी है। तो जैविक नियंत्रण आप इनको किया करना है। एक तो आप 10,000 प्रति बीघे की दर्शियों पर बख्शी क्राइसोपा छोड़ना चाहिए फसल के अंदर, और जरूरत पड़ने पर बख्शी का फूल की जिसकी अवस्था हुआ है बंग में आप वापिस इन्हें दोहरा देवा। रासायनिक उपचार भी इंगा है, वे दवाइयाँ आप बाजार छू लिया के छिड़काव कराइया, इमिडा क्लोरोपिड है, मोनोक्रोटोफोस है, एसीफेट है, थाइमिटेट है, आंगो आप इस्तेमाल कर सका। दूसरों कीट है अपनों सफ़ेद मक्खी, इंगी पहचान आप किया करा कि एक तो सफ़ेद हल्के पीले रंगी हो सिया और आकार इंगो 2 मिलीमीटर होगा, वही व्यसक जी को है वो पंख के सागे हुए ए व्यसक पंख रही तो सी। वो पत्तियाँ जी की निचली सतह हुआ है बांगो रस चूस लिया सागे बीम पर शहद जिसे एक चिपचिपो पदार्थ छोड़ दे, जगह के ऊपर बाद में फफूंद बन जाए और बिंग बाद में पत्तियाँ जी की है वह काली पड़न लग जाए, ज़्यादा ही प्रकोप हुआ तो पत्तियाँ राख बन जाए बीम पर तेलियो दिखाई देने लग जाए। वो कीट जी को है वो विषाणु रोग जगह ना आप पत्ता मरोड़क भी कवा बीशू फैले और इन कीट को जी को सक्रिय काल है वो अब अगस्त गए आखिर मुँह ले गए और अक्टूबर बीच तई होगा। यांत्रिक नियंत्रण आप इनको क्या करना है, 8-12 येलो स्टिकी ट्रैप या फिर खाली पिंपा पर पीलो पेंट अरंडी को तेल लगा देवा, प्रति बीघे की दर्शियों फसल में कीट गए सक्रिय काल में आप लगा सका। जैविक नियंत्रण आप इनको क्या कर सका कि पर बख्शी क्राई सोपा 12,000 प्रति बीघे की दर्शन छोड़ना और जरूरत पड़ने पर फूल की अवस्था में आप इन्हें वापिस दोहरा सका। रासायनिक उपचार में आप नीमयुक्त सागे तरल साबुन रला के कर सका, तिल गो तेल सागे तरल साबुन रला लेवा, इमिडा क्लोरोप्रिड, मिथाइल डिमोटोन, एसीटामीप्रिड आम दवाइयों को इस्तेमाल आप कर सका। एक वेंग में टिड्डा छेदक कीट जके ना आप चितकबरी सुंडी भी कवा, इंगी पहचान आप किया करनी है कि इंगा जी का प्रोड पतंगा हुआ है वो 2 तरीके की हरी धारी आला हो सी, अंडा इंगा दूधिया हो गए फीका हरे रंगी झलक लेड़ा हो सी, जिका कोमल जी की पत्तियां हुए फूल हुए गुड्डी हुए छोटा टिंडा हुए बाँ पर आपन दिखाई दे सी, लट इंगी 10-15 मिलीमीटर आकार की गहरे भूरे रंगी जिसी टाबरा खाने वाली चॉकलेट आवे भी रंगी हो सी, हल्के हरे रंगा धब्बा युक्त हो सी। नुकसान आखियाँ पुगावे के शुरू में तो लट तना और शाखा डाली के ऊपर शीर्ष भाग पर ए प्रवेश कर जे भी शीर्ष भाग ने खागे नष्ट कर दे, बिंग बाद में कीट ग्रसित जी को भाग है वो सूख जे, लट छू प्रभावित जी की कलियां हैं पंखुड़ियां हैं पीली हो गए आपस में एक दूसरे दूर हट जाए और वह अपन दिखन लग जाए कि दूर हटेड़ी, जिया जिया पौधे पर कलियां फूल टिंडो बढ़नो शुरू हुए ए लटा बांग माँ बढ़ जाए बां पर आक्रमण कर दे, जगह को परिणाम हो वह कि ग्रसित जी को फलिए बाग हुए बिंग तादाद जमीन पर गिरन लग जाए। इंगो आर्थिक नुकसान बहुत ज़्यादा देखने में आयो है। यांत्रिक नियंत्रण आप इंगो किया कर सका कि फसल में कीट ग्रसित जी का तना है शाखा है ऊपरलो भाग है बिन तोड़ गए जला गए नष्ट कर देना चाहिए, 5-10 फेरोमेन ट्रैप जगह ना आप लिंग आकर्षक बिकवा प्रति हेक्टर नर पतंगा वास्ते आप कर सका बिना नष्ट करन वास्ते लगा सका। जैविक नियंत्रण में आप परजीवी ट्राइकोगार्मा 40,000 प्रति बीघे की दर्शियों शाम के समय फसल में छोड़ दें और आ प्रक्रिया कम 3 बिरियां और 3 बिरियां कद 7-7 दिन के अंतराल पर आप इन्हें दोहरा सका। ध्यान अपन के रखना है कि ट्राइकोगार्मा परजीवी

0: भी खाली फेरोमोन ट्रैप के अंदर पतंगा फसल में पत्ता कलियां में अंडा जद अपन दिखाई देवे तो ही अपन छोड़ा नहीं तो ना छोड़ा। पर बक्सी क्राई सोपा 12,000 प्रति बीघे की दर्शु अपन छोड़नो चाहिए और जरूरत पड़े तो वही फूल की अवस्था पर अपा इन्हें दोहरास का। रासायनिक उपचार में आपा मोनोक्रोटोफोस है, फेनवेल रेट है, मेलाथियान, डेल्टा मेथ्रीन, क्यूनाल्फास, इंडोक्सा कार्बा आंगा इस्तेमाल आपा कर सका। इनके अलावा अमेरिकन सुंडी है, इनकी पहचान आपा किया करांगा कि जिका प्रोड पतंगा होगा, बांगो रंग हल्को भूरो होगा, आकार 20 से 25 मिलीमीटर पिछ आलो जिको हर पंख है बिंगो काले रंग और एक गोल धब्बे आलो सी। इन तरीके से आप इनको पहचान कर सका। अंडा इंगा क्रीम रंग का चमकीला खसखस के दाने बरगा हो सी। आ लगभग आपा ने पौधे की जिकी ऊपरी कोमल पत्तियां हुए या फलिये भाग हुए भट्ठा पने दिखाई देसी, लट हरी भूरी बादामी हल्के काले रंगी दो लंबी धारी आली 1 से 45 मिलीमीटर लंबाई की होसी। नुकसान किया गया के बूंटे के फलिये भाग उपलब्ध न होने पर आप पत्तियां ने खा गए बिंगमा गोल गोल छेद कर देवे। लट ग्रसित जी की कलियां है टिंडा में सुराख चितकबरी सुंडी के सुराख हूँ थोड़ा बड़ा होसी 2 से 3 मिलीमीटर आकार का होसी। फूल और टिंडा के अंदर नुकसान करते अलट आपको मल पदार्थ छोड़े जिको आपने फल गए ऊपरी भाग पर दिखाई दे जाएगो। इन कीट को सक्रिय काल से आप माना तो मध्य अगस्त लेके मध्य अक्टूबर तई विशेष हुए और विशेष परिस्थितियाँ हो जाए भाई वातावरण आगे अनुकूल नहीं हुए तो आगे पीछे भी हो सके। इनको प्रबंधन आपा क्या करना है, यांत्रिकी नियंत्रण तो आपा प्रोड नर पतंगा वास्ते प्रति हेक्टर 5 लिंग आकर्षक पास फेरोमोन ट्रैप गिदर शू लगा गए कीट का आगमन को पतो आपा कर सका। इन तरह शू आपा उपचार रखा और आपनों बढ़िया उत्पादन लेवा। अब हूँ चालू राम राम सा राम राम।
1: नरमा कपास में कीट नियंत्रण कार्यक्रम खेत खलिहान में अभी किसान भाइयों ने इस विषय पर ये जानकारी सुनी। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की आज नई दिल्ली में बैठक हुई। बैठक के दौरान एनडीए के सहयोगी दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले चुने हुए प्रधानमंत्री बनने पर बधाई देने वाला प्रस्ताव पारित किया। संवाददाताओं से बातचीत में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने देश में भविष्य की परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए सभी संबंधित पक्षों से मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया है।
1: आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया और प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिल करके करें।

0: सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित उच्च स्तरीय समिति ने अरावली पहाड़ियों और इससे जुड़े मुद्दों पर आम लोगों और संबंधित पक्षों से सुझाव मांगे हैं। समिति अरावली क्षेत्र से जुड़े विभिन्न विषयों का अध्ययन कर अपनी विस्तृत रिपोर्ट 31 अगस्त तक सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस समिति का गठन 25 मई को किया था। राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा और गुजरात सहित अरावली क्षेत्र से जुड़े पर्यावरणविद, सामाजिक संगठन, खनन पट्टा धारक, किसान, ग्रामीण, श्रमिक और स्थानीय समुदाय अपने सुझाव दे सकेंगे। समिति अरावली के पर्यावरण और जैव विविधता के साथ ही इस क्षेत्र पर निर्भर लोगों की आजीविका से जुड़े विषयों पर भी विचार करेगी। संबंधित पक्ष 21 दिन के अंदर अपने सुझाव और आवश्यक दस्तावेज समिति को भेज सकते हैं। प्रदेश में कैंसर मरीजों को अगले महीने से उनके जिले में ही टेली मेडिसिन के माध्यम से विशेषज्ञ उपचार की सुविधा मिलने लगेगी। कल जयपुर में राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम RGHS की समीक्षा बैठक के बाद चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर ने बताया कि जिलों के मेडिकल कॉलेजों को SMS मेडिकल कॉलेज के विशेषज्ञ चिकित्सकों से ऑनलाइन परामर्श की सुविधा से जोड़ा जाएगा। उन्होंने बताया कि नई कैंसर गाइडलाइन भी लागू कर दी गई है, जिससे मरीजों का उपचार और होगा। बैठक में RGHS में अनियमितताओं पर रोक लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित निगरानी प्रणाली विकसित करने के निर्देश भी दिए गए। स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी के अनुसार अब ₹2,000 से अधिक की जांच के लिए आने वाले आवेदनों का निस्तारण 30 से 35 मिनट में किया जा रहा है। बांसवाड़ा के राजकीय महात्मा गांधी चिकित्सालय में गंभीर मानसिक रोगों से पीड़ित मरीजों के लिए नई उपचार सुविधा शुरू की गई है। चिकित्सालय के मनोचिकित्सा विभाग में स्किजोफ्रेनिया और बाइपोलर डिसऑर्डर के चयनित मरीजों को अब रिस्पैरिडोन लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्शन निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप राठौड़ ने बताया कि ये इंजेक्शन हर 2 सप्ताह में लगाया जाता है और नियमित दवा नहीं लेने वाले मरीजों के उपचार में उपयोगी है। इससे उपचार की निरंतरता बनाए रखने और बार बार अस्पताल में भर्ती होने की संभावना कम करने में मदद मिलेगी। बाजार में इसकी एक खुराक की कीमत करीब 3,500 से 4,000 रुपये है। बारहवीं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया गया। मेलखेड़ी रोड स्थित एक निजी विद्यालय में आयोजित नशा मुक्ति जागरूकता शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष और जिला न्यायिक अधिकारी सत्य नारायण टेलर ने विद्यार्थियों को नशे से होने वाले नुकसानों की जानकारी दी। उन्होंने विद्यार्थियों से नशे से दूर रहने और अपने परिवार तथा आसपास के लोगों को भी इसके दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने का आह्वान किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। 1:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम घर आंगन।

आंगन। अरे बहनों, बड़े तावड़ो देखो, कड़कती दोपहरी उमस रे मायने काम करता करता मारी कई बहना तो पूरी पसीने सु भीज जावे, पर उफ तक नहीं करे। ऐ तो है अपना संस्कार। मने पतो है सुबह सूरज उगण सु पहला मारी बहना मशीनरी जियाँ काम करता करता 1 बजे ताई सगलो काम निपटा लेवे, और अब कूलर री ठंडी हवा रे माए रेडियो सामी बैठगी अपनो कार्यक्रम सुनना। साची कहूँ, दिन रो ओ 1 घंटो मारो और थारो अनमोल है सा, जिठ बस मैं हूँ और मारी फूटरी फूटरी बहनारी टोली। और आज रो ओ कार्यक्रम बहुत ही चटकदार है सा, बात्यारो इसो तानो बानो कि घड़ी रो तो पतो ही कोनी चालसी कि कत घंटों बीत गयो। लो सा, आज आपा बात री शुरुआत कराला, आपने घर री मजबूत नींव, बडेरा रो सम्मान और घर रे संस्कार माथे। घर मायने बडेरा रो आशीष होवे तो घर स्वर्ग सु सुंदर बन जावे। पछे बात कराला प्राकृतिक तरीका सु रूप कईया निखारनो है। आपा लुगाया ने पगा माथे खड़ो होवन सारू सरकार री अनमोल योजना कुटीर उद्योग माथे भी बात कराला। और पाछी बात कराला राजस्थान री शाही थाली माथे। तो चलो बहनों, बात शुरू करा बडेरा री सेवा और आदर सु कि किया घर मायने सुख समृद्धि री गंगा बहवे है। पन पहला कार्यक्रम री मंगल शुरुआत सारू, क्योंकि आज तो है मंगलवार और मंगल ही मंगल जीवन रे मायने होसी। आपने जीव ने बाग बाग करन वालो थारो और मारो मन पसंद मीठो सो मारवाड़ी लोकगीत सुन लेवा। सुनो सा और शानदार प्यारो सो मीठो सो गीत।

वाह सवा, कितो मीठो सुरीलो और जीव ने राजी करने वालो गीत हो सा। मने पतो है इन गीत री मिठास सुनते सुनते मारी बहना रो मूड एकदम फर्स्ट क्लास हो गयो होवेला। चलो अब आ जाओ मारी लाडली बहना, अपने उन बात माथा है जिकी थारे घर री बरकत और सुकून सु जुड़ेड़ी है। बडेरा रो सम्मान और घर रा संस्कार। अरे बहनों, साची कहवा तो घर रा बडेरा जद राजी खुशी होवे नी तो उन घर रे मायने साक्षात लक्ष्मी जी वास करे है। अपना बडेरा अपने घर री नींव है सा। उनारा संस्कार अपनी अनमोल पूंजी है। जद सुबह उठते ही अप्पा और अपना टाबर घर रे बडेरा रे पगे लागा तो उनारे कालजे सुजी की अनमोल आशीष निकले नी, बा अपने पूरे परिवार ने संकट

तू बचावे। दोपहरी री इन घड़ी रे मायने जत्थे रसोई रो काम निपटा लो तो 2 मिनट ठंडी छाछ रो गिलास रेर, या फिर थाने चाय भावे तो चाय लेर, अपनी सासू जी रे खन्ने बैठो सा। उनासु पुरानी बातें पूछो, बांगा सुख दुख टटोलो, जद बे मुस्कुरावेला नी तो थारे घर री सगली परेशानी दूर भाग जावेली। टाबरा ने भी ओही संस्कार देवनो है कि बडेरा रो आदर कैया करनो है। बडेरा रे आशीष सू चमके घर रो भाग सा, बडेरा रे आशीष सू चमके घर रो भाग सा, जके घर में होवे आदर सत्कार, बठे लागे कसूतो फाग सा। जके घर में ना होवे आदर सत्कार, बठे लागे कसूतो फाग सा। वाह सा वाह, साची कहवा भेनो, जित घर रा बडेरा राजी होवे नी, उनारी मीठी आशीष माथे पर होवे तो मन हल्को रहवे है, और जद मन राजी रहवे नी तो चेहरे माथे कुदरती निखार अपने आप ही आ जावे। बडेरा रे खन्ने अनुभव रो ज्ञान रो खजानो हुए है, सही गलत री पहचान भी बै कर लेवे है, और अपने हर मुसीबत से निकाल भी सके है, और अपने अच्छा संस्कार भी देवे है। जिया बै ही अपने सिखायो कि अन्न ग्रहण करण सो पहली दान करनो सबसे बड़ो गुण है। जितो बांटोला दुगनो होर ही मिलसी, प्यार बांटता चालो, सगला रे चेहरे पर मुस्कुराहट लामता चालो। खट्टी मीठी जिंदगी री खूबसूरत बातें और सुनाला अपना प्यारा प्यारा गीत अपने आपनों खुदरो घर आंगन कार्यक्रम रे मायने।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: कितो फूट रो और कालजे ने ठंडक देवन वालो गीत हो सा। चलो बहनों, अब आ जाओ पाछी अपने उन बात रे मत है जिकी आपा गीत सु पहली करी ही। मैं कहियो होने बहना, जद घर मायने बडेरा रो आशीष होवे तो मन राजी रहवे है और चेहरे रे माथे भी रौनक आ जावे है। इन जुलाई री कड़कती धूप, तावड़ो और चिपचिपी उमस रे मायने जद मारी बहना रो चेहरो कई बार झुलस जावे है, छाइयाँ और कालोपन आ जावे तो बैग कहीं करे। कई बार बाजार जार महंगी महंगी केमिकल आड़ी क्रीम या साबुन लेनर आवे। इंग सुबहनों पैसा भी लाग जावे और कई बार बे फायदों भी कम करे है। इन वास्ते थारी आ सिल्लू जीजी थाने एकदम फ्री रो और अनमोल खजानों बतावन आई है, जिकी थारी खुद री रसोई मायने छुपियोड़ो है। बाजार रे खर्चा ने कहो बाय बाय और डायरी पेन उठार लिखो ए टिप्स, मलाई और हल्दी रो जादू। मनो रसोई रे मायने ठंडी मलाई होवे नी, उन मलाई रे मायने थोड़ी सी हल्दी और एक चम्मच बेसन मिला लो, ओ बन गयो थारो शाही उपटन। इन न चेहरे और हाथा माते हल्के हाथा सु मलो और 10 मिनट बाद मटके रे ठंडे पानी सु चेहरे ने धो लो। चेहरे रो सारो कालोपन और टैनिंग मिट जावे और अपनी त्वचा एकदम साफ हो जावेली और थारो मुंडो चांद वर्गो चमचमावन लाग जावेलो। दूजो नुस्खो है टमाटर और पुदीने री ठंडक। जे धूप सु चेहरो कालो पड़ गयो है तो टमाटर रो एक टुकड़ो लो। और आपा तो टमाटर कई बार आपा सब्जी काटा तो भी मैं सुबह एक फाडी आपने टमाटर रे काटर रख लेनी चाहिए और उन्हें काम करता करता ही बली चेहरे रे माथे धीरे धीरे रगड़ो। टमाटर रो रस नेचुरल ब्लीच रो काम करे है सा, चेहरे रा सगला दाग धब्बा मिनटा रे मायने साफ हो जावे। ऊपर सू थोड़ो सो पुदीने रो रस लगा लो। इन उमस रे मायने चेहरे ने ठंडक मिलसी और रूप भी निखर जासी। वाह सा वाह, रूप निखारने

बात सुनर तो मारी बहना मुस्कुरा उठी है। सुंदर चेहरे रे साथे मन मायने आत्मविश्वास भी होनो बहुत जरूरी है। थे सगली समझदार हो, थारे सगला रे मायने कोई ना कोई गुण छुपियोड़ो है। था मैं सगला गुण है, हुनर है, थे सब आपरे पगा माथे खड़ी हो सको हो। घर बैठे छोटी छोटी सरकारी योजना वारो लाभ लेर अपा अपने खुद रो रोजगार शुरू कर सका हाँ। और जब थारी जेब रे मायने खुदरी कमाई रा रुपया खड़केला नी, तो इन कुटीर उद्योग योजना वारे माथे अपा बात कराला। बहनों, सफलता खुशी री चाबी कोनी, खुशी सफलता री चाबी है। मेहनत करो, बेवजह खुश रहने रो मजो ही की ओर है। गाना कमाल, बात्या बेमिसाल, जिसा थारा हाल पिसा ही मारा हाल। तो मारसागर बनड़ा रहो और सुनो ओ प्यारो सो गीत।

वासा वाह, कितो उमंग और जोश उभरियोड़ो गीत हो सा। बहनों ओ गीत मन उम्मीद है थन सगला ने बहुत ही पसंद आयो होनो। बहनों खुद रो ख्याल रखो और बांगो भी जिका थाने देखकर खुश रहे है। और हमेशा खट्टा मीठा पल ही। वासा वाह, कितो उमंग और जोश उभरियोड़ो गीत हो सा। बहनों ओ गीत मन उम्मीद है थन सगला ने बहुत ही पसंद आयो होनो। बहनों खुद रो ख्याल रखो और बांगो भी जिका थाने देखकर खुश रहे है। और हमेशा खट्टा मीठा पल ही तो ऐ होवे जिका आपने जिंदगी ने बेहतरीन बनावे है और अच्छा बनावे है। बहनों मन पतो है गीत सुनते सुनते मारी बहना रो मन एकदम राजी हो गयो होवेला। चलो अब आ जाओ मारी लाडली बहना, आपने उन बात मत है जिकी आज थाने आत्मनिर्भर बनावेली। अरे बहनों साची कहूँ तो आज आपा खाली चार दीवारी तक सीमित कोनी, अपनी गांव ढाणिया री बहना रे माहात्रे मायने हुनर छुपियोड़ो है। कोई सिलाई चोखी करे तो कोई अचार पापड़ चोखा बनावे है, और कोई तो कढ़ाई बुढ़ाई रे मायने एक्सपर्ट बन गई है, एकदम होशियार होगी। बहनों कोई भी काम शुरू करन वास्ते रुपया री जरूरत पड़े है, जद आपा आपनो काम शुरू कर पावा। इन वास्ते थारी आसीलू जी आज थाने सरकार री कुछ अनमोल योजनावां री जानकारी देवेला, जिके सु थे आपरो काम शुरू कर सको हो। बहनों आपने गांवारे मायने एक स्वयं सहायता समूह चाला है जिके ने SHG भी बोला है। बहनों गांव रे मायने 10-20 लुगाया मिलर एक समूह बना लेवे। इन समूह ने सरकार री तरफ सु कम ब्याज माथे बिना गारंटी रे लोन मिला है, जिके सु थे सिलाई सेंटर डेयरी उद्योग अगरबत्ती बनावन रो काम ठाट सु शुरू कर सको हो। इनने राजीविका योजना भी कहवे है जिकी लुगाया ने मजबूत बना रही है। यही बहनों अपने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना भी है, जेथे कोई मोटो कुटीर उद्योग लगावनो चाहो जिया पापड़ मंगोड़ी री फैक्ट्री या अचार रो मोटो काम, तो इन योजना रे मायने अपने की छूट भी मिल जावे है। यानी कि जिका अपना सरकार अपने पैसा दे सी नहीं काम करन वास्ते है, बिंग मायने की तो अपने जमा पाछा कराना पड़सी और की पैसा मायने अपने छूट लाग जैसी। सोचो बहनों जत्थे इन योजनावां रो लाभ उठार आपरे पगे माथे खड़ी हो लेनी और की 2 रुपया कमाओला तो थाने कितनो सुकून मिलसी और ज़्यादा कुछ करने

वाह सवा कि तो पूछ रो गीत हो लो सा कुटीर उद्योग सु बरकत और कमाई री बात रह पछे अब आपा बात कराला रसोई री खुशबू। राजस्थान री थाली माथा आपा बात कराला राजस्थान रे भोजन री अनोखी खूबी उना रे गुण और सेहत रे राज माथा। मैनू सच्ची कहूँ तो दुनिया रे माए चाहे कितो भी घूम लो पण जिको सुकून और स्वाद आपनी राजस्थानी थाली रे मायने है नी वो कठी कोनी मिले। अठेरो खानो की कहवणो गुआर पाठे री सब्जी कट्टा रो साग कोफ्ता री सब्जी लापसी दाल बाटी चूरमो। अपनी थाली री सबसे अनोखी खूबी आ है कि अठेरो खानो खाली स्वाद वास्ते कोनी आपने शरीर वास्ते भी गुणकारी होवे है। मैनू आपा जिया सर्दिया रे मायने बाजरी री रोटी खावा और गर्मिया रे मायने राबड़ी बना है सा। राबड़ी ने गर्मी रे माय पीवा तो शरीर ठंडो रहे है। राबड़ी रात ने बनार छोड़ा और दिन के माय ने भी मायने थोड़ा सो दही गाल लवा प्याज और काटर का डाल लवा और पछे भी ने पिया तो शरीर ठंडो रहे है। मतलब बाजरी रे माय ने फाइबर होवे है जिको आपने शरीर वास्ते अच्छो रहे। दूजी अपने कैर सांगरी और पंचकुटारी सब्जी वो तो आपने राजस्थान रो यूनिक और शाही गहनो है सा। केर और सांगरी इसी रूख माथा उगे जके ने बेसी पानी री जरूरत कोनी। इन सब्जी री मोटी खूबी आ है कि आ कदी खराब कोनी होवे। थे सफर मायने जारिया हो या गांव मायने मोटो काम है आ सब्जी कई दिन तक ताजी रहे और सेहत ने फायदो भी करे है। और हाँ सांगरी रो अचार भी बना है और स्वाद मायने भी चोखी होवे है। तीजी खूबी है अपनी दाल बाटी चूरमो जिको दूर दूर तक इंगो वो फैलेड़ो है इंगी बात्या। थाली रे मायने जिया ही एक खानी दाल बाटी घी चूरमेरी मिठास होवे और दूजी तरफ काचरी और लहसुन री तिखी चटकदार चटनी होवे। लहसुन री चटनी इन गर्मी रे मायने थारे हाजमे ने दुरुस्त राख है। सच्ची कहूँ बहनों आपने खान पान चोखो है सा जिको अपनी काया ने निरोगी रख है। बाजरे रो सोंगरो और सांगरी री सब्जी सा जीमर तो देखो राजस्थानी थालिया। वाह सवा थाली री बात सुनर तो मारी कई बहना रे मुंडे रे माए तो पानी आ गयो होएला। अने सोचती ओला कि चलो शाम ने आपा भी दाल बाटी चूरमो बना सा। अपनो राजस्थान तो है ही चटकीलो सा कितनी मीठी अठेरी बोली कि तो चोखो अठेरो खान पान। बना रहो सुनता रहो ओ अपनो अपनो कार्यक्रम घर आंगन सीलू जीजी रे साथ है ओ प्रेम सु भरियोड़ो रिश्तो ही तो है अपने शान सा।

खट्टी मीठी बातें, अच्छी अच्छी जानकारी और प्यारा प्यारा गीता रे सगे वो कार्यक्रम प्रस्तुत करो थारी आपरी बहन सीलू जी जी। खुद रो ख्याल रखो और बांगो भी जिका थाने देखकर खुश रहे है। अब मैं कहूँ थाने टाटा बाय बाय, ओजो मिलसा राम राम।

अभी आपने कार्यक्रम सुना घर आंगन। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: Standard Control Organization has granted marketing authorization for India's first dengue vaccine, the attenuated dengue vaccine Qdenga-R, to strengthen national dengue prevention efforts. This is the first dengue vaccine approved in the country for the prevention of dengue disease. The vaccine is approved for the prevention of dengue disease in individuals of 4 to 60 years of age. The vaccine has already received regulatory approval in 42 countries, including the European Union, the United Kingdom, Switzerland, Indonesia, Malaysia, and Thailand. The high-powered committee constituted by the Supreme Court has invited responses from the public on matters relating to the Aravalli Hills and ranges. The Ministry of Environment, Forest and Climate Change informed that interested individuals can submit their responses supported by documentary evidence or other verifiable material through email at mshbcaravalli@gmail.com within 3 weeks. Martyrdom Day is being observed by the Congress and the two factions of the Trinamool Congress in West Bengal today. On the 21st of July 1993, 13 workers of the Youth Congress were killed by the police firing in Kolkata. In China Open Badminton, India's H.S. Pranoy's campaign ended in the opening round after a 21-10-21-14 defeat to Malaysia's Leong Jun Hao in Changzhou today. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi calls for coordinated efforts to prevent paper leaks in future examinations, reiterates government's commitment to ensuring strict action against those involved in any NET paper leak. Proceedings in both houses of parliament disrupted amid opposition uproar on various issues. 11 people killed, several others trapped after tunnel collapses in Sikkim's Namche district. Rescue operation underway. Prime Minister assures Sikkim Chief Minister of all possible assistance. IMD issues red alert for very heavy rainfall over Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir and Ladakh for today. And with that, we end the midday news.
1: Namaskar. Aakashwani se dopahar samachar ke saath, main Kanak Lata. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भविष्य में परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया। उन्होंने नीट प्रश्न पत्र लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का सरकार का संकल्प दोहराया। संसद में विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित। सिक्किम के नामची जिले में निर्माणाधीन सुरंग ढहने से 9 लोगों की मौत, कई लोग फंसे, बचाव कार्य जारी। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी और भारत ने एक वाणिज्यिक जहाज पर हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत के मामले में रूस के दूत को तलब किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में भविष्य में परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए सभी संबंधित पक्षों से मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि श्री मोदी ने परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल ही में हुए नीट पेपर लीक मामले में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 13 आरोपी अभी जेल में हैं।
2: आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया और प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिल करके करें।
1: श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन मुक्त व्यापार समझौतों के बारे में भी बात की जो भारत ने कई देशों के साथ किए हैं।
2: प्रधानमंत्री जी ने कहा है जितना भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं उसमें किसानों को लेकर के किसानों का इंटरेस्ट उसको प्राथमिकता देते हुए कोई नुकसान होने नहीं देंगे, उसमें किसानों का हित को सबसे सर्वोच्च ध्यान दिया जाएगा और दिया गया है, इसलिए ये किसानों के हित में और

0: इस हित में रहेगा।
1: मंगल मिलन नाम से आयोजित बैठक के दौरान एनडीए के सहयोगी दलों ने प्रधानमंत्री मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री होने पर बधाई प्रस्ताव पारित किया। बैठक के बाद एनडीए सांसदों ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार देश में परीक्षाओं के आयोजन में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के सरकार के संकल्प को दोहराया।
2: नीट को लेकर के उन्होंने कहा कि जो गड़बड़ी हुई, लोग पकड़े गए हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम करना है और आगे बेहतर से बेहतर व्यवस्था होगी, इसको सुनिश्चित किया जा चुका है और यही कारण है कि फिर से जो परीक्षा नीट की हुई है बहुत ही बेहतर तरीके से हुई।
1: एनडीए संसदीय दल की बैठक में पहली बार शामिल हुए भाजपा के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के साथ मजबूती से खड़ी है।
3: हर एक ने अपने तरीके से बात करनी है, पर भारत एक इतना बड़ा विशाल देश है, तो भारत के युवा समझदार युवा, उनमें पूरा पोटेंशियल है, वो ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जो राष्ट्रहित में ना हो।
1: भाजपा सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि प्रधानमंत्री ने 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प दोहराया।
4: हम अपने आप में मंगल भावना के साथ हम आगे बढ़ें, यह प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए संकल्पित होने का सभी अपने माननीय सांसदों को यह आग्रह और निर्देश दिया है। इस 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है तो हमें मंगल कामनाओं के साथ ही काम करना पड़ेगा।
1: संसद में विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई है। दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित हुई। पहले स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर हंगामे के बीच संसद की अलग अलग समितियों के चुनाव के लिए सदन में प्रस्ताव पेश किए गए। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने सदस्यों से अपनी सीटों पर लौटने और सदन को सुचारू रूप से चलने देने का आग्रह किया। इसके बावजूद विपक्षी सदस्य नीट तथा विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन को लेकर नारेबाजी करते हुए हाथों में तख्तियां लेकर सदन के बीचों बीच पहुंच गए, जिसके कारण लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में 12 बजे के स्थगन के बाद बैठक फिर शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्षी सदस्यों से अपनी सीटों पर जाने और सदन की कार्यवाही चलने देने की अपील की, लेकिन विपक्ष ने उनकी बात नहीं मानी। इससे पहले सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना मुद्दा उठाने की अनुमति दी। श्री खड़गे ने नीट मुद्दे को लेकर कल नई दिल्ली में विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का मामला उठाया। इसके बाद विपक्ष और सत्ता पक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की और कहा कि विपक्ष विद्यार्थियों के मुद्दे पर चर्चा करना चाहता है। संसद के बाहर श्री गांधी ने कहा कि मुद्दा विद्यार्थियों और युवाओं के भविष्य से जुड़ा है।
5: इशू स्टूडेंट्स की है, यूथ के फ्यूचर की है। ये जो युवा हैं, ये एजुकेशन सिस्टम के बारे में, टेस्टिंग सिस्टम के बारे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दैट इज ऑल दे आर सेइंग, नथिंग रॉन्ग विद इट।
1: सरकार ने उन कई सोशल मीडिया पोस्ट का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि कल दिल्ली में हुए प्रदर्शनों के दौरान एक लड़की की मौके पर ही मौत हो गई। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली में प्रदर्शन से संबंधित कोई मौत नहीं हुई है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सिक्किम में नामची जिले में एनएचपीसी तिस्ता पनबिजली परियोजना की निर्माणाधीन सुरंग में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए बचाव और राहत अभियान जारी है। नामची जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि अब तक 11 शव बरामद किए जा चुके हैं। एक रिपोर्ट।
6: बारिश और खराब मौसम के बावजूद रेस्क्यू टीम फंसे हुए मजदूरों को सुरक्षित निकलने की पूरी कोशिश कर रही है। माना जा रहा है कि समरदंग में 7 किलोमीटर लंबी टनल के अंदर कम से कम 25 लोग फंसे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांगुले से बात की और हालात से निपटने के लिए हर तरह की मदद का भरोसा दिया। इस बीच जिला प्रशासन ने अब तक 7 शवों की पहचान कर ली है। रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर रखने के लिए

0: के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर है। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गंगटोक।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम में निर्माणाधीन सुरंग दुर्घटना में जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। हिमाचल प्रदेश में चंबा, कांगड़ा, हमीरपुर, मंडी और कुल्लू जिलों में 24 घंटे के दौरान कई स्थानों पर अत्यधिक तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई हिस्सों में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है।
2: किन्नौर जिला के करछम बांध और सिरमौर जिला में गिरी जटोन बांध से अतिरिक्त पानी छोड़ा जा रहा है। स्थानीय प्रशासन द्वारा इन नदियों के साथ लगते इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने व समय समय पर जारी किए जाने वाले दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा है। उधर किन्नौर जिला के शलखर और समदों में भूस्खलन और चट्टाने गिरने से राष्ट्रीय राजमार्ग 5 पर यातायात बाधित हो गया है। वहीं लाहौल स्पीति जिला में भी जहालमा नाले में आई बाढ़ के कारण संपर्क सड़क बह जाने से यातायात बंद है। शिमला जिला के ठियोग उपमंडल में 16 सड़क संपर्क मार्ग भूस्खलन के कारण अवरुद्ध हैं और चंबा जिला के लाहड़ू नूरपुर मुख्य सड़क में भी टिक्कर गलाधार में भारी भूस्खलन से मार्ग अवरुद्ध हुआ है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: उत्तराखंड में बारिश और यात्रा मार्गों पर भूस्खलन की आशंका के कारण कल स्थगित की गई चार धाम यात्रा आज फिर शुरू हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: चारधाम यात्रा का संचालन जिला प्रशासन, पुलिस, एसटीआरएफ और संबंधित विभागों के समन्वय से किया जा रहा है। यात्रा मार्गों की लगातार निगरानी की जा रही है और संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि यदि भारी बारिश, भूस्खलन या अन्य कारणों से किसी स्थान पर यात्रा मार्ग अस्थायी रूप से बाधित हो तो वे प्रशासन द्वारा निर्धारित सुरक्षित स्थानों पर होल्डिंग एरिया में ही रुके। सभी संबंधित विभागों को मौसम और यात्रा मार्गों की स्थिति पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं ताकि आवश्यकता पड़ने पर तत्काल कार्रवाई की जा सके। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: इस बीच मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और मुजफ्फराबाद में तेज से बहुत तेज बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी भी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, आंतरिक कर्नाटक, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना में भी 24 तारीख तक ऐसी स्थिति रहने की संभावना है। पश्चिम बंगाल सरकार ने अगस्त से वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन जैसी सामाजिक कल्याण पेंशन योजनाओं के अंतर्गत मासिक आर्थिक सहायता को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये करने की मंजूरी दी है। कल जारी एक आदेश में राज्य सरकार ने कहा कि बढ़ी हुई सहायता राशि सभी पात्र लाभार्थियों को मौजूदा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली के माध्यम से दी जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारत ने वाणिज्यिक पोत एमवी गोल्डन लियो पर हुए हमले के संबंध में आज दिल्ली में रूस के प्रभारी राजदूत व्लादिमीर लादानोव को तलब किया। 19 जुलाई को इस जहाज पर हुए हमले में 4 भारतीय मारे गए थे। हमले की कड़ी निंदा करते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा कि ऐसे हमले अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार की सुरक्षा और स्थिरता कमजोर करते हैं। मंत्रालय ने बताया कि श्री लादानोव से कहा गया कि व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाना और इसके कारण निर्दोष नागरिकों की जान जाना स्वीकार्य नहीं है। प्रवर्तन निदेशालय आतंकवादी संगठन ISIS में भर्ती से जुड़े मामले में बेंगलुरु में 8 परिसरों पर छापेमारी कर रहा है। इसमें इकरा वेलफेयर ट्रस्ट, गाइडेंस फॉर मैनकाइंड और बेंगलुरु स्थित अन्य व्यक्ति शामिल हैं। इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने भारत की पहली डेंगू वैक्सीन क्योडेंगा के विपणन की मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य देश में डेंगू की रोकथाम के प्रयासों को मजबूत करना है। ये भारत में डेंगू की रोकथाम के लिए स्वीकृत पहली डेंगू वैक्सीन है। इसे 4 से 60 वर्ष की आयु के लोगों में डेंगू की रोकथाम के लिए मंजूरी दी गई है। इस वैक्सीन को पहले ही 42 देशों में नियामक स्वीकृति मिल चुकी है। इनमें यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड शामिल हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा के साथ मिलकर लकाडोंग हल्दी मिशन गोल्ड

0: गोल्डन स्पाइस का शुभारंभ किया। मिशन गोल्डन स्पाइस पूर्वोत्तर भारत के विकास के लिए शुरू की गई एक प्रमुख और महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसकी लागत 175 करोड़ रुपए से अधिक है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित उच्चाधिकार समिति ने अरावली पर्वतमाला से संबंधित मामलों पर जनता से राय मांगी है। समिति 31 अगस्त से पहले सर्वोच्च न्यायालय को अपनी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया है कि इच्छुक व्यक्ति दस्तावेजी साक्ष्य और अन्य सत्यापन योग्य सामग्री के साथ अपनी राय mshpcaravali@gmail.com पर ईमेल के माध्यम से 3 सप्ताह के अंदर भेज सकते हैं। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज दोपहर के सत्र में गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 231 अंक गिरकर 77,478 पर और निफ्टी 52 अंक गिरकर 24,186 पर आ गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल का दौरा किया और वहां डॉक्टरों के साथ बैठक की। उन्होंने नीट यूजी 2026 का पेपर लीक होने के आरोपों को लेकर कल राजधानी में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल हुए लोगों की स्थिति का भी जायजा लिया। श्री नड्डा ने लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का भी दौरा किया और वहां भर्ती घायल प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भविष्य में परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया। उन्होंने नीट प्रश्न पत्र लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का सरकार का संकल्प दोहराया। संसद में विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित। सिक्किम के नामची जिले में निर्माणाधीन सुरंग ढहने से 11 लोगों की मौत, कई लोग फंसे, बचाव कार्य जारी। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी और भारत ने एक वाणिज्यिक जहाज पर हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत के मामले में रूस के दूत को तलब किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। दोपहर के 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

मजदूर फिल्म का गीत अभी आपने सुना, आवाज़ थी सलमा आगा की। और लीजिए अब लता मंगेशकर को सुनिए, फिल्म है हिना।

मेरे महबूब, इस फिल्म में अभी आपने मोहम्मद रफ़ी को सुना। फिल्म संगीत इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से। प्रोग्राम की अगली पेशकश लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म है बॉबी।

शारदा सिन्हा को अभी आपने सुना फिल्म थी मैंने प्यार किया। और लीजिए प्रोग्राम के आखिर में लता मंगेशकर अनूप जलोटा को सुनिए, फिल्म है एक दूजे के लिए।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में उर्दू सर्विस हमारे दिल्ली केंद्र से रिले की जाएगी।

आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। सपहर के 3 बजे हमारी आज की दूसरी मजलिस की नशरियात का आगाज होता है।

सामीन आपको बता दें फिर कुछ ही देर बाद यानी 3:05 पर खबरें नशर की जाएंगी। 3:15 पर आप सुनेंगे फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम मेरी पसंद। दिन में 3:30 हम पेश करेंगे मारूफ मौसिकार सज्जाद हुसैन की शख्सियत और खिदमात के हवाले से डॉक्टर इरशाद परवेज की तहरीर का द फीचर फिर तुम्हारी कहानी याद आई ऐ सनम का दूसरा और आखिरी हिस्सा। 4 से आप लुत्फ ले सकेंगे फिल्मी नगमों का। फिल्मी नगमों का प्रोग्राम जारी रहेगा शाम 4:50 तक। 4:50 पर खबरें नशर की जाएंगी और 5 हमारी आज की

0: मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़ मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एयर और डीडी फ्री डिश पर ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। 3:05 हुए हैं, अब खबरें नशर होंगी।
1: रज़ी अहमद से खबरें सुनिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आइंदा इम्तहानात में सवालनामे के अफशा होने की रोकथाम के लिए मरबूत कोशिशों के लिए कहा है। उन्होंने नीट पेपर लीक मामले में मुलव्वस लोगों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई को यकीनी बनाने के हुकूमत के आज़म को दोहराया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जनाब एंडी बर्नहैम को बरतानिया के वज़ीर आज़म का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी है। सिक्किम के नामची ज़िले में सुरंग के गिर जाने के बाद 11 अफराद हलाक हो गए और कई फंसे हुए हैं। बचाव का काम जारी है। वज़ीर आज़म ने सिक्किम के वज़ीर आला को हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया है। और भारत ने कमर्शियल जहाज़ पर हमले में 4 भारतीय शहरियों की मौत के मामले पर रूसी एलची को तलब किया। खबरें तफसील से। कौमी जमहूरी इत्तेहाद एनडीए की पार्लियामानी पार्टी की मीटिंग, जिसे अब मंगल मिलन के नाम से जाना जाता है, आज पार्लियामेंट हाउस में जीएमसी बालायोगी ऑडिटोरियम में मुनक़िद हुई। मीटिंग के दौरान एनडीए की इत्तेहादी पार्टियों ने वज़ीर आज़म को सबसे तवील मुद्दत तक भारत के एक मुंतखब वज़ीर आज़म के तौर पर खिदमात अंजाम देने पर मुबारकबाद की तहरीक मंजूर की। पार्लियामानी उमूर के वज़ीर किरण रिजिजू ने नामानिगारों से बात करते हुए कहा कि इस मीटिंग में वज़ीर आज़म ने पूरे मुल्क में मुस्तकबिल में कराए जाने वाले इम्तहानात के सवालनामे अफशा होने से रोकने के लिए सभी मुतल्लिका फरीकों की मरबूत कोशिशों के लिए कहा। उन्होंने बताया कि जनाब मोदी ने सवालनामा अफशा होने में मुलव्वस लोगों के ख़िलाफ़ और मुल्क के नौजवानों के मफादात के तहफ़ के लिए सख्त कार्रवाई को यकीनी बनाए जाने की हुकूमत के अज़्म को दोहराया। वज़ीर आज़म ने कहा कि जो लोग हाल ही में नीट सवालनामे के केस में मुलव्वस हैं, उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया है और इनमें से 13 मुलज़मीन को फ़िलहाल जेल भेज दिया गया है। जनाब रिजवी ने बताया कि वज़ीर आज़म मोदी ने आज़ाद तजारती समझौतों के बारे में भी इज़हार ख्याल किया, जिस पर कई मुल्कों के साथ साथ भारत ने भी दस्तखत किए हैं। मीटिंग के दौरान जनाब मोदी ने कहा कि हर तजारती समझौते में भारतीय किसानों के मफादात को आला तरीन तरजीह दी गई है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जनाब एंडी बर्नहैम को बरतानिया के वज़ीर आज़म का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि भारत और बरतानिया मुश्तरका जमहूरी अकदार से मुंसलिक हैं और दोनों मुल्कों के दरमियान तजारत, सरमाकारी, टेक्नोलॉजी, दिफा और आवाम से आवाम के राबतों समेत मुख्तलिफ शोबों में वसी तर इश्तराक हो रहा है। जनाब मोदी ने कहा कि वो भारत बरतानिया जामे कलीदी साझेदारी को मजीद मुस्तकम बनाने की खातिर जनाब बर्नहैम के साथ मिलकर काम करने के मुतमन्नी हैं। सिक्किम के नामची ज़िले में समरडुंग के मकाम पर एनएचपीसी तीसरा स्टेज 6 पनबिजली प्रोजेक्ट

0: के साथ मीटिंग के आगाज में इजहार ख्याल करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये दौरा हालिया अरसे में दोनों ममालिक के दरमियान होने वाले आला सतही रवाबित और तबादलों को मजीद तकवीत देगा। अमरीका ने ईरान के खिलाफ फिर हमले किए हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर अमरीका की मरकजी कमान ने कहा है कि ये हमले ईरान की फौजी सलाहियत को मजीद कमजोर करने के मकसद से किए गए हैं, जिसका इस्तेमाल वो आबनाए हुरमूज में कमर्शियल बहरी जहाजों पर हमले करने के लिए करता है। उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहते हुए ईरान को जबरदस्त इंतकामी कार्रवाई की वार्निंग दी है कि ईरान को कई गुना भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तीन अमरीकी फौजियों की हालिया हलाकत के तनाजुर में सदर ट्रंप ने तंबीह की है। इनमें से दो अमरीकी फौजी उर्दू में जबकि एक इराक में मारा गया था। इससे पहले ईरान के सिपाही पासदारान इनकलाब ने कहा कि उसकी बाहरी फोर्सेस ने ईरान के सूबों पर अमरीकी हमलों के जवाब में मिसाइल और ड्रोन हमलों के जरिए बहरीन और कुवैत में अमरीकी असासों और ठिकानों को शदीद नुकसान पहुंचाया है। और आखिर में इस बुलेटिन की खास खास खबरें एक बार फिर सुनिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आइंदा इम्तहानात में सवालनामे के अफशा होने की रोकथाम के लिए मरबूत कोशिशों के लिए कहा है। उन्होंने नीट पेपर लीक मामले में मुलव्वस लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई को यकीनी बनाए जाने के हुकूमत के अज़्म को दोहराया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जनाब एंडी बर्नहम को बरतानिया के वज़ीर आज़म का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी है। सिक्किम के नामची ज़िले में सुरंग के गिर जाने के बाद 11 अफराद हलाक हो गए और कई फंसे हुए हैं। बचाव का काम जारी है। वज़ीर आज़म ने सिक्किम के वज़ीराला को हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया है। और भारत ने कमर्शियल जहाज पर हमले में चार भारतीय शहरियों की मौत के मामले पर रूस सीएलसी को तलब किया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम मेरी पसंद। तमाम सामईन की खिदमत में शमीम उस्मानी का पुरखलूस आदाब। सामईन, आज की मेरी पसंद प्रोग्राम के नगमे हमने लिए हैं सज्जाद हुसैन की मौसीकी सजे हुए, जिनका आज यौम वफात है। सज्जाद हुसैन 15 जून 1917 को सीतामऊ मध्य प्रदेश में पैदा हुए और तकरीबन उन्होंने अपनी मौसीकी थी, यानी कि अगर उनको उनके बारे में बात की जाए तो मैंडोलियन बजाया करते थे वो। 22,000 गानों में उन्होंने वो मैंडोलियन बजाया और एक ग्रेट आर्टिस्ट थे वो। इस तरह से कहा जाए तो उन्होंने अरबिक, हिंदी और सूफी म्यूजिक को एक साथ हम आहंग किया। कुछ नगमे ऐसे हैं कि वो उनके लिए उनकी एक यादगार बन गई। अगर उनके नगमों की बात की जाए तो यकीनन उनके नगमे आज भी हमारे दिलों में तरोताज़ा हैं और उनकी मौसीकी से नगमे एक खूबसूरत रंग लिए हुए हमारी याददाश्तों में महफूज हैं।

और सामने आज के प्रोग्राम की आखिरी पेशकश रुस्तम सहरा फिल्म का नगमा मोहम्मद रफ़ी मन्ना डे की आवाज़ों में। इस नगमे ने भी सज्जाद हुसैन की शोहरत में चार चांद लगा दिए थे।

1952 में जब फिल्म संदिल आई तो इस फिल्म की मौसीकी ने उस वक्त के मौसीकारों को भी चौंका दिया था। अगर हम क्लासिकी एतबार से देखें तो भी इस फिल्म की मौसीकी उस दौर की सबसे ज्यादा मारूफ और आला पाए की मौसीकी करार दी जा सकती है। इस फिल्म में 8 नगमे थे और सब के सब आला तख्लीक का एक अच्छा नमूना थे। धरती से दूर गोरे बादलों के हार, आशा भोसले और गीता दत्त की आवाज में एक ऐसा मलकूती नगमा है जो सुनने वाले को एक और ही जहान में ले जाता है।

नगमे में पियानो और दीगर साजों के अलावा बांसुरी का आवाजों के साथ मिलन हमारे जहन पर एक पुरअसरार और जादुई असर कायम करता है, जो गाना खत्म होने के बाद भी कायम रहता है।

दिल में समा गए सनम फूल खिले चमन चमन। तलत महमूद और लता की आवाज में एक निहायत ही दिलकश गाना है। ये दो गाना अपने सुरताल, लफ्जों की अदायगी और मानवीयत के लिए एक मिसाली गाना करार दिया जा सकता है।

तनवीर नकवी का लिखा एक गाना सज्जाद हुसैन ने फिल्म रुखसाना के लिए कंपोज किया था। बलाहिर सादा से गाने की पुरकारी और असर आफरीनी के बारे में वही जानते हैं जो इस गाने को गाने की कोशिश कर चुके हों।

इसी फिल्म रोसाना में किशोर कुमार और आशा भोसले का एक दो गाना था, भुला दो जिंदगी के गम। ये शाहकार गाना आज हमें सज्जाद हुसैन के मखसूस अंदाज की याद दिलाता है। सज्जाद हुसैन अपनी मौसीकी में जिन जिन अनासिर और अवामिल का इस्तेमाल करते थे, ये गाना उन सारी चीजों से हमें रोशनास कराता है।

ये गाना ये कैसी अजब दास्तां हो गई है। सुरैया की खूबसूरत आवाज के साथ साथ इस गाने में हमें सासानी और अरबी बल्कि वस्त एशियाई मौसीकी का हसीन और जमील अक्स और इम्तिजाज सुनने को मिलता है, जो हर एतबार से लाजवाब है।

इसी फिल्म रुस्तम सोहराब का एक नगमा फिर तुम्हारी याद आई है ऐ सनम, एक अजीबो गरीब नगमा है जिसे गैर अहम किरदारों बल्कि एक्स्ट्रा समझे जाने वाले किरदारों पर पिक्चराइज किया गया। सजाद हुसैन ने इस नगमे को मोहम्मद रफी, मन्ना डे और सादात खान की आवाज में कंपोज किया। इस नगमे की खास बात यह है कि इसमें बेजा मौसीकी से परहेज किया गया है। इब्तदाई दौर की फिल्मों में कव्वाली के अंदाज की ये एक लाजवाब धुन है। याद रखने की बात यह है कि इस नगमे में दफ के साथ साथ आवाजों के कोरस का इतना खूबसूरत इस्तेमाल किया गया है कि मजा आ जाता है।

0: अभी हमने आपको बताया कि ये गाना सज्जाद हुसैन के उन आखिरी गानों में है जो उन्होंने गीता दत्त के साथ कंपोज किए, क्योंकि उसके बाद के दौर में एक जमाना वो भी आया था जब सज्जाद हुसैन अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखने लगे थे कि वो गानों की धुन कभी बनाएंगे जब आवाज लता मंगेशकर की होगी। उनका कहना था कि लता के अलावा उनके गाने कोई और नहीं गा सकता है।
1: मोहम्मद रफी का गाना इस पार दीवार के जो रहते हैं कोई कह दे उनसे जाके जो हम कहते हैं, एक ऐसा नादिर और नायाब गाना है जो आज शायद ही किसी को याद होगा।

फिल्म संदिल का भजन दर्शन प्यासी आए दासी गीता दत्त की आवाज में एक नादिर भजन है जिसका एक अलग अंदाज है जो मन को मोह लेता है।

इंडिया की आवाज में रम्या आशियाना अपने अंदाज का एक अनोखा गाना है और जिसकी कलाकारी और सदाकारी और लयकारी अपनी मिसाल आप हैं।

0: हालांकि सज्जाद हुसैन ने नूरजहां के साथ एक इकलौती फिल्म करने के बाद दोबारा कभी काम नहीं किया, लेकिन यह भी हकीकत है कि नूरजहां अपनी पूरी जिंदगी सज्जाद हुसैन की फनकाराना मौसीकी को भुला नहीं पाई थी। आज से तकरीबन 30 साल पहले एक बार लंदन के एक इंटरव्यू में जब उनसे उनके पसंदीदा मौसीकारों के बारे में पूछा गया था, तो वो 2-3 मशहूर नामों के बाद नूरजहां ने मौसीकार सज्जाद हुसैन का नाम बहुत अदब व एहतराम से लिया था। उन्होंने कहा था,
1: मौसीकार सज्जाद हुसैन इंतहाई ज़हीन मौसीकार हैं। नूरजहां के ख्याल में सज्जाद हुसैन अपने आप में मगन रहने के सबब कारोबारी तौर पर कामयाब नहीं हो सके थे, लेकिन उन्होंने कहा था कि उनकी बनाई हुई धुनें लाजवाल हैं और रहेंगी।
0: इंटरव्यू करने वाले साहब ने जब नूरजहां से कहा कि सज्जाद हुसैन साहब के बारे में सुना है कि वो बड़े खुसर थे और किसी को खातिर में न लाते थे, तो कहा जाता है कि ये बात सुनकर नूरजहां भड़क उठी। फिर कदरे तहमुल से उन्होंने समझाने के अंदाज में कहा था,
1: बात गुरूर की या तकब्बुर की नहीं, बल्कि ये इज्जत नफ्स का मसला है। अगर हमें खुद अपनी इज्जत का ख्याल ना हो तो दूसरे हमारी क्या इज्जत करेंगे। सज्जाद हुसैन साहब को अपनी इज्जत नफ्स का ख्याल रहता था और वो खुद अपनी इज्जत करना जानते थे।

21 जुलाई सन 1995 को मौसीकार सज्जाद हुसैन ने मुंबई के माहिम नामी मकाम पर दारे फानी को खैरबाद कहा और इस जहाने रंगबू से चले गए। इंतकाल के बाद उनके साहिबजादे ने

0: फिर तुम्हारी कहानी याद आई ऐ सनम। इस फिल्म में सामने भी आप सुन रहे थे, इस फीचर पर अभी आप सुन रहे थे सज्जाद हुसैन की शख्सियत और खिदमात के हवाले से डॉक्टर इरशाद परवेज के तहरीर करदा फीचर का ये दूसरा और आखिरी हिस्सा। सदाकार थी दानिश इकबाल, अली मोतशी मिर्जा, उमर सैफ और शबनम एहसान। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है फिल्मी नगमे। फिल्मी नगमों के आज के प्रोग्राम में सामीन हम आपको सुनवा रहे हैं आनंद बख्शी के लिखे कुछ फिल्मी नगमे। आज उनका यौम पैदाइश है।
1: नजर वो जो दुश्मन

आया सावन झूम के, इस फिल्म का नगमा आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। नगमा निगार थे आनंद बख्शी, मौसीकार लक्ष्मीकांत प्यारे लाल। और आप सुनिए अनवर की आवाज़ में अर्पण फिल्म का नगमा। एक मतलब फिर नगमा निगार, आनंद बख्शी और मौसीकार लक्ष्मीकांत प्यारे लाल।

आप आए बाहर आई इस फिल्म का नगमा आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। प्रोग्राम की अगली पेशकश बालिका वधू फिल्म का नगमा अमित कुमार और आर डी बर्मन की आवाजों में। नगमा निगारा नमस्कार, मौसीकार आर डी बर्मन।

0: और शामिल जब सुनी एस जानकी, मोहम्मद अजीज और साथियों को फिल्म है आखिरी रास्ता।
1: Story, but everybody will sing with me.
2: Okay.
1: Ready? Come on. One.

आप सुन रहे थे किशोर कुमार लता मंगेशकर की आवाज़ों में, मौसीकार थे आर डी बर्मन। और अब सुनिए प्रोग्राम की अगली पेशकश आमने सामने, फिल्म का नगमा मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, जिसे मौसीकी सजाए कल्याण जी आनंद जी ने।

आप सुन रहे थे मन्ना डे और साथियों को, फिल्म थी अनुरोध, मौसीकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। और सामने सुनिए अमर प्रेम फिल्म का नगमा एस डी बर्मन की आवाज़ में, मौसीकार हैं आर डी बर्मन।

और सामिन आज के प्रोग्राम की आखिरी पेशकश मुकेश की आवाज़ में पुष्पांजलि, फिल्म का नगमा नगमा निगार आनंद बख्शी, मौसीकार लक्ष्मीकांत प्यारीलाल।

आदाब, ये आकाशवाणी है। अब आप फैसल खान से खबरें सुनिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आइंदा इम्तिहानात में सवालनामे के अफशा होने की रोकथाम के लिए मरबूत कोशिशों के लिए कहा है। उन्होंने नीट पेपर लीक मामले में मुलविस लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई को यकीनी बनाने की हुकूमत के आजम को दोहराया है। सिक्किम के नामची जिले में सुरंग के गिर जाने के बाद 11 अफराद हलाक हो गए और कई फंसे हुए हैं। बचाव का काम जारी है। वजीर आजम ने सिक्किम के वजीर आला को हर मुमकिन इमदाद का यकीन दिलाया है। भारत ने कमर्शियल जहाज पर हमले में 4 भारतीय शहरियों की मौत के मामले पर रूसी एलची को तलब किया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा से आने वाली कई अशिया और सामान पर 50% इजाफी महसूल नाफिज कर दिया है। और महकमे मौसमियात ने हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आज बहुत शदीद बारिश के पेश नज़र रेड अलर्ट जारी किया है। अब खबरें तफसील से। कौमी जमहूरी इत्तेहाद एनडीए की पार्लियामानी मीटिंग, जिसे अब मंगल मिलन के नाम से जाना जाता है, आज पार्लियामेंट हाउस में जीएमसी बाला योगी ऑडिटोरियम में मुनाकिद हुई। मीटिंग के दौरान एनडीए की इत्तेहादी पार्टियों ने वजीर आजम को सबसे तवील मुद्दत तक भारत के एक मुंतखब वजीर आजम के तौर पर खिदमत अंजाम देने पर मुबारकबाद की तहरीक मंजूर की। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने नमानिगारों से बात करते हुए कहा कि इस मीटिंग में वजीर आजम ने पूरे मुल्क में मुस्तकबिल में कराए जाने वाले इम्तहानात के सवालनामे इफ्शा होने से रोकने के लिए सभी मुतालका फरीकों की मरबूत कोशिशों के लिए कहा। उन्होंने बताया कि जनाब मोदी ने सवालनामा इफ्शा होने में मुलविस लोगों के खिलाफ और मुल्क के नौजवानों के मफादात के तहफ़ के लिए सख्त कार्रवाई को यकीनी बनाने के हुकूमत के आज़म को दोहराया। वज़ीर आज़म ने कहा कि जो लोग हाल ही में नीट सवालनामे के केस में मुलविस हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और इनमें से 13 मुलजमीन को फिलहाल जेल भेज दिया गया है। जनाब रिजिजू ने बताया कि वज़ीर आज़म मोदी ने आज़ाद तिजारती समझौतों के बारे में भी इजहार ख्याल किया, जिस पर कई मुल्कों के साथ साथ भारत ने भी दस्तखत किए हैं। मीटिंग के दौरान जनाब मोदी ने कहा कि हर तिजारती समझौते में भारतीय किसानों के मफादात को आला तरीन तरजीह दी गई है। सिक्किम के नामची जिले में समरदुंग के मकाम पर एनएचपीसी तीसरा स्टेज 6 पनबिजली प्रोजेक्ट के जेर तामीर टनल के अंदर फंसे हुए लोगों को बाहिफाजत निकालने की गरज से तलाशी और बचाव कार्रवाइयां जारी हैं। नामची जिले के सीनियर पुलिस सुप्रिंटेंडेंट ने कहा है कि बचाव टीमों ने अब तक 11 लाशें निकाली हैं। तकरीबन 25 अफराद के टनल के अंदर फंसे होने का अंदेशा है। बावर किया जाता है कि चट्टानों के टुकड़े गिरने के सबब टनल को नुकसान पहुंचा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के नामची में एक जेर तामीर टनल के मुनहदिम होने के सबब होने वाले जानी नुकसान पर गहरे दुख का इजहार किया। मेलुकिन के कुंभों से ताजियत का इजहार करते हुए जनाब मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जख्मियों की जल्द सेहतियाबी की दुआ की। उन्होंने मेलुकिन के करीबी रिश्तेदारों को वजीर आजम के कौमी इमदादी फंड से 2-2 लाख रुपए की नकद इमदाद दिए जाने का भी ऐलान किया। जख्मियों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने सिक्किम के वजीर आला बैरन सिंह तमांग से बातचीत की है और नामची जिले में जेर तामीर एक सुरंग में जमीनी तोदे खिसकने के हादसे के बाद सूरत हाल और बचाव कार्रवाई के बारे में जानकारी हासिल की। वजीर दाखिला ने बचाव कोशिशों और मुतासरीन की हर मुमकिन मदद का

तीन दिलाया है। भारत ने आज रूसी सफारतखाने के नाजिमुल उमूर व्लादिमीर लादानोव को तलब किया है। उन्हें इस महीने की 19 तारीख को एक कमर्शियल बहरी जहाज MV गोल्डन लीप पर हमले के सिलसिले में तलब किया गया है। इस हमले में चार भारतीय अफराद की जानें जाये हो गई थी। वजारत खारजा ने हमले पर गहरी तशवीश जाहिर करते और इसकी मजम्मत करते हुए कहा कि इस तरह के हमलों से बैन अल्अक्वामी बहरी तजारत की हिफाजत, सलामती और इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचता है। वजारत ने बताया कि जनाब लादनोफ ने दरख्वास्त की गई कि वो भारत की इस गहरी तशवीश से अपने हुक्काम को आगाह कर दें कि कमर्शियल जहाज़ों को निशाना बनाया जाना और उसके नतीजे में बेकसूर की जानें ज़ाय हो जाना नाकाबिले कबूल है और इसे गुरेज किया जाना चाहिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जनाब एंडी बर्नहम को बरतानिया के वजीर आजम का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि भारत और बरतानिया मुश्तरका जमहूरी अकदार से मुंसलिक हैं और दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी

हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्स पर, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर। शाम के 5 बजे हैं, युवा साथी सुने अपना कार्यक्रम युववाणी पूजा वर्मा के साथ।

युवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को पूजा वर्मा का नमस्कार। दोस्तों, आज के इस अंक में हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं कार्यक्रम युवाणी के साथ। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ फिल्मी गीत तो, और साथ ही दोस्तों हम करेंगे कुछ विषयों पर चर्चा। तो आइए लीजिए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत आज की बात से। दोस्तों, आज सबसे पहले एक ऐसे विषय पर हम विचार प्रस्तुत करेंगे जो केवल वर्तमान की चर्चा नहीं बल्कि भारत के उज्जवल भविष्य का संकल्प है। हमारा विषय है विकसित भारत 2047 में युवाओं की भूमिका। दोस्तों, वर्ष 2047 भारत के इतिहास में एक विशेष पड़ाव होगा। इसी वर्ष हमारा देश स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूर्ण करेगा। भारत सरकार ने विकसित भारत 2047 का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसका उद्देश्य है भारत को आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी, सांस्कृतिक और शैक्षिक दृष्टि से विश्व के अग्रणी देशों की श्रेणी में स्थापित करना है। दोस्तों, इस महान लक्ष्य को प्राप्त करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका भारत के युवाओं की ही होगी, क्योंकि आज का युवा ही तो कल के विकसित भारत का निर्माता बनेगा। हमारे देश को विश्व का सबसे युवा देश माना जाता है। दोस्तों, हमारे देश की लगभग 65% जनसंख्या 35 वर्ष से कम उम्र की है। यह युवा शक्ति भारत की सबसे बड़ी पूंजी है। यदि इस ऊर्जा का सही दिशा में यूज किया जाए तो भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हो सकता है। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। और दोस्तों, यह संदेश आज के युवाओं के लिए अत्यंत प्रासंगिक है। विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा जब युवा अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को समझेंगे। दोस्तों, विकसित भारत का अर्थ केवल आर्थिक समृद्धि नहीं है, इट मीन्स गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होना, आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं, टेक्नोलॉजी का विकास, स्वच्छ पर्यावरण, रोजगार के अवसर, सामाजिक समानता, महिला सशक्तिकरण, सांस्कृतिक संरक्षण और सबसे जरूरी है आत्मनिर्भरता। जब प्रत्येक नागरिक को सम्मानजनक जीवन जीने का शिक्षा और अवसर प्राप्त होंगे तभी भारत वास्तव में विकसित राष्ट्र कहलाएगा। जब देश में लड़कियां, महिलाएं खुली आजादी से, आत्मनिर्भरता से अपने कार्य कर सकेगी तभी हमारा देश विकसित कहलाएगा। दोस्तों, शिक्षा किसी भी राष्ट्र के विकास का आधार होती है। युवा जितने अधिक शिक्षित और कुशल होंगे राष्ट्र उतना ही प्रगति करेगा। आज के युवा केवल डिग्री प्राप्त करने तक सीमित न रहें बल्कि कौशल विकास, अनुसंधान और नवाचार की दिशा में भी आगे बढ़े। APJ अब्दुल कलाम ने कहा था, सपने वो नहीं होते जो हम सोते समय देखते हैं। दोस्तों, सपने तो वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। विकसित भारत का सपना भी ऐसा ही सपना है दोस्तों, जिसे पूरा करने के लिए युवाओं को निरंतर प्रयास करना होगा। केवल एक व्यक्ति के द्वारा या फिर सरकार के द्वारा हमारा भारत विकसित नहीं हो सकता। यहाँ रहने वाले प्रत्येक एक एक व्यक्ति की जिम्मेदारी और सहभागिता से ही हमारा भारत उज्ज्वलता, विकसितता, विकासशीलता की ओर बढ़ सकेगा। 21वीं सदी विज्ञान और टेक्नोलॉजी का युग है दोस्तों। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस

रोबोटिक्स, अंतरिक्ष विज्ञान, साइबर सुरक्षा और डिजिटल टेक्नोलॉजी विश्व के विकास की दिशा तय कर रही है। भारत के युवाओं ने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का परिचय विश्व स्तर पर दिया है। आज भारतीय युवा विश्व की बड़ी बड़ी कंपनियों में अपना नेतृत्व कर रहे हैं। और दोस्तों, विकसित भारत 2047 के लिए आवश्यक है कि युवा नवाचार को बढ़ावा दें, स्टार्टअप स्थापित करें, डिजिटल इंडिया अभियान को और अधिक मजबूत बनाएं। दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत का अर्थ है कि देश अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं करने में सक्षम बने। यदि युवा नए उद्योग, स्टार्टअप और नवाचार आधारित व्यवसाय स्थापित करें तो लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। आज आवश्यकता है युवा आधुनिक कृषि टेक्नोलॉजियों को भी अपनाएं, ड्रोन टेक्नोलॉजी, जैविक खेती, स्मार्ट सिंचाई या फिर कृषि स्टार्टअप, डिजिटल मार्केटिंग। जब युवा कृषि को व्यवसाय और नवाचार से जोड़ेंगे तो ग्रामीण भारत का विकास भी संभव होगा दोस्तों। और आज जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, प्राकृतिक संसाधनों की कमी जैसी चुनौतियां हमारे सामने देखने को काफ़ी मिलती है। इन चुनौतियों का समाधान भी युवाओं के सक्रिय सहयोग से संभव हो सकता है, बशर्ते आप आगे आके अपनी भागीदारी देश की विकासशीलता में बढ़ाएं तो सही। युवा अपना योगदान दे सकते हैं वृक्षारोपण करके, जल संरक्षण करके, स्वच्छता अभियान के जरिए या फिर प्लास्टिक मुक्त अभियान। दोस्तों, महात्मा गांधी ने कहा था, पृथ्वी हर व्यक्ति की आवश्यकता पूरी कर सकती है लेकिन हर व्यक्ति के लालच को नहीं, और यह संदेश हमें पर्यावरण संरक्षण का महत्व समझाता है। किसी भी राष्ट्र का विकास तब तक संभव नहीं जब तक महिलाओं को सम्मान अवसर न प्राप्त हो। महिलाओं को सम्मान को बढ़ावा दें, शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाएं, लैंगिक समानता का समर्थन करें, महिला सुरक्षा के प्रति संवेदनशील बने, चाहे वो आपकी महिला कुछ लगती भी ना हो, ना वो आपकी बहन हो, ना आपकी माँ हो, लेकिन फिर भी एक महिला हो, उसकी सुरक्षा करना जिम्मेदारी, एक कर्तव्य समझना चाहिए। जब देश की आधी आबादी सशक्त होगी तभी विकसित भारत का सपना साकार होगा। युवाओं को केवल मतदान तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए बल्कि उन्हें लोकतांत्रिक मूल्यों और संविधान और नागरिक कर्तव्यों के प्रति भी जागरूक होना जरूरी है। दोस्तों, आज भारत के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देश का गौरव बढ़ा रहे हैं। युवाओं को खेल, योग और साथ ही फिटनेस को अपने जीवन का हिस्सा जरूर बनाना चाहिए। स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन से ही राष्ट्र निर्माण का कार्य प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। दोस्तों सोशल मीडिया आज युवाओं के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। युवाओं को डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज करके सकारात्मक उद्देश्यों को पूरा करना चाहिए। दोस्तों, एक बार किसी ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से पूछा कि विकसित भारत राष्ट्र कब बनेगा। उन्होंने उत्तर दिया, जब देश का प्रत्येक युवा यह सोचने लगेगा कि मैं देश से क्या प्राप्त करूं नहीं बल्कि देश को क्या दे सकता हूं। यही भावना विकसित भारत का मूल मंत्र है। तो दोस्तों, इस विषय के अंत में यही कहना चाहूंगी कि विकसित भारत 2047 का सपना केवल एक लक्ष्य नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षा है। इस सपने को साकार करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी युवाओं के कंधों पर है। आज का युवा यदि शिक्षित, जागरूक, अनुशासित, तकनीक संपन्न और राष्ट्रभक्त बनेगा तो वर्ष 2047 का भारत विश्व के विकसित राष्ट्रों की अग्रिम पंक्ति में खड़ा होगा। तो आइए आज हम सभी युवा संकल्प लें, हम विकसित भारत के निर्माता बनेंगे, ज्ञान को शक्ति बनाएंगे, नवाचार को अपनाएंगे, राष्ट्र को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। दोस्तों, इस विषय को यहीं समाप्त करते हैं, बातों का सिलसिला आगे जारी रहेगा। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: 10 लाख की लॉटरी मुझे, वाओ।
3: फर्जी ऑफर्स से सावधान,
4: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: दोस्तों, भारत को स्टार्टअप कैपिटल बनाने में युवाओं का योगदान कैसे हो सकता है, लीजिए जानेंगे इसके बारे में। दोस्तों, युवा शक्ति केवल जनसंख्या का आंकड़ा नहीं बल्कि भारत की सबसे बड़ी पूंजी है। आज जब दुनिया नवाचार, तकनीक और उद्यमिता के युग में प्रवेश कर चुकी है, तो भारत के युवा अपनी प्रतिभा, परिश्रम और नवाचार के बल पर देश को स्टार्टअप की वैश्विक राजधानी बनाने की दिशा में अग्रसर है। लीजिए जानते हैं स्टार्टअप क्या होता है सबसे पहले, उसके बाद हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, स्टार्टअप एक ऐसा नया व्यवसाय या उद्यम होता है जो किसी समस्या का नवीन समाधान प्रस्तुत करता है। यह केवल पैसा कमाने का माध्यम नहीं होता दोस्तों, बल्कि समाज की जरूरतों को पूरा करने का प्रयास भी होता है। आज हम जिन कंपनियों का नाम सुनते हैं, जैसे कि ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल भुगतान, ई कॉमर्स, स्वास्थ्य सेवाएं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्लेटफॉर्म, इनमें से कई की शुरुआत एक छोटे से स्टार्टअप के रूप में हुई थी। आज भारत विश्व के सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम में शामिल है। दोस्तों, हजारों स्टार्टअप विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी योजनाओं ने युवाओं को नए अवसर प्रदान किए हैं। कुछ वर्ष पहले युवाओं का सपना केवल सरकारी या निजी नौकरी प्राप्त करना होता था, लेकिन आज दोस्तों युवा नौकरी मांगने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बनने का सपना देख रहे हैं। यही परिवर्तन भारत को नई दिशा दे रहा है। युवा किसी भी समाज के सबसे ऊर्जावान और रचनात्मक शक्ति होते हैं। उनके पास नए विचार होते हैं, क्रिएटिविटी होती है, जोखिम उठाने का साहस होता है, टेक्नोलॉजियों को अपनाने की क्षमता होती है, सृजनात्मकता होती है और बदलाव लाने का जुनून होता है। जब युवा किसी समस्या को देखते हैं तो वे केवल शिकायत नहीं बल्कि उनका समाधान खोजने का प्रयास करते हैं। यही सोच स्टार्टअप संस्कृति की आधारशिला है। दोस्तों, एक राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहने वाला एक युवक था आरव। उसने देखा कि उसके गांव में किसान अपनी उपज का सही मूल्य प्राप्त नहीं कर पाते। बिचौलियों के कारण किसानों को नुकसान होता था। आरव ने हार नहीं मानी। उसने अपने मित्रों के साथ मिलकर एक मोबाइल ऐप बनाया जिसके माध्यम से किसान सीधे खरीदारों से जुड़ सकते थे। शुरुआत में लोगों ने उसका मजाक भी उड़ाया। किसी ने कहा, गांव का लड़का क्या टेक्नोलॉजी की दुनिया बदल देगा।

लेकिन आरव ने अपने प्रयास जारी रखे। कुछ वर्षों बाद उसका स्टार्टअप हजारों किसानों की आय बढ़ाने में सहायक बना। और दोस्तों, आज वह केवल स्वयं सफल नहीं बल्कि सैकड़ों लोगों को रोजगार भी दे रहा है। यही कहानी काल्पनिक अवश्य है, लेकिन ऐसे हजारों आरव आज भारत में मौजूद है। आज का युवा टेक्नोलॉजी से भली भांति परिचित है, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और डेटा साइंस जैसे क्षेत्रों में भारतीय युवा विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाए हुए हैं। टेक्नोलॉजी ने स्टार्टअप शुरू करना पहले की तुलना में कहीं अधिक आसान बना दिया है। अब एक छोटा सा विचार भी हम अगर मोबाइल फोन और इंटरनेट की सहायता से लाखों लोगों तक पहुंचा सकते हैं। भारत जैसे विशाल देश में रोजगार एक बड़ी चुनौती। यदि हर युवा केवल नौकरी खोजेगा तो अवसर सीमित पड़ जाएंगे। एक सफल स्टार्टअप केवल संस्थापक को ही लाभ नहीं पहुंचाता, बल्कि कर्मचारियों को रोजगार देता है, ग्राहकों की समस्याएं हल करता है और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाता है। दोस्तों, अक्सर माना जाता है कि स्टार्टअप केवल बड़े शहरों में ही बन पाते हैं, लेकिन यह धारणा बदल रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में युवा कृषि, पशुपालन, हस्तशिल्प, पर्यटन और स्थानीय उत्पादों को टेक्नोलॉजी से जोड़कर नया व्यवसाय विकसित कर रहे हैं। महात्मा गांधी ने कहा था, भारत की आत्मा उसके गांव में बसती है। जब गांव का युवा उद्यमी बनेगा तो भारत वास्तव में ही आत्मनिर्भर बनेगा। और इसी के साथ ही दोस्तों, जब बेटियां आगे बढ़ती है तो केवल एक परिवार नहीं बल्कि पूरा समाज आगे बढ़ता है। भारत को स्टार्टअप कैपिटल बनाने में युवाओं को नई तकनीकों को सीखना चाहिए, समस्याओं की पहचान करनी चाहिए, टीम वर्क की भावना विकसित करनी चाहिए, असफलताओं से सीखना, आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए। दोस्तों, आज का युवा यदि एक नया विचार विकसित करता है तो आने वाले कल के करोड़ों लोगों का जीवन बदल सकता है। प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत विकसित भारत 2047 का सपना तभी साकार होगा जब युवा नवाचार और उद्यमिता के माध्यम से देश को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएंगे। चलो नया इतिहास लिखें, सपनों को विश्वास लिखें, रुकना नहीं, झुकना नहीं, भारत का नव विकास लिखें। हर युवा उद्यमी बन जाए, नवाचार का दीप जलाएं, दुनिया देखे भारत की शक्ति, स्टार्टअप से नई भोर आए। तो आइए आज से ही हम संकल्प लेते हैं, हम केवल नौकरी खोजने वाले युवा नहीं बनेंगे बल्कि अवसरों का निर्माण करने वाले युवा बनेंगे। जब युवा अपने विचारों को कार्य रूप देंगे, जब वे समस्याओं को अवसर में बदलेंगे, जब वे जोखिम उठाने का साहस करेंगे, तभी हमारा राष्ट्र विकसित होता चला जाएगा। लीजिए आपको सुनाते हैं कार्यक्रम का अगला फिल्मी गीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: दोस्तों, भारत के करोड़ों युवा जिनका जीवन आज की परीक्षा प्रणाली, प्रतियोगी परीक्षाएं और युवाओं की चुनौतियों से जुड़ा है। आज के हर युवा का सपना रोजगार होना चाहिए, इस थॉट से भरा हुआ है कि गवर्नमेंट ही होना चाहिए। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई शिक्षक, कोई प्रशासनिक अधिकारी, कोई इंजीनियरिंग तो कोई वैज्ञानिक। इन सपनों को पूरा करने के लिए उसे परीक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की लंबी यात्रा से गुजरना पड़ता है। दोस्तों, परीक्षाएं जीवन का हिस्सा होती हैं, वे हमारी योग्यता, ज्ञान और तैयारी का आकलन करती है। लेकिन जब यही परीक्षाएं अत्यधिक दबाव, तनाव, अनिश्चितता और प्रतिस्पर्धा का रूप ले लेती है, तो वे चुनौतियाँ युवाओं के सामने आकर अक्सर खड़ी हो जाया करती है। आज आवश्यकता है कि हम परीक्षा प्रणाली को केवल अंकों की दौड़ में न देखें, बल्कि इसे व्यक्तित्व निर्माण और क्षमता विकास के माध्यम के रूप में भी समझें। एक गांव में रहने वाला लड़का राहुल बचपन से ही शिक्षक बनना चाहता था। उसके पिता किसान थे और परिवार की आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी नहीं थी, फिर भी राहुल मेहनत करता

रहा। 12वीं में अच्छे अंक प्राप्त हुए, उसने स्नातक किया और फिर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी शुरू की। सुबह 4 बजे उठना, घंटों पढ़ाई करना, कोचिंग नोट्स बनाना, टेस्ट देना, और यही उसका डेली रूटीन चलता रहता। पहले प्रयास में सफलता मिली, दूसरे प्रयास में भी सफलता नहीं मिली। आसपास के सभी लोग कहने लगे, इतना पढ़कर क्या फायदा, आप कोई काम ही कर ले। लेकिन उस बच्चे ने हार नहीं मानी, तीसरे प्रयास में परीक्षा उत्तीर्ण कर गया। जब नियुक्ति पत्र हाथ में आया तो उसकी आंखों में आंसू थे, और आंसू केवल सफलता के नहीं, बल्कि उसके संघर्ष, उसके धैर्य, उसके विश्वास के प्रतीक थे। दोस्तों, यही राहुल की कहानी, लाखों भारतीय युवाओं की कहानी है। संघर्ष, परिश्रम के समय धैर्य बनाए रखिए, आपकी विश्वास की जीत हमेशा होगी। परीक्षाएं किसी भी शिक्षा व्यवस्था का महत्वपूर्ण भाग होती है। इनका उद्देश्य विद्यार्थियों के ज्ञान का मूल्यांकन, उनकी समझ और कौशल की जांच, आगे की शिक्षा या रोजगार के लिए चयन, आत्मविश्वास और अनुशासन का विकास। यदि परीक्षा न हो तो यह जानना कठिन हो जाएगा कि विद्यार्थी ने कितना सीखा है। इसीलिए ज़रूरी है लाइफ में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होना, लेकिन उसका स्वरूप संतुलित होना चाहिए। वर्तमान परीक्षा प्रणाली की वास्तविकता को समझें तो आज परीक्षाएं अंकों और रैंक पर डिपेंड हो गई है। कई विद्यार्थी विषय को समझने के बजाय केवल याद करने पर ध्यान देते हैं। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य पीछे छूट जाता है। महात्मा गांधी ने कहा था, शिक्षा का अर्थ केवल जानकारी प्राप्त करना नहीं, बल्कि मनुष्य का सर्वांगीण विकास करना है। तो लीजिए दोस्तों, इसी विषय को हम आगे भी और भी जानेंगे इस गीत के बाद।

0: भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: दोस्तों, हम बात कर रहे थे इस गीत से पहले प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में, प्रतियोगी परीक्षा की परीक्षा प्रणाली और युवाओं की चुनौतियों के बारे में। हमारा देश विश्व का सबसे युवा देश कहलाता है। हर वर्ष लाखों युवा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेते हैं, जिनमें यूपीएससी, आरपीएससी, एसएससी, बैंकिंग परीक्षाएँ, रेलवे, नीट, जेई, सेट, नेट, शिक्षक भर्ती परीक्षाएँ शामिल हैं, लेकिन इनमें सीटें भी लिमिटेड होती हैं। यदि किसी परीक्षा में 1000 पद हैं तो आवेदन करने वालों की संख्या लाखों में हो सकती है। ऐसी स्थिति में प्रतियोगिता अत्यंत कठिन भी साबित हो जाती है। आज हर क्षेत्र में प्रतियोगिता बढ़ गई है। एक समय था जब स्नातक की डिग्री पर्याप्त मानी जाती थी। आज स्नातकोत्तर, नेट, सेट, शोध, कंप्यूटर कौशल और अनुभव जैसी अतिरिक्त योग्यताओं की भी आवश्यकता पड़ती है। इस कारण युवाओं का लगातार बेहतर प्रदर्शन उनका दबाव बनता जा रहा है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, संघर्ष जितना कठिन होगा जीत उतनी ही शानदार होगी, लेकिन यह भी आवश्यक है कि संघर्ष स्वस्थ हो, विनाशकारी नहीं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अनेक युवा तनाव का अनुभव करते हैं। इसके कारण है बार बार असफलताएं, परिवार की अपेक्षाएं, सामाजिक तुलना, भविष्य की अनिश्चितता। कई बार विद्यार्थी स्वयं की तुलना दूसरों से करने लगते हैं। सोशल मीडिया पर दूसरों की सफलता देखकर उन्हें लगता है कि पीछे रह गए। लेकिन दोस्तों, हमेशा याद रखना चाहिए कि असफलता जिंदगी तो खत्म नहीं। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। युवाओं के सामने एक बड़ी चुनौती असफलता का डर होता है। वे सोचते हैं, अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, परिवार क्या कहेगा। लेकिन दोस्तों, इतिहास बताता है कि सफलता अक्सर असफलताओं की नींव पर खड़ी होती है। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले हजारों प्रयोग किए थे। उन्होंने कहा था, मैं सफल नहीं हुआ, मैंने केवल 1000 ऐसे तरीके खोजे जो काम नहीं करते थे। यह दृष्टिकोण युवाओं को प्रेरणा देता है कि असफलता अंत नहीं। दोस्तों, आज का युवा डिजिटल युग में जी रहा है। मोबाइल फोन, सोशल मीडिया का ज्ञान का साधन भी है और समय प्रबंधन की कमी भी उनकी तैयारी को प्रभावी करते हैं। दोस्तों, समय सबसे शक्तिशाली है, क्योंकि समय ही सब कुछ बदल सकता है। समय का सदुपयोग सफलता की कुंजी कहलाता है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी केवल किताबों का अध्ययन नहीं, यह आपके धैर्य, आपके अनुशासन, आपके आत्मविश्वास की परीक्षा होती है। आपकी पॉजिटिव सोच, आपके फेथ, आपके पेशेंट्स को आप कितना बना सकते हैं, उसकी भी परीक्षा होती है। व्यक्तित्व की सफलता का आधार बनता है ज्ञान। एक विद्यार्थी अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुजी, मैं बहुत मेहनत करता हूँ फिर भी असफल हो जाता हूँ। गुरुजी उसे नदी के किनारे ले गए। उन्होंने एक पत्थर दिखाया जिस पर पानी की बूंदें लगातार गिर रही थी। पत्थर में गहरा निशान बन चुका था। गुरुजी बोले, बूंदों में शक्ति नहीं, लेकिन निरंतरता में शक्ति थी, और यही सफलता का रहस्य है। दोस्तों, परीक्षा प्रणाली और प्रतियोगी परीक्षाओं युवाओं के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे अवसर भी देती है और चुनौतियां भी देती है, लेकिन यदि युवा धैर्य, परिश्रम और सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास बनाए रखे तो कोई भी कठिनाई उन्हें लक्ष्य से दूर नहीं कर सकती। सफलता अंतिम नहीं होती, असफलता घातक नहीं होती। आगे बढ़ते रहने का साहस ही सबसे महत्वपूर्ण होता है।

ये पंक्तियाँ विंस्टन चर्चिल के द्वारा कही गई। दोस्तों, आज हमारे समाज में एक ऐसी विकसित सोच हो गई है कि जिस विद्यार्थी के अधिक अच्छे हैं वही सबसे अधिक प्रतिभाशाली है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं दोस्तों। यदि केवल अंकों से ही प्रतिभा का आकलन किया जाए तो दुनिया में अनेक महान व्यक्तियों की प्रतिभा को कभी पहचाना ही नहीं जा सकता। अल्बर्ट आइंस्टाइन को बचपन से साधारण विद्यार्थी माना जाता था। सचिन तेंदुलकर पढ़ाई से ज़्यादा क्रिकेट में रुचि रखते थे। लता मंगेशकर ने संगीत के क्षेत्र में असाधारण सफलता प्राप्त की। इन सभी की प्रतिभा अलग-अलग क्षेत्रों में थी दोस्तों। सबसे बड़ी समस्याएं होती है हमारे धैर्य, आत्मविश्वास बनाए रखने की। अगर आप खुद से नहीं हारे तो आप असफल नहीं होंगे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, यदि आप असफल होते हैं तो हार मत मानिए, फेल इट मीन्स फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। यह विचार प्रत्येक युवा को अपने माइंड में हमेशा रखना चाहिए। तो युवाओं के लिए यही संदेश है, प्रतियोगी परीक्षाएं जीवन का एक हिस्सा है, पूरा जीवन नहीं है दोस्तों। राह कठिन है, मंजिल दूर है, फिर भी रखना साहस भरपूर। गिरना उठना फिर बढ़ जाना, यही सफलता का है नूर। असफलता से मत घबराना, है नया एक सबक है पाना। जो संघर्षों से लड़ता है वही इतिहास रच जाता है। आप सभी ने हरिवंश राय बच्चन जी की पंक्तियों को सुना ही होगा कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इसी विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहिए, संघर्ष कीजिए और अपने सपनों को आकार दीजिए।

दोस्तों अभी आप सुन रहे हैं युवाणी कार्यक्रम कॉटन सिटी चैनल आकाशवाणी सूरतगढ़ से प्रसारित मेगावाट 918 किलोहर्ट्ज़, DRM 909 किलोहर्ट्ज़, FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर।

दोस्तों, अपनी पसंद के गीत सुनने के लिए युवाणी कार्यक्रम के बुधवार के आपकी पसंद प्रोग्राम में, यानी कल बुधवार है, और कल के युवाणी कार्यक्रम में, आपकी पसंद प्रोग्राम में, आप भी अपने पत्र हमें भेज सकते हैं और सुन सकते हैं FM 100.1 MHz पर अपनी पसंद के गीत। दोस्तों, गीत सुनने के लिए एक पोस्ट कार्ड लीजिए, उसमें लिखिए गीत के बोल, फिल्म का नाम, और लिखकर हमें भेज दीजिए। हमारा पता है आपकी पसंद प्रोग्राम द्वारा केंद्र निर्देशक युवाणी कार्यक्रम, कॉटन सिटी चैनल, आकाशवाणी सूरतगढ़। पिन कोड है 335804। दोस्तों, हम आपके पत्रों को कार्यक्रम में अवश्य शामिल करेंगे।

दोस्तों, ज़िंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो ज़िंदगी की भीड़ में खुश रहता है, ज़िंदगी उसी के आगे सर झुकाती है। अब हम बात करेंगे ऑनलाइन शिक्षा और पारंपरिक शिक्षा की। शिक्षा मनुष्य के जीवन का आधार मानी जाती है। शिक्षा ही व्यक्ति को ज्ञान, संस्कार, विवेक और जीवन जीने का सही दिशा प्रदान करती है। समय के साथ लर्निंग के स्वरूप में भी परिवर्तन आया है। पहले शिक्षा केवल गुरुकुलों और विद्यालयों तक सीमित थी, लेकिन आज वह इंटरनेट और टेक्नोलॉजियों के विकास ने शिक्षा को मोबाइल और कंप्यूटर की स्क्रीन तक पहुंचा दिया है। विशेष रूप से कोरोना महामारी के दौरान ऑनलाइन शिक्षा का महत्व काफ़ी तेज़ी से बढ़ा। उस समय स्कूल्स तो बंद थे, लेकिन शिक्षा का क्रम ऑनलाइन माध्यम से चलता रहा। और इसके बाद हम ये समझ सकते हैं कि ऑनलाइन शिक्षा बेहतर है या फिर पारंपरिक शिक्षा। दोस्तों, पारंपरिक शिक्षा वो शिक्षा जिसमें विद्यार्थी विद्यालय, महाविद्यालय या फिर विश्वविद्यालय में जाकर सीधे शिक्षक से शिक्षा प्राप्त करता है, जहाँ कक्षाएं होती है, टीचर्स हमारे सामने होते हैं, विद्यार्थी कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं अपनी क्लासमेट्स के साथ, खेल और सांस्कृतिक एक्टिविटी या कल्चरल प्रोग्राम्स में अपना हिस्सा ले सकते हैं। और यही शिक्षा प्रणाली सदियों से हमारे समाज का आधार रही है। इसी के साथ ही ऑनलाइन शिक्षा वो व्यवस्था होती है जिसमें विद्यार्थी इंटरनेट की सहायता से घर बैठे लर्निंग प्राप्त कर सकता है। इसमें मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर और वीडियो लेक्चर्स के जरिए ऑनलाइन टेस्ट, डिजिटल नोट्स का यूज़ किया जाता है। आज यूट्यूब, डिजिटल प्लेटफॉर्म और विभिन्न शैक्षणिक ऐप्स के जरिए सीखने के अनेक अवसर भी प्रदान है। पारंपरिक शिक्षा के लाभ देखें तो जिनमें शिक्षक और विद्यार्थी का सीधा संपर्क होता था, अनुशासन का विकास, सामाजिक विकास और व्यक्तित्व विकास। और ऑनलाइन शिक्षा के विकास में देखें तो कहीं भी और कभी भी शिक्षा, सीखने की स्वतंत्रता, समय की बचत और श्रेष्ठ शिक्षकों तरफ पहुंच।

इन्हीं के साथ रिकॉर्डेड लेक्चर और कम खर्च यानी कई ऑनलाइन पाठ्यक्रम कम लागत में इजीली उपलब्ध हो जाया करते हैं। दोस्तों इसी विषय को हम यही समाप्त करते हैं। बातों का सिलसिला तो आगे भी जारी रहेगा। ये आपको सुनाते हैं कार्यक्रम में अगला फिल्मी गीत, फिल्म कल हो ना हो से।

दोस्तों, अब जानेंगे आज की कुछ प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में। आज ही के दिन 2011 में अमेरिकी स्पेस शटल कार्यक्रम का अंतिम मिशन

1835 सफलतापूर्वक समाप्त हुआ। 1884 में आज ही के दिन कोलकाता में भारत के पहले सार्वजनिक थिएटर की शुरुआत हुई। आज ही के दिन 1947 में प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर चेतन चौहान का जन्म हुआ। और आज ही के दिन 1930 में प्रसिद्ध गीतकार आनंद बख्शी का जन्म हुआ। दोस्तों, इतिहास केवल बीते हुए समय की कहानी नहीं, बल्कि वर्तमान को समझने और भविष्य को दिशा देने का माध्यम है। लीजिए, कार्यक्रम के आखिर में सुनाते हैं आपको एक आखिरी फिल्मी गीत।

लीजिए दोस्तों, आज का युवाणी कार्यक्रम यहीं तक समाप्त करने की पूजा वर्मा को दीजिए इजाज़त। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।

FM 100.1 MHz और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर। शाम के 6 बजे हैं। लीजिए हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी और उनका प्रसारण समय सुनिए। अब से कुछ ही समय पश्चात यानी 6:05 पर आप सुनेंगे सराय की भाषा का कार्यक्रम। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे हिंदी में 6:30 पर और राजस्थानी में 6:45 पर। जिले की चिट्ठी का समय रहेगा 6:45। ग्रामीण श्रोता अपना कार्यक्रम सुनेंगे चौपाल संध्या 7 बजे, जिसमें जानकारी दी जाएगी नींबू वर्गीय बागों की रोपाई, बरसात के मौसम में गहरे पानी और बिजली के तारों से दूर रहें, मूंगफली में कीट नियंत्रण और उपलब्ध होने पर बाजार भाव और मौसम की जानकारी भी दी जाएगी। फिल्मी भक्ति गीत आप सुनेंगे 7:45 पर। संसद समीक्षा ये सुनेंगे आप रात्रि 8 बजे हमारे दिल्ली केंद्र से। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम एक ही फिल्म से होगा रात्रि 8:15 पर। स्पोर्ट्स कैन ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 8:30 पर। हिंदी में समाचार आप सुनेंगे रात्रि 8:45 पर और रात्रि 11 बजे। अंग्रेजी में समाचारों का समय रहेगा रात्रि 9 बजे और रात्रि 11:05 पर। आपके फोन कॉल्स पर आधारित राजस्थानी लोकगीत और लोक भजनों का फरमाइशी कार्यक्रम गोरबंद आप सुनेंगे 9:15 पर। आज आपके फोन कॉल्स लिए श्रीपाल शर्मा ने, इस कार्यक्रम के संयोजक नवीन सिसोदिया। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गंगा आप सुन पाएंगे रात्रि 10 बजे। ये थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी और उनका प्रसारण समय।

अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर,

अभी आप हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी और उनका प्रसारण समय सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर। शाम के 6:05 हुए हैं। लीजिए सराय की सुनिए।

ए ऑल इंडिया रेडियो दा सिराइकी प्रोग्राम है। मैं हरजीत कौर तुहाडे किते अज दा प्रोग्राम घेन के हाजर हाँ। कुछ बातां

ए हई बलकार से दूदा गाया गीत, सिराय की भैनों भरावो, हुण ता जमाना ही बदल गया है। तुसा गरावा विच वेख्या होसी, घर दी कंध उत्ते कां के बैठा ही ना, ता आधे हासे आज ता कोई मेहमान घर आसी। आज कां बोलिया है, हूं पुराने वेले विच घर दा कोई परदेसां को गया होंदे, ता छुहेर फर्श उत्ते औंसियां पौंदी हई कि अज ता उसदा भरा आसी जां अज उसदा पै घर आसी। ई करके फिल्मां दे गीतां विच वी इन्हां चीजां दा जिक्र होंदा है। अज ता बस सोशल साइट्स उत्ते ही सारा समा जाया जांदा है, पुरानियां रस्मां रहियां ही कोना। पर मैं तुहाकूं आशा भोसले दा गाया एक गीत सुनवेंदी हां, जिस विच कलाकार केड़ा सोना आदि है। जदों जदों भी बनेरे बोले कां, मैनू तेरी सौए मेरे सजना, मैं औंसियां पानियां वे आजा दिल जानियां। बहु वधिया गीत है, चस घिनो।

लाज सचदेवा दा गाया गीत तुसा सुनिया। भाई क्या बात है लाची हार दी, हुण तां पता नहीं कित्थां गुआच गया। गहणियां तों मैकों याद आया, पुराने समें विच छुहेरां सिर उत्ते सगी फुल लांदियां होंदियां सन। केडा सोहणा लगदा है ना, इह तां है छुहेरां दे गहणे पावण दी गल। पहलां गरावां विच छुहेर वी गहणे पाउंदे होंदे हन। कैंठा याद आया है कि ना, हार आलिकार गले विच कैंठा पा के बहु खुश थींदे सन। सुनण आलियो, इत्थां मैं इक बया बहु चंगा गीत याद करेंदी पई हां। इक मेले विच लंघदी वेंदी छुहेर ने सगी फुल पाया है ते छुहर ने कैंठा। हुण छुहर छुहेर दा ना ता जानदा कोई ना, कद हां पुछा ही ना। ता गीत विच क्या कहंदा है, कुड़िये नी सगी फुल वालिये, कैंठे वाला पुछे तेरा ना। बहु मजेदार गीत है, सच्ची कहंदी हां, तुसा भी झूमण लगोगे।

0: ਕਮਲ ਹੀਰ ਦਾ ਗਾਇਆ ਗੀਤ। ਦਿਲ ਤਾਂ ਕਰੇਂਦਾ ਏ ਬਇਆ ਗੀਤ ਸੁਣੇ ਦੇ, ਪਰ ਵੇਲਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਹਈ ਸਿਰਾਇਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਕੁਝ ਬਾਤਾਂ ਕੁਝ ਗੀਤ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ, ਸਾਕੂ ਖਤ ਭੇਜ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਇਸੇ ਡੀ ਇਸੇ ਟਾਈਮ ਵੱਲ ਮਿਲ ਤੂੰ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सरायकी। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलो हर्ट्स पर, FM एंड 100.1 मेगा हर्ट्स और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर। संध्या के 6:30 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। ये समाचार हम अपने जयपुर अजमेर केंद्र से रिले करेंगे। समाचार पहले हिंदी में और उसके बाद राजस्थानी में प्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
2: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए सभी से मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया। कहा, सरकार दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए संकल्पबद्ध।

0: संसद में विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही आज दूसरे दिन भी बाधित रही। राज्य सरकार ने युवाओं को सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री युवा सुयोग कार्यक्रम शुरू किया और प्रदेश में मॉनसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ी, कई स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भविष्य में परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए सभी संबंधित पक्षों से मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि श्री मोदी ने परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया। श्री रिजिजू ने कहा कि हाल ही में हुए नीट पेपर लीक मामले में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 13 आरोपी अभी जेल में हैं।
1: आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया और प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब करें।
0: श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न देशों के साथ किए गए मुक्त व्यापार समझौतों पर भी बात की। उन्होंने कहा कि किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है और हमेशा दी जाएगी। संसद के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी आज विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों में कार्यवाही नहीं हो पाई। विभिन्न मुद्दों पर हुए शोर शराबे को देखते हुए दोनों सदनों की कार्यवाही 3-3 बार स्थगित हुई। इसके बाद इसे दिनभर के लिए स्थगित कर दिया गया। नीट परीक्षा पेपर लीक सहित अन्य मुद्दों के कारण लोकसभा में गतिरोध बना रहा। वहीं राज्यसभा में भी विपक्षी सदस्यों ने परीक्षा प्रणाली और छात्रों के मुद्दों को लेकर हंगामा किया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की और कहा कि विपक्ष विद्यार्थियों के मुद्दों पर बात करना चाहता है। उन्होंने संसद में विद्यार्थियों के मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की मांग की। सर्वोच्च न्यायालय की ओर से गठित उच्च अधिकार समिति ने अरावली पहाड़ियों और पर्वत श्रृंखलाओं से संबंधित मामलों पर जनता से प्रतिक्रियाएं आमंत्रित की हैं। समिति ने राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और दिल्ली के हितधारकों और पर्यावरणविदों और संरक्षणवादियों तथा स्थानीय समुदायों से जिनकी आजीविका और कल्याण इस क्षेत्र से जुड़े हो सकते हैं उनसे 31 अगस्त तक सुझाव आमंत्रित किए हैं। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा सुयोग कार्यक्रम की शुरुआत की है। ये एक आधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आधारित अभियान है। इसमें युवाओं का पंजीकरण, प्रशिक्षण और विभिन्न योजनाओं से जुड़ाव एकीकृत प्रणाली के माध्यम से होगा। इसका उद्देश्य युवाओं को रोजगार के अवसरों से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाना है। साथ ही खेल, शिक्षा, कौशल विकास, स्वास्थ्य और डिजिटल नवाचारों के माध्यम से युवाओं को सशक्त बनाना है। मुख्यमंत्री युवा सुयोग की पायलट परियोजना की शुरुआत बगरू विधानसभा क्षेत्र से की गई है। इसका विस्तार पूरे प्रदेश में किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज अपने आवास से इसका शुभारंभ किया। उन्होंने युवाओं से संवाद भी किया। श्री शर्मा ने कहा कि देश की प्रगति के लिए युवा शक्ति का सकारात्मक होकर सही दिशा में बढ़ना आवश्यक है।
2: ये प्लेटफॉर्म हमारे युवाओं के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए, खेल के लिए, कौशल विकास के लिए और सुशासन से जोड़ने के लिए ये बहुत बड़ी पहल है और इस पहल के माध्यम से लगातार हमारा युवा आगे बढ़ रहा है। युवाओं का धैर्य, आत्मविश्वास, अथक परिश्रम और विकसित भारत की ताकत, वो सभी हमारे युवाओं से जुड़ी है। जब युवा शक्ति सही दिशा में सही संस्कारों के साथ लगती है तो निश्चित रूप से वो राष्ट्र आगे बढ़ता है।
0: उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा

संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल भी इस मौके पर उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य मां योजना के तहत प्रदेश के पात्र परिवारों को अब राज्य के बाहर भी निःशुल्क उपचार की सुविधा मिल रही है। राज्य सरकार की ओर से लागू की गई आउटबाउंड इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी व्यवस्था से देश के विभिन्न राज्यों में पात्र लाभार्थी 25 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज ले सकते हैं। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि 6 महीनों में प्रदेश के 30,000 से ज्यादा लोगों ने अब अन्य राज्यों के अस्पतालों में निःशुल्क इलाज करवाया है। सरकार ने पिछले साल 15 दिसंबर से ये योजना लागू की थी। इसके बाद पात्र परिवार देश के अन्य राज्यों में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से संबद्ध अस्पतालों में उपचार का लाभ ले सकते हैं। गौरतलब है कि देश भर के 16,000 से अधिक सरकारी और 14,000 से अधिक निजी अस्पतालों में ये सुविधा उपलब्ध है। जयपुर में आज जेडीए मुख्यालय में परियोजना कार्य समिति पीडब्ल्यूसी की बैठक हुई। बैठक में शहर के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, यातायात व्यवस्था में सुधार करने और जल निकासी तथा हरित विकास और नागरिक सुविधाओं के विस्तार से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा की गई। जेडीए आयुक्त सिद्धार्थ महाजन की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में लगभग 219 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई। इनमें विद्याधर नगर के पास स्वर्ण जयंती ऑक्सीजन पार्क, रामनिवास बाग क्षेत्र में रॉयल हैप्पीनेस पार्क और राजस्थान उत्सव पार्क के लिए भी मंजूरी दी गई। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्य में करीब 2 सप्ताह के अंतराल के बाद मॉनसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। बीते 24 घंटों में कई स्थानों पर मध्यम से तेज बरसात का दौर चला। सीकर में देर रात शुरू हुआ बारिश का सिलसिला सुबह तक जारी रहा। सीकर ग्रामीण में 11 सेंटीमीटर से अधिक पानी बरसा। उधर झालावाड़ जिले के मनोहर थाना में जारी बरसात के कारण परवन नदी उफान पर आ गई है। 12 जिले में भी आज करीब 1.5 घंटे मूसलाधार बारिश हुई। भरतपुर में भी सुबह से ही कभी हल्की तो कभी तेज बरसात का दौर बना हुआ है। कोटा जिले में भी मौसम का मिजाज बदला और ग्रामीण अंचल झमाझम बारिश से तरबतर हो गए। झुंझुनू, चूरू, कोटपुतली, बहरोड, डीडवाना, कुचामन में भी मॉनसून सक्रिय है। बारिश होने से लोगों को उमस और तपन से राहत मिली है। मौसम विभाग ने आज 33 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट बताया है। मॉनसून की रफ्तार पकड़ने से प्रदेश के प्रमुख बांधों में भी पानी की आवक शुरू हो गई है। बिसलपुर बांध अपनी क्षमता का लगभग 66% से ज़्यादा भर चुका है। वहीं राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बढ़ते साइबर अपराधों को देखते हुए राज्य में जागरूकता शिविर लगाए जाने पर जोर दिया है। श्री देवनानी ने से भारतीय स्टेट बैंक के जयपुर सर्कल के मुख्य महाप्रबंधक ओमकारनाथ चौधरी ने आज भेंट की। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने लोगों को साइबर क्राइम के प्रति जागरूक करने की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने कहा कि इसके लिए व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाना आवश्यक है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आज सरकारी और निजी स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए कानूनी साक्षरता और नशा मुक्ति जागरूकता शिविर लगाए गए। इसी कड़ी में ब्यावर के विभिन्न स्कूलों में नशा मुक्ति और विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से विद्यार्थियों को नशीले पदार्थों से होने वाले नुकसान के बारे में बताया गया। विद्यार्थियों को नशे से दूर रखने और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का संदेश दिया गया। भरतपुर में भी न्यायिक अधिकारियों की ओर से विभिन्न विद्यालयों में विद्यार्थियों को नशे से दूर रखने के लिए से नो टू ड्रग्स मुहिम चलाई गई। उधर हनुमानगढ़ में भी विद्यार्थियों ने नशा मुक्त जीवन का संकल्प लिया। टोंक जिले के मालपुरा में 4 व्यावसायिक फर्मों पर राज्य कर विभाग की प्रवर्तन शाखा ने तलाश और जब्ती की कार्रवाई की, जिसमें करोड़ों रुपयों की फर्जी बिलिंग के जरिए कर चोरी किए जाने के संकेत मिले हैं। ये कारोबारी तिलहन, खाद्य तेल और चीनी के व्यवसाय से जुड़े हैं। शुरुआती जांच में सामने आया है कि ये चारों फर्में एक ही व्यक्ति द्वारा चलाई जा रही थी। जब्त किए गए दस्तावेजों की जाँच की जा रही है। श्रीगंगानगर जिले के रायसिंह नगर क्षेत्र में डिग्गी में डूबने से 2 युवकों की मौत हो गई। ये दोनों भाई खेत में पाइप ठीक करने गए थे। इस दौरान एक युवक फिसल कर

0: पानी की डिग्गी में गिर गया। दूसरा भाई उसे बचाने के लिए डिग्गी में कूदा, किंतु पानी गहरा होने के कारण दोनों की मृत्यु हो गई। घटना के बाद गोताखोरों की मदद से उनके शव बाहर निकाले गए। डीग जिले के सरकारी स्कूलों में इको क्लब बनाए जाएंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सतत विकास लक्ष्यों और केंद्र सरकार के लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट मिशन के तहत ये पहल की गई है। जिला शिक्षा अधिकारी बलवीर सिंह ने बताया कि इन इको क्लबों के माध्यम से साल भर वर्षा जल संग्रहण, वन महोत्सव और पौधरोपण की गतिविधियां होंगी। इनके जरिए बच्चों में पर्यावरण संरक्षण की अलख जगाई जाएगी। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से होने वाली कनिष्ठ विधि अधिकारी परीक्षा 2025 के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ये परीक्षा 26 और 27 जुलाई को दो पारियों में होगी। परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष बनाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जयपुर में भी जिला स्तरीय परीक्षा कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। वहीं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 28 जून को हुई वनपाल सीधी भर्ती परीक्षा की प्रारंभिक उत्तर कुंजी भी जारी कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भेज सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप और MyGOV ओपन फोरम के माध्यम से भी विचार भेजे जा सकते हैं। ये सुझाव 24 जुलाई तक स्वीकार किए जाएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए सभी से मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया। कहा, सरकार दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए संकल्पबद्ध। संसद में विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही आज दूसरे दिन भी बाधित रही। राज्य सरकार ने युवाओं को सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री युवा सुयोग कार्यक्रम शुरू किया। और प्रदेश में मॉनसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ी, कई स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप ऋतिका गुप्ता से सिरोही जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं साकेत गोयल। अरावली पर्वतमाला की गोद में बसे सिरोही जिले में पिछले दिनों कई महत्वपूर्ण गतिविधियां हुई। जिले में प्रशासनिक स्तर पर कई आयोजन हुए जिसमें लोगों की बढ़ चढ़कर भागीदारी रही। वहीं धार्मिक और सामाजिक आयोजनों से भी जिले में उत्साहपूर्ण माहौल रहा। इस बीच माउंट आबू का सुहावना मौसम पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है। सिरोही जिले के आबूराज के ज्ञान सरोवर में विधि और न्याय मंत्रालय की ओर से दो दिवसीय रिफॉर्म्स उत्सव और चिंतन शिविर पिछले दिनों संपन्न हुआ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि ऐसे शिविर आत्मचिंतन और व्यक्तित्व विकास के माध्यम से कार्यकुशलता, सकारात्मक नेतृत्व क्षमता और सेवा भाव को नई ऊर्जा प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा कि ये शिविर विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए सभी को संकल्पित भी करेंगे। श्री मेघवाल ने कहा कि शिविर में मंथन के बाद तैयार किया गया घोषणा पत्र देश में सुधार की रफ्तार को तेज करेगा। चिंतन शिविर में देश भर से आए विधि विशेषज्ञों, न्यायिक अधिकारियों और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने न्यायिक सुधारों, तकनीक आधारित न्याय व्यवस्था, पारदर्शिता और जनसुलभ न्याय जैसे विषयों पर विभिन्न सत्रों में चर्चा की। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले पिछले दिनों सिरोही जिले के दौरे पर रहे। उन्होंने मानपुर में भगवान बुद्ध की प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर उन्होंने भगवान बुद्ध की शांति, करुणा और मानवता के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। पत्रकारों से बातचीत में श्री अठावले ने कहा कि MSME सेक्टर को मजबूत कर रोजगार के अवसर बढ़ाए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जिले भर में विशेष उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने आबूराज में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में योगाभ्यास किया। उन्होंने कहा कि अरावली की गोद में बसा आबूराज आध्यात्मिक ऊर्जा और प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत संगम है और योग के लिए सर्वोत्तम स्थलों में से एक है। इस अवसर पर हजारों लोगों ने सामूहिक योग कर स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। जिले में ग्रामीण और शहरी सेवा शिविरों के माध्यम से आम जन की सरकारी समस्याओं का त्वरित

0: समाधान किया गया। एक ही स्थान पर लोगों को विभिन्न विभागों की सरकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया गया। आज से शिविरों के फॉलोअप कैंप भी शुरू हुए हैं। जिला कलेक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर ने पिंडवाड़ा में आयोजित सुगम्य सिरोही अभियान के प्रमाणीकरण शिविर का पिछले दिनों निरीक्षण किया। उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। अभियान के दूसरे चरण में शिवगंज, आबू रोड और सिरोही में भी दिव्यांग जन प्रमाणीकरण शिविर आयोजित किए जाने हैं, जिससे अधिक से अधिक लोगों को सरकारी सुविधाओं का लाभ मिल सके। इसी दौरान जिला कलेक्टर ने पिंडवाड़ा क्षेत्र के घरठ, मालेरा, जल जीवन मिशन, पंचायत भवन, नर्सरी, मोरस बांध का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रदेश के एकमात्र पर्वतीय पर्यटन स्थल माउंट आबू में इन दिनों मौसम सुहावना बना हुआ है। कभी हल्की बारिश तो कभी घने बादल और कभी धुंध से ढकी अरावली की पहाड़ियां पर्यटकों का मन मोह रही है। नक्की झील, गुरु शिखर, सनसेट पॉइंट, टॉड रॉक, पीस पार्क और प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर सहित सभी प्रमुख पर्यटन स्थलों पर अच्छी चहल पहल देखने को मिल रही है। छुट्टियों के दिनों में होटल, रेस्तरां और स्थानीय बाजारों में भी रौनक बढ़ जाती है, जिससे स्थानीय पर्यटन व्यवसायियों को फायदा हो रहा है। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सिरोही जिले में पिछले दिनों उल्लेखनीय कार्य हुआ। हरियालो राजस्थान अभियान और एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत जिले भर में हजारों की संख्या में पौधे लगाए गए। ग्राम पंचायत रामपुरा के पीपल की चारागाह में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और आमजन ने पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। पिछले दिनों शिवगंज शहर को बड़ी सौगात मिली। अमृत योजना 2.0 के तहत लगभग 31 करोड़ 84 लाख रुपए की लागत से शहरी जल योजना के संवर्धन और पुनरुद्धार कार्य का भूमि पूजन किया गया। नई जल टंकी सहित कई कार्यों से शहर की पेयजल व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। इसके साथ ही सिरोही जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा वाला पेपर लीक वेवणु रोकण सारू सगळाऊ मिलर कोशिश करण बाबत कह्यो। सरकार रो दोषियां रे खिलाफ कड़ी कार्रवाई रो संकल्प दोहरायो। संसद रा दोन्यु सदना माए विपखरा सदस्यां रा हंगामा रा कारण आज दूजा दिन ही कामकाज नहीं भे सक्यो। राज्य सरकार नौजवानों ने और मजबूत बनावन सारू मुख्यमंत्री युवा सुयोग कार्यक्रम चलायो। और प्रदेश में चौमासारी बिरखा ओजू स्वरूप ही कई थोड़ा में बरसियो। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरे बस समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आवता भगत माए वेवण वाली परीक्षा वाला पेपर लीक वेवणु रोकण सारू सगली संबंधित पार्टियां मिलर कोशिश करण बाबत कहो है। आज संसद भवन माए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए रा संसदीय दल री हर सप्ताह वेवण वाली रणनीति मीटिंग पाछे संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू आ जानकारी दीनी। वे बतायो कि प्रधानमंत्री परीक्षा वाला पेपर लीक करण वाला रा खिलाफ कड़ी कार्रवाई करण सागे देश रा नौजवाना रा भला रो संकल्प दोहरायो। रिजिजू कहो कि लाडला दिनाभिया नीट पेपर लीक मामला रा सगला आरोपिता ने गिरफ्तार कर लिया गया है और 13 आरोपी जेल माए बंद है।
2: आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया और प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब करके करें।
1: श्री रिजिजू कहो कि प्रधानमंत्री मोदी न्यारा न्यारा देशां सागे करी जिया मुक्त व्यापार समझौता रा बारा मा ये जानकारी दीनी। वे कहो कि किसाना रा भला माथे खास ध्यान दियो चियो है और हमेशा दियो चावेला। संसद रा पावस सत्र रा दूजा दिन आज ही विपखरा सदस्यां कान्यूं करी जिया हंगामा रा कारण दोन्यों सदना री कार्रवाई नी चाल

0: की शोर शराबा रे कारण दोनों सदना री कार्रवाई पहली तीन तीन दफा हर पछे आखा दिन सारू टालती रिची। नीट परीक्षा पेपर लीक समेत न्यारा न्यारा मुद्दा रे कारण लोकसभा री कार्रवाई माई लगातार अड़चन आई, जदकर राज्यसभा माई विपक्षरा सदस्य परीक्षा प्रणाली और विद्यार्थियों जुड़िया मुद्दा माथे हंगामो कीनो। लोकसभा में विपक्षरा नेता राहुल गांधी आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मुलाकात कर विपक्ष कानून विद्यार्थियों रा मुद्दा माथे बातचीत री मंशा जताई व संसद में विद्यार्थियों रा मुद्दा माथे विगतवार चर्चा री मांग कीनी। ई पाछे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह सोशल मीडिया रे जरिए कहो के सरकार नीट एरवाऊ जुड़िया आंदोलन रे बारा में संसद में चर्चा सारू तैयार है। सुप्रीम कोर्ट कानून बनाई जी समिति अरावली री डूंगरियां और पहाड़ियां जुड़िया मामला माथे जनता री राय मांगी है। समिति राजस्थान हरियाणा गुजरात और दिल्ली रा इनु जुड़िया एड़ा लोगा पर्यावरणविदा इन्हें बचावन वाला और स्थानीय समुदायों राय मांगी है, जानी काम कमाई और भलो इनु जुड़ियो है। समिति ने 31 अगस्त ताई राय दी जा सके है। राज्य सरकार डिजिटल प्लेटफॉर्म माथे आधारित मुख्यमंत्री युवा सुयोग कार्यक्रम चलायो है। इन तहत नौजवाना रा नाम मंडावन सिखावन और न्यारी न्यारी योजनाओं जुड़ाव एकीकृत प्रणाली रे जरिए भ सकेला। इनरो मकसद नौजवाना ने नौकरी धंधा रा मौकाओं जोड़ और खुद रे पाण उबा करनो है। मुख्यमंत्री युवा सुयोग री पायलट परियोजना री शुरुआत जयपुर के बगरू विधानसभा हलकाऊ करी जी है, जिन्हें आगे पूरा राज्य माए बधाई जावेला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज मारा रहवास हूँ इन री शुरुआत कीनी। इ मौके वह नौजवाना सागे बातचीत कीनी।
1: ये प्लेटफॉर्म हमारे युवाओं के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए, खेल के लिए, कौशल विकास के लिए और सुशासन से जोड़ने के लिए ये बहुत बड़ी पहल है और इस पहल के माध्यम से लगातार हमारा युवा आगे बढ़ रहा है। युवाओं का धैर्य, आत्मविश्वास, अथक परिश्रम और विकसित भारत की ताकत वो सभी हमारे युवाओं से जुड़ी है। जब युवा शक्ति सही दिशा में सही संस्कारों के साथ लगती है तो निश्चित रूप से वो राष्ट्र आगे बढ़ता है।
0: उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ही मौके मौजूद हा। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य मां योजना रा तहत प्रदेश रा पात्र परिवार ने अब दूजा राज्य में आई मुफ्त इलाज मिल रियो है। राज्य सरकार री ओर चलाई जी आउटबाउंड इंटरस्टेट पोर्टेबिलिटी व्यवस्थाओं पात्र लोग देश रा न्यारा न्यारा राज्य में आए 25 लाख रुपया ताई रो कैशलेस इलाज ले सके है। चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग री शासन सचिव गायत्री राठौड़ बतायो के 6 महीना में प्रदेश रा 30,000 बत्ता लोग दूजा राज्य रा अस्पताल में मुफ्त इलाज करायो है। सरकार लारला साल 15 दिसंबर ने आ योजना चलाई ही। ई पाछे हुई पात्र परिवार देश रा दूजा राज्य में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनाओं जुड़िया अस्पताल में इलाज करा सके है। देश रा 16,000 बत्ता सरकारी और 14,000 बत्ता गैर सरकारी अस्पताल में ओ सुबितो मुहैया कराई चियो है। जयपुर रा जेडीए मुख्यालय में आज परियोजना कार्य समिति पीडब्ल्यूसी री मीटिंग रखी जी। इन में शहर रा बुनियादी ढांचा न मजबूत बनावण, आवण जावण री व्यवस्था में सुधार करण, पानी री निकासी, हरित विकास और जनता रा सुबिता माए बढ़ोतरियों जुड़िया प्रस्ताव माथे चर्चा करी जी। जेडीए रा आयुक्त सिद्धार्थ महाजन रे सदारत माए भी ई मीटिंग माए करीब 219 करोड़ रुपया रा खर्च वाली विकास री कई परियोजनावा ने मंजूरी दी री जी। इन दौरान विद्याधर नगर के ने स्वर्ण जयंती ऑक्सीजन पार्क, रामनिवास बाग हल्का माए रॉयल हैप्पीनेस पार्क और राजस्थान उत्सव पार्क सारोई मंजूरी दी री जी। ए समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। राज्य में करीब 2 सप्ताह पाछे चौमासारी बिरखा उजू वहन लगी है। लाड़ला 24 घंटा में कई थोड़ा बरसात हुई। सीकर माए मोड़ी रात सरूफियो बरसात रो सिलसिलो आज सवारे ताई चालतो रहो। सीकर जिला रा गावाई हलका माए 11 सेंटीमीटर उबत्तो पानी बरसियो। झालावाड़ जिला रा मनोहर थाना माए भी बरसात

परवन नदी उफनवा लागी है। 12 जिला में आज करीब 1.5 घंटा ताई जोरदार मेह बरस्यो। भरतपुर में सवारे हुई बिरखा बह रही है। कोटा जिला रा गांवाई हल्का में झमाझम बारिश हुई। झुंझुनू चूरू कोटपुतली बहरोड और डीडवाना कुचामन हुई बिरखा वेवन रा समाचार मिलिया है। मौसम विभाग आज 33 जिला में बारिश रो येलो अलर्ट जारी कीनो है। चौमासारी बिरखा ओजू जोर पकड़वाऊ राज्य रा खास खास बंधा माए पानी आवन लाग्यो है। बीसलपुर बंधो बूतारो 66% उम्बत्तो भर गयो है, जबकि राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर बंधा माए पानी रो लेवल लगातार बढ़ रियो है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी बधता साइबर अपराधान ध्यान राखता थका जागरूकता शिविर लगावण माथे जोर दिनो है। वह आज भारतीय स्टेट बैंक रा जयपुर सर्कल रा मुख्य महाप्रबंधक ओंकार नाथ चौधरी सागे बातचीत दौरान आ बात कही। वह कहो कई सारू मोटा पैमाना माथे जागरूकता अभियान चलावणो जरूरी है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा

0: ता साइबर अपराधन ध्यान राखता थका जागरूकता शिविर लगावण मथ जोर दिनो है। वे आज भारतीय स्टेट बैंक रा जयपुर सर्कल रा मुख्य महाप्रबंधक ओंकार नाथ चौधरी सागे बातचीत दौरान आ बात कही। वे कहो कई सारू मोटा पैमाना मथ जागरूकता अभियान चलावणो जरूरी है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण री ओर आज सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में कानूनी साक्षरता और नशा मुक्ति जागरूकता शिविर लगाई चिया। ब्यावर री न्यारी न्यारी स्कूलों में विद्यार्थियों ने नशीली चीजा काम लेवण उवण वाला नुकसान रे बारा में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण री ओर जानकारी दी रही जी। विद्यार्थियों ने नशो नी करण और स्वस्थ जीवन शैली अपनावण रो संदेश दियो चियो। भरतपुर में आई न्यायिक अहलकारां री ओर न्यारी न्यारी स्कूलों में नो टू ड्रग्स मुहिम चलाई ची। जयपुर नगर निगम री ओर कुत्ता और बिल्लियां रा टीका लगावण रो खास अभियान चलाई चियो है। निगम रा आयुक्त ओम कसेरा बतायो कई सा गई पालतू कुत्ता रा रजिस्ट्रेशन रो काम ही शुरू करण बाबत जयपुर में शिविर लगाया जावेला। वे बतायो का ऑनलाइन तरीका हुई घर बैठिया कुत्ता रो पंजीकरण करायो जा सकेला। टोंक जिला रा मालपुरा माए राज्य कर विभाग री प्रवर्तन शाखा तिलहन खाद्य तेल और शक्कर रा कारोबार जुड़ी चार फर्मा मथ तलाशी और जब्ती री कार्रवाई कीनी। इन दौरान करोड़ा रुपया रा फर्जी बिल लगार टैक्स चोरी करण री ठापड़ी जब्त करी जा कागजात री जांच करी जा रही है। श्री गंगानगर जिला रा राय सिंह नगर हल्का माए डिग्गी माए डूब जावण रे कारण दो जना री मौत वेगी। एक ही परिवार रा दोनों जना खेत माए पाइप ठीक करण किया हा जमायो एक जनो रपट और पानी रे डिग्गी माए पड़ गयो। वाने बचावण सारू दूजो जनो ही डिग्गी माए कूद्यो पर पानी गहरो वेवणो दोनों जना डूब गया और मारी मौत वेकी। हादसा पाछे गोताखोरा ने मदद दोनों लाशा बाहर निकाली ची। डीग जिलारी सरकारी स्कूलों में ईको क्लब बनाया जावेला। राष्ट्रीय शिक्षा नीति रा लगातार विकास रा लक्ष्य और केंद्र सरकार रा लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट मिशन रा तहत आशीर्वाद करी ची है। जिला शिक्षा अधिकारी बलवीर सिंह बतायो के आ इको क्लबा ने जरिए आखा साल बिरखारो पानी भेड़ो करण वन महोत्सव और पौधारोपण रा काम करिया चावेला। राजस्थान लोक सेवा आयोग कानून 26 और 27 जुलाई ने दो दो पारियां माए ली जावन वाली कनिष्ठ विधि अधिकारी परीक्षा 2025 री जरूरी तैयारियां पूरी कर ली रही है। परीक्षा सारू जिला स्तर मथ कंट्रोल रूम बनाया जा रहा है। ये बीच राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड री ओर 28 जून ने कराई जी वन पाल सीधी भर्ती परीक्षा री प्रारंभिक उत्तर कुंजी जारी करती रही है। आखिर माए खास समाचार एक फेर सुन ली रहो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा वाला पेपर लीक वेवणु रोकण सारू सगळाऊं मिलर कोशिश करण बाबत कह्यो। सरकार रो दोषियां रे खिलाफ कड़ी कार्रवाई रो संकल्प दोहरायो। संसद रा दोनों सदना माए विपक्ष रा सदस्यां रा हंगामा रे कारण आज दूजा दिन ही कामकाज नहीं भे सक्यो। राज्य सरकार नौजवानों ने और मजबूत बनावण सारू मुख्यमंत्री युवा सहयोग कार्यक्रम चलायो। और प्रदेश में चौमासारी बिरखा ओजू सरू भी कई थोड़ा मौसम में बरसियो। इस आगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भियो। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर संध्या के 7 बजे हैं। ग्रामीण श्रोता सुने अपना कार्यक्रम चौपाल।

कारण वो बड़ो उचित समय इंगमा के तरीके शू आपां भूमि की तैयारी करनी है, फिर रोपण किया करना है, सार संभाल किया करनी है, किसा किसा कीट कीट बीमारियां हैं इंगमा जी की आपां नुकसान कर सके, बंगे बारे में आपां चर्चा कर। सबसे पहला सुना आपां भजन।

चौपाल कार्यक्रम सुनने सगळ्या परिवाराने भुरू भाई की घणी घणी राम राम, मोकळी मोकळी राम राम। किसान भाइयों, मीनू है जुलाई गौर बहुत सा अपना जी का क्षेत्र का किसान है, वे बाग लगा रखे है या बाग नया लगाना चाहे तो ओ जी को समय 15 जुलाई से 15 सितंबर तक ओ फल वृक्ष

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: सुनो भजन किसान भाइयों, बात करा आप नींबू वर्गीय जिका फल वृक्ष आप लगावा तो बीम वास्ते सबसे जरूरी है कि भूमि की जी की तैयारी है बिंग में आप विशेष ध्यान देवा। जठे भी आप नींबू वर्गीय फल वृक्ष लगाना है बट खेत ना अच्छी तरह पहला जुताई करके समतल कर लेवा। और नींबू प्रजाति का जिका फल वृक्ष है उत्पादन खूब देवे, इन वास्ते भूमि ने शक्तिशाली यानी कि उर्वरा शक्ति भूमि की तकड़ी होनी चाहिए। इन वास्ते आप खेत में हरी खाद जरूर दबावा, जिया ढेंचा है, सनई है, गुआर है, आंगी हरी खाद जिकी है बा भूमि की उर्वरा शक्ति ने मजबूत कर दे और अपने उत्पादन जिको है वो बढ़िया मिले। विशेष ध्यान देवा आप रोपण पर और सार संभाल पर। सामान्य रूप से तो आप नींबू वर्गीय जिका बुंटा है वह 6x6 मीटर की दूरी पर लगावा, पर जठे जिका किसान भाई बाग में बूंद बूंद सिंचाई पद्धति स्थापित कर रखी है वे इनकी दूरी 6x4 मीटर भी राख सके। खड्डा अपना अब तैयार करेड़ा होना चाहिए और आ खड्डा में 50-60 किलो गोबर की सडेडी चौकी खाद जी की है, बार 1 किलो सिंगर सुपर फास्फेट 75-100 ग्राम क्यूनाल फास और 1.5% चूर्ण खड्डे की जी माटी है बिगमा चौकी त्रियाँ मिलागिर आप भर देवा। बाग ने सफल बनाने वास्ते आप बूंटे की रोपाई जी की है बा महत्वपूर्ण स्थान पर करनी है। और गलत तरीके से जो बूंटे की रोपाई होगी तो बाग जी को है वो आपने बढ़िया उत्पादन दे कौन पावेगा और अनेक तरीके की यानी भिन्न भिन्न प्रकार की जी की समस्या है वह उत्पन्न हो जाएगी, जगह को समाधान भी बूंटे ने रोपण के बाद में संभव को नहीं हुए। इन वास्ते रोपाई वास्ते आपने कई चीज़ों को ध्यान रखना है, जिया बूंटे की जब रोपाई करा भी समय गड्ढे की जी की सतह पर जमीन के एकदम बराबर हुए या फिर ऊंची होनी चाहिए, क्योंकि बूंटे की सिंचाई करने के बाद में गड्ढे की जी की मट्टी है बार नीचे नहीं बैठनी चाहिए। इन वास्ते बूंटे की रोपाई से पहला खड्डन चौखी तरह पानी भर देवा, बारी बारी भर देवा ताकि जितनी माटी बैठनी है वह बैठ जाए, बिना भूमि को जिको एकदम भूमि के बराबर या भूमि ऊंची अपने रोपाई करनी है। खड्डे में बूंटे ने बीतो ही दबाना है, जितो आप नर्सरी में जिको पोलीथीन के माँ बूंटो लियावा बीतो ही आप भूमि में बूंटे ने दबाना है। पौधे ने आप एकदम सीधो लगाना है, आडो टेडो नहीं होना चाहिए। एर पौधे ने खड्डे में लगाने के ठीक पहला बींग है आसे पास जी की जड़ लागेड़ी हुए भी थैली गमा वह जड़ा हटा देनी है, पोलीथीन ने चौकी तरह हटा देनी है और बूंटे की जी की जड़ है बा बिन कई तरीके को बिंग में जाल नहीं होना चाहिए। आ चीज़ों को आपने ध्यान रखना है। बिंग अलावा बूंटे ने हमेशा शाम के समय लगावा और लगामते ही पानी देवा। नया जी का बूंटा लगाएड़ा है बन जे सारो भी आप देना है, जो कोई टेडो लाग गयो या टेडो थोड़ो टेडो हो गयो तो माने लकड़ी गाड़ गए बन सारो देना चाहिए ताकि बूंटो जिको है झुकेड़ो नहीं रवे। बूंटे को जिको मूल व्रंत है जड़ है जिकी बिंगे निकलने वाली जिकी फुटान एर वाटर स्प्राउट जगह ना आप गुल्लो भी कवा वो निकाल देना चाहिए अपन। एर नए बाग में बाढ़ एर अवरोधक जिका आप लगाना है, बंग में आप वायु रोधक जी का बूंटा है जिया अर्जुन हो गयो, शीशम हो गयो, देसी आंवलो, जामुन, बेल ए उत्तर पश्चिमी दिशा में आपने लगाना है ताकि जी की ठंडी हवा आवे बींसू बचाव कर लेवे। बारिश जद होवे बीं दौरान बूंटे के कन्ने पानी इकट्ठो ना होने देवा और पानी निकासी वास्ते आप पहले ही बाग के चारों तरफ

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम

0: Shubham Finance Branch पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: सुनो गीत किसान भाइयों, बिरखा को मौसम ही चलन लाग रही है। इन बिरखा के सागे कीट व्याधियाँ रोग भी अपनी फसल के माँ आवे। जिका किसान भाया मूंगफली की फसल कर रखी है तो वह भी पौध संरक्षण करे बा बहुत ही जरूरी है। कीट के नियंत्रण रखनो सबसे ज़्यादा जरूरी है बढ़िया उत्पादन लेने वास्ते। खड़ी फसल में जो दिमक या सफ़ेद लट अपन दिखाई देवे तो बिंग रोकथाम वास्ते अपना क्लोरोपायरीफास 20 ताकत 600 मिलीलीटर प्रति बीघा की दर से सिंचाई पानी के सागे प्रयोग कर सका। बीसू दिमक और सफ़ेद लट पर नियंत्रण हो सके। इनके अलावा मोयला है, चैम्पा है, इनको प्रकोप जो ज़्यादा दिखाई देवे तो 250 मिलीलीटर मिथाइल डिमोटोन या डाइमिथेट या 300 मिलीलीटर मेलाथियान प्रति बीघा की दर से छिड़काव आप कर सका। इनके अलावा बरूथी है जकिन आप माइट भी कहवा, पिछले कई साल में अपन देखे है कि अप्रैल महीने में बोईड़ी जी की फसल है बिंग मा माइट को प्रकोप जी को है कटी कटी दिखाई देवे। ज़्यादा जे प्रकोप दिखाई देवे तो आप गंधक को चूर्ण 4 किलो प्रति बीघे की दर्शन बुरकाव कर सका। जिका रोग है बिंग मा मूंगफली के अंदर ज़्यादा जिका नुकसान करने वाला रोग है बिंग मा टिक्का बीमारी है। टिक्का बीमारी के प्रकोप होने पर आप कार्बोनडेजिम 50% WP 1 ग्राम प्रति लीटर पानी गमा या मैनकोजेब 2 लीटर प्रति लीटर पानी गमा घोल बना के प्रति बीघे की दर से छिड़काव कर सका। खड़ी फसल में जे संधि विगलन रोग जिके नापा कोलर रोट भी कमा जे दिखाई देवे तो बिंगे रोकथाम वास्ते आप प्रोपिकोनाजोल 25 ताकत या हेक्साकोनाजोल 5 ताकत 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में माटी के सागे या सिंचाई पानी के सागे 200 मिलीलीटर प्रति बीघे की दर से आप दे सका। जैव उत्पाद की बात करें तो ट्राइकोडर्मा विरडी 10 ग्राम प्रति किलो की दर से बीज उपचार और 4 किलो ट्राइकोडर्मा विरडी को 250 किलो गोबर की खाद के सागे उपयोग कर सका और 15 दिन पहला भिगो के छाया में रखा और बुआई के समय प्रति हेक्टर की दर से माटी का माँ मिला सका। इंग माँ नीम जी की है वह भी बहुत ही ज़्यादा कारगर है और नीम को भी उपयोग आप कर सका। जड़गलन जे आपन दिखाई देवे तो इन रोग के नियंत्रण वास्ते आप 2.5 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा विरडी प्रति बीघे की दर से 60-65 किलो सडेडी जी की गोबर की खाद है बिंग सागे मिलागर छाया में रखा और बुआई के समय भूमि में मिलावा तो बिंग सागे बीज ने 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा विरडी प्रति किलो बीज की दर से उपचारित भी कर सका बिंग बाद में बुआई करा। तो इन तरीके से आप कीट को जी को है वो संरक्षण कर सका, पौधे को संरक्षण कर सका और कीट को नियंत्रण कर सका। सुन लें एक और गीत।

सुनो गीत, किसानी की बात करें तो नीम के वृक्ष की बात बहुत ही ज़रूरी है। किसान भाइयों, खेती में नीम को बहुत ही बड़ो महत्व है। और नीम के पेड़ की जिकी पत्तियां हैं, निम्बोली है, वह मिलन वाली खाद है, तेल है, कीटनाशक है, अंग उपयोग भूमि की जिकी उर्वरा शक्ति है, बिना बढ़ाने में और कीट पर नियंत्रण करने में, बीमारी पर नियंत्रण करने वास्ते बहुत ही सफल इलाज है। नीम के बीज में बैक्टीरिया, फफूंद ही रोग रोधक जी के गुण है वह मिले, और बूंटे के मार रोग नियंत्रण में इनको प्रयोग बहुत ही सफल देखियो गए। इंगे सागे जी आप अन्न को भंडारण करा तो बिंग माँ भी नीम की पत्तियां के सागे जी आप नमक मिला के रखा तो गुण और दूसरा जी का भंडारण कीट है वह कौन लगे। अपना वैज्ञानिक भी शोध में आ सिद्ध कर चुके हैं कि नीम के बीज मिलन वाला जी का रसायन है, बीशु बूंटे पर लगने वाला जी का कीट है, बीमारी है, वहाँ पर आप सफलतापूर्वक नियंत्रण कर सका। नीम का जी का उत्पाद है बागमा कीट नियंत्रण वास्ते बारी बारी यानी लंबे समय तक जे आप उपयोग करा तो कीट में प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न ही कोनी हो। नीम की पत्तियां जे सर्दियां में आप बेली कर लिया, और पीली पड़ेड़ी जी की पत्तियां गिरेड़ी जी की बूटाऊँ आपी बानी इकट्ठी करके सड़ागे खेत में प्रयोग करके खाद के रूप में काम में लेवा तो माटी जनित जी का हानिकारक सूक्ष्म जीव है बांगी संख्या में आप कमी देख सका। इनको बड़ो ही महत्वपूर्ण प्रभाव पड़े। बीछू होशी के जी का अंडा है, लार्वा।

है, प्यूपा है, बंगो, जिकी बढ़ोतरी है, बिंग में कमी आ जाएगी, लार्वा, निम्फ, अंगो, निर्मोचन में रुकावट आ जैसी, लैंगिक संचार, वयस्क अंग है, बंदीकरण में भी व्यवधान उत्पन्न हो जाए। यूं कीड़ा कांटा जिका है मोटा मोटी, जिका बढ़ना है, जिका भूमि जनित कीट है, बन है, बढ़नू आ रोक दे, धीरे धीरे इन खत्म ही कर दे। नीम का अनेक उत्पाद है, नीम की खड़ी है, नीम को तेल है, नीमास्त्र जगह आप बोला, नीम को अर्क है। आऊँ अगर आप अपनी किसानी में आने इस्तेमाल करा तो आपने जिको रसायनों ऊपर लागन वाला जिका खर्चो है बिग में कमी आ जी सी, जिकी फसल हो सी वह भी बड़ी गुणवत्ता वाली हो सी, जिकन आप ऑर्गेनिक भी कह दें जैविक भी कह दें। तो नीम को उपयोग जिको है वो बहुत जरूरी है किसानी के अंदर। नीम को पेड़ सारा लगाओ। नीम की खड़ी की जे आप बात करा तो गमले में जे आप घरांग माँ भी जी का पौधा लगा रखे तो बूंटे का माँ 50 ग्राम प्रति पौधों जी आप देवा तो अपन दूसरी खाद की, दूसरे रसायन की, दूसरे छिड़काव की जरूरत कौन पड़े। फल वृक्षा में बागा में 1 किलो 3 किलो प्रति पौधे की उम्र के आधार पर आप दे देवता रवा। सब्जी वास्ते आप 200 किलो प्रति बीघा, फसलों वास्ते आप 100 किलो प्रति बीघा। इंगो पाउडर को इस्तेमाल या आप इंगी खड़ी को इस्तेमाल करता रहा तो अपनी फसल जी की है बा निरोगी रहसी और बिंग माँ दिनों दिन अपन उत्पादन में बढ़ोतरी मिलेगी और सागे गुणवत्ता बहुत अच्छी मिलेगी। तो नीम को प्रयोग बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अब आपने कन कई मंडियों का बाजार भाव पुगता हुआ है, मैं थाने बता दूँ कि कणक सुरतगढ़ मंडी में आज बिकी है 2505 रुपया, सरसों बिकी है 7614 रुपया, मूँग बिकी है 6780 रुपया, गंगानगर मंडी में आज कणक का भाग भाव रहा 2600 नीचे में और ऊपर में 2734 रुपया, जो बिकी 2000 ले गए 2211 रुपया, तई ग्वार बिक्यो 5550 ले गए 5751 रुपया, चीणों बिक्यो 5150 ले गए 5325 रुपया, तई सरसों बिकी 7575 नीचे में और 7891 रुपया ऊपर में। मूंग का भाव आज नीचे का रहा 6051 रुपया और ऊपर में बिकी 6551 रुपया। जैतसर मंडी का भाव जी का अपने गन पुगता हुआ है बंगमा बतावे कि सरसों आज जैतसर मंडी में 7566 रुपया बिकी, कणक बिकी नीचे में 2500 रुपया और ऊपर में 2700 रुपया। बात करी आज आप नीम की तो सुना दें थाने नीम पर एक गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चौपाल। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलो हर्ट्स पर, FM बैंड 100.1 मेगा हर्ट्स और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर। संध्या के 7:45 हुए हैं। लीजिए भक्ति संगीत में अमर अकबर एंथनी फिल्म का गीत सुनिए, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ों में। गीत रचना आनंद बख्शी की, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

आइए कार्यक्रम का अगला गीत सुने लता मंगेशकर की आवाज़ में सुहागरात फिल्म से, गीत रचना इंदिवर की, संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

0: इसी गीत के साथ फिल्मी भक्ति गीतों का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संसद समीक्षा, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: अब आप मुनीश शर्मा से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले राज्यसभा, लेखक हैं पीटीआई भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में आज भी नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस द्वारा कथित लाठीचार्ज किए जाने का मुद्दा छाया रहा और इसे लेकर विपक्ष के हंगामे के चलते उच्च सदन की कार्यवाही दो बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के कारण उच्च सदन में आज शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं हो पाया। पूर्वान्ह 11 बजे बैठक शुरू होने के बाद हंगामे के कारण इसे दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। दोपहर 12 बजे बैठक फिर शुरू होने पर भी सदन में वही नजारा देखने को मिला और बैठक 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इसके बाद 2 बजे भी हंगामा थमा नहीं और उपसभापति हरिवंश ने एक ही मिनट के भीतर बैठक को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया। दो बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे बैठक शुरू होने पर कार्यवाही संचालित करने के लिए आसन पर आए उपसभापति हरिवंश ने सदन में एक विधेयक पेश करने को कहा। सदन की संशोधित कार्यसूची के अनुसार आज गृह मंत्री अमित शाह को राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश करना था। इस विधेयक में 1971 के मूल अधिनियम में संशोधन का प्रावधान है। इस बीच कांग्रेस सहित विभिन्न विपक्षी दलों के सदस्य अपने स्थानों पर खड़े होकर नारेबाजी और शोरगुल

करने लगे। विरोध कर रहे सदस्यों को शांत कराने का प्रयास करते हुए हरिवंश ने कहा कि आप जानते हैं कि सदन में आज जो भी कामकाज सूचीबद्ध है उसी पर आप बात कर सकते हैं। उन्होंने सदस्यों से कहा कि वे यदि इसी प्रकार का व्यवहार करते रहे तो फिर सदन कैसे चलाया जा सकता है। उन्होंने विपक्षी सदस्यों से अपने स्थानों पर बैठने और सदन में चर्चा शुरू करने की अपील की। श्री हरिवंश ने कहा कि सदन में चर्चा के लिए प्रक्रियाओं के नियम आपने ही बनाए हैं, उन नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करने दीजिए। उन्होंने कहा कि सदस्य यदि किसी विषय पर चर्चा के लिए सभापति से अनुमति चाहते हैं तो इसके लिए भी नियमों में प्रावधान दिए गए हैं। उपसभापति ने हंगामा कर रहे सदस्यों से कहा कि वे सदन में निर्धारित कामकाज होने दें और सदन की मर्यादा का पालन किया जाना चाहिए। उन्होंने विपक्षी सदस्यों से कहा कि यदि आप इसी तरह से अपने स्थानों पर खड़े होकर शोरगुल कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप चाहते नहीं कि सदन में कामकाज हो। हरिवंश जिस समय ये अपील कर रहे थे उस समय विपक्षी सदस्य अपने स्थानों पर खड़े होकर नारेबाजी और हंगामा कर रहे थे। इस दौरान सत्ता पक्ष के कई सदस्यों को भी अपने स्थानों पर खड़े होकर विपक्षी सदस्यों का विरोध करते देखा गया। सदन में हंगामा थमते न देख उपसभापति ने महज एक मिनट के भीतर ही बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। इससे पहले सुबह 11 बजे बैठक शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के जन्मदिन की जानकारी देते हुए उन्हें पूरे सदन की ओर से शुभकामनाएं दी और उनके दीर्घ स्वस्थ और खुशहाल जीवन की कामना की। श्री राधाकृष्णन ने कहा, मुझे विश्वास है कि उनका नेतृत्व युवाओं और नेताओं के लिए संविधान, लोकतंत्र और देश की अखंडता के प्रति भरोसा रखने के लिए प्रेरणास्पद मिसाल बनेगा। जिस समय सभापति उन्हें जन्मदिन की बधाई दे रहे थे उसी समय श्री खड़गे अपने स्थान पर खड़े हुए और उन्होंने हाथ जोड़कर सभी सदस्यों का अभिवादन किया और आभार व्यक्त किया। सदन के नेता जेपी नड्डा, कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी तथा अन्य नेताओं ने मेजें थपथपाकर श्री खड़गे को बधाई दी। उन्होंने सदस्यों को सूचित किया कि संसद टीवी पर सदस्यों के जन्मदिन की जानकारी नियमित तौर पर दी जाती है। श्री राधाकृष्णन ने इसके बाद स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा को भुवनेश्वर के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में एक सदस्य को नियुक्त करने संबंधी प्रस्ताव को पेश करने की अनुमति दी। श्री नड्डा ने प्रस्ताव रखते हुए कहा कि एम्स अधिनियम के तहत सदन के किसी भी सदस्य को एम्स भुवनेश्वर में नियुक्त करने के बारे में सभापति को अधिकृत करने के लिए वो प्रस्ताव पेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ममता मोहंता के 2 अप्रैल 2026 को सेवानिवृत्त होने के बाद एम्स भुवनेश्वर में ये रिक्ति बनी हुई थी। सदन ने इस प्रस्ताव को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। सदन ने संसदीय कार्य राज्य मंत्री एल मुरुगन द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव को भी ध्वनिमत से मंजूरी दी। इस प्रस्ताव में संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 और संघ राज्य क्षेत्र विधि संशोधन विधेयक 2024 संबंधी संयुक्त समिति में उच्च सदन की सदस्य सागरिका घोष और मनमोहन सामल को सदस्य बनाने का प्रावधान है। सभापति ने सदन को सूचित किया कि मनोनीत सदस्य पीटी उषा ने ग्लासगो में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय दल का नेतृत्व करने के अपने दायित्व को पूरा करने के मकसद से इस सत्र में 20 जुलाई से 4 अगस्त तक अनुपस्थित रहने की अनुमति मांगी है। सदन ने उन्हें इसकी अनुमति दे दी। बाद में श्री खड़गे ने कुछ कहना चाहा और सभापति ने उन्हें अपनी बात रखने की अनुमति दी। श्री खड़गे ने कहा कि नीट पेपर लीक को लेकर कल राजधानी में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने बल प्रयोग किया जो उचित नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठी चार्ज किया गया और पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। उनकी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि सत्ता पक्ष के सदस्यों ने आपत्ति जताते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। इस पर विपक्षी सदस्यों ने भी हंगामा शुरू कर दिया। सदन में हंगामे को देखते हुए सभापति राधाकृष्णन ने कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी और शून्यकाल नहीं हो पाया। 12 बजे बैठक शुरू होने पर शोरगुल के बीच ही राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी ने लोकसभा का एक संदेश सदन में पढ़कर सुनाया। उन्होंने सदन को बताया कि लोकसभा ने कल अपनी बैठक में एक प्रस्ताव पारित कर राज्यसभा से लाभ के पद संबंधी संयुक्त समिति में

0: दो सदस्यों के निर्वाचन की सिफारिश की है। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू हुआ था और नीट पेपर लीक सहित विभिन्न मुद्दों पर हंगामे के कारण कल भी सदन में कोई महत्वपूर्ण विधायी कामकाज नहीं हो पाया था। लीजिए अब सुनिए लोकसभा में हुई कार्रवाई की समीक्षा। लेखक हैं यूनिवार्ता के वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद आजाद और वाचिका हैं जया भारती।
1: नीट पेपर लीक तथा अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष का हंगामा आज दूसरे दिन भी जारी रहा, जिसके कारण लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। दो बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही शुरू करते हुए नियम 377 के तहत सदस्यों से अपने विषय सदन के पटल पर रखने को कहा तो विपक्षी दलों के सदस्य नारेबाजी करते हुए सदन के बीचों बीच आ गए। श्री सैकिया ने हंगामा कर रहे सदस्यों से कहा कि आप लगातार दूसरे दिन सदन के बीच आकर कार्यवाही बाधित कर रहे हैं, जिससे सदन का कामकाज प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कई बार सदस्यों से सदन की कार्यवाही चलाने में सहयोग करने की अपील की, लेकिन हंगामा थमने के बजाय और तेज हो गया, जिसके बाद उन्होंने सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले सुबह 11 बजे अध्यक्ष ओम बिरला ने जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू की तो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, एसपी तथा अन्य विपक्षी दलों ने सदस्य नीट पेपर लीक और अन्य मुद्दों को लेकर नारेबाजी करने लगे। श्री बिरला ने प्रश्नकाल चलने देने में सदस्यों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि प्रश्नकाल सदस्यों के लिए सरकार से जवाब मांगने का महत्वपूर्ण अवसर होता है, लेकिन हंगामा जारी रहने पर उन्होंने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 12 बजे बैठक फिर से शुरू हुई तो विपक्षी सदस्य तख्तियां और बैनर लेकर सदन के बीचों बीच पहुंच गए और नारेबाजी जारी रखी। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने हंगामे के बीच आवश्यक विधायी दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए और सदस्यों से अपने अपने स्थान पर लौटकर शून्यकाल चलने देने की अपील की। उन्होंने कहा कि शून्यकाल में सदस्यों को अपने क्षेत्रों की समस्याएं उठाने का अवसर मिलता है और पूरा देश सदन की कार्यवाही देख रहा है। इसके बावजूद विपक्षी सदस्यों ने हंगामा जारी रखा, जिसके कारण सदन की कार्यवाही अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन ने लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची के संदर्भ में पंचायत स्थानीय सरकार होने के कारण राज्य का विषय है। पंचायतों को राज्यों के पंचायती राज अधिनियमों के अंतर्गत स्थापित और संचालित किया जाना चाहिए। संविधान के प्रावधानों के अधीन रहते हुए राज्यों ने अपने अलग अलग पंचायती राज अधिनियम बनाए हैं। उन्होंने कहा कि जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने में स्थानीय सरकारों की भूमिका का आकलन करने के लिए मंत्रालय ने फरवरी 2025 में राज्यों में पंचायतों को अंतरण की स्थिति एक सांकेतिक साक्ष्य आधारित रैंकिंग 2024 नामक शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। उन्होंने कहा कि स्थानीय स्वशासन को सुदृढ़ करने और पंचायती राज संस्थाओं में अधिक स्वायत्तता, जवाबदेही और क्षमता सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय ने संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की केंद्रीय प्रायोजित योजना को वित्तीय वर्ष 2022-23 से लागू किया है। इसका उद्देश्य निर्वाचित प्रतिनिधियों और अन्य हितधारकों को नेतृत्व क्षमता विकसित करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करके पंचायती राज संस्थाओं का समर्थन करना है, जिससे ग्राम पंचायतें सभी राज्यों, संघ, राज्य क्षेत्रों में प्रभावी ढंग से कार्य कर सकें। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक लिखित जवाब में लोकसभा में कहा कि 10 इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट पर लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि विनिमय चालू कर दिया गया है। इसमें त्रिपुरा के अगरतला और श्रीमंतपुर, असम के दारंगा और सुतरकंडी, उत्तर प्रदेश के रुपईडीहा, बिहार के रक्सौल और जोगबनी, पश्चिम बंगाल के पेट्रोपोल, मेघालय के डाउकी और पंजाब के अटारी में ICP शुरू किया गया है। लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम को यूनिफाइड लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और गुड्स एंड सर्विस सिस्टम के साथ जोड़ा गया है। लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम को मजबूत और भविष्य की सभी एकीकृत जांच चौकियों पर कार्यप्रणाली के प्रबंधन के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया गया है। केंद्रीय भारी उद्योग राज्य मंत्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा ने एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

0: अपनी व्यावसायिक आवश्यकताओं, बाजार की संभावनाओं तथा प्रौद्योगिकी विकास को ध्यान में रखते हुए समय समय पर अपनी विनिर्माण सुविधाओं का आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा क्षमता संवर्धन करता है। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान कंपनी ने अपनी सुविधाओं के विस्तार, आधुनिकीकरण तथा क्षमता संवर्धन के लिए 671 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय किया है। उन्होंने बताया कि BHEL ने नाभिकीय ऊर्जा, रक्षा एवं एयरोस्पेस तथा नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में भी विविधीकरण किया है। BHEL द्वारा अब तक 5.4 गीगावाट क्षमता की नाभिकीय विद्युत इकाइयों के लिए उपकरणों की आपूर्ति की जा चुकी है। BHEL भारतीय नौसेना को महत्वपूर्ण रक्षा तोपों का भी नियमित आपूर्ति करता है। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और मोबाइल ऐप न्यूज़ोन AIR पर। रात्रि के 8:13 हुए हैं। लीजिए एक ही फिल्म से कार्यक्रम में आज आनंद बख्शी साहब के जन्मदिवस पर उनके लिखे गीतों की फिल्म जब जब फूल खिले फिल्म के गीत सुनिए।

0: गीत को गाया था मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर ने, गीत के बोल लिखे आनंद बख्शी ने, जिनका आज जन्मदिवस है, धुन तैयार की लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आज हम इस कार्यक्रम से आनंद बख्शी साहब को याद करें। आनंद बख्शी साहब का जन्म आज ही के दिन यानी 21 जुलाई 1930 को हुआ। आप लोकप्रिय भारतीय कवि और प्रसिद्ध फिल्मी गीतकार थे। आपने अनेक बेहतरीन फिल्मों में अपने गीत दिए। आज आपके जन्मदिवस पर हम आपके लिखे गीतों की फिल्म जब जब फूल खिले के गीत आपको सुना रहे हैं। अगला गीत हम आपको सुनवाएं, लेकिन पहले ये संदेश।
1: एजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: आज के इस कार्यक्रम में हम याद कर रहे हैं महान गीतकार आनंद बख्शी साहब को। आपने रॉयल इंडियन नेवी में बतौर कैडेट काम किया, लेकिन गायक बनने के लिए आप बम्बई पहुँचे। आपने सबसे पहले 1958 में भगवान दादा की फिल्म भला आदमी में गीत लिखा। हालांकि आपको पहचान 1962 की आई फिल्म मेहंदी लगे मेरे हाथ से मिली और फिर 1965 की फिल्म जब जब फूल खिले के सभी गाने बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी हिट रहे। तो आज हम उन्हीं के इस फिल्म के गीत आपको सुनवाएं। कार्यक्रम का अगला गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, गीत रचना आनंद बख्शी की, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: आनंद बख्शी साहब ने अनेक बेहतरीन फिल्मों में गीत लिखे, उनके गीतों की फिल्मों की लिस्ट बहुत लंबी है। हालांकि हिमालय की गोद में जब जब फूल खिले, आसरा, आए दिन बहार के, फर्ज, मिलन, आराधना, जीवन मृत्यु, अमर प्रेम जैसी अनेक बेहतरीन फिल्में आपके गीतों से सजी, आपको अनेक बार फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामित किया गया और 4 बार आपको फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। बहरहाल आइए कार्यक्रम के आखिर में उन्हीं का लिखा एक और गीत हम आपको सुनवाएं, हमारी आज की फिल्म जब जब फूल खिले।

0: इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे स्पोर्ट्स कैन, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति सिंह और एक बार हम फिर मौजूद हैं खेल के मैदान का सारा लेखा जोखा लेकर के आपके इस कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में। तो आज कार्यक्रम में चर्चा होगी FIH हॉकी विश्व कप, भारत जिम्बाब्वे के बीच क्रिकेट मैच और कॉमनवेल्थ की तैयारियों की, और ये भी जाना जाएगा कि कैसा रहा चाइना ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता का पहला दिन। लेकिन पहले सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। FIH हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय भारतीय टीम घोषित, हरमनप्रीत सिंह को सौंपी गई टीम की कमान। कनाडा में विश्व स्क्वाश जूनियर चैंपियनशिप में 7 भारतीय खिलाड़ी अगले दौर में पहुंचे। चीन ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में कल पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन और आयुष शेट्टी अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। और भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 T20 मैचों की श्रृंखला बृहस्पतिवार से शुरू होगी। कार्यक्रम को शुरू किया जाए हॉकी विश्व कप की तैयारियों के साथ, जहां हॉकी इंडिया ने बेल्जियम और नीदरलैंड में 15 से 30 अगस्त तक होने वाले FIH हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय पुरुष टीम की घोषणा कर दी है। टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह संभालेंगे।
2: हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई वाली भारतीय टीम में अनुभवी खिलाड़ियों के साथ साथ युवा खिलाड़ियों को भी भरपूर मौका दिया गया है। मोहित HS और सूरज करकेरा को गोलकीपर के रूप में स्थान दिया गया है, जबकि

0: डिफेंस की जिम्मेदारी कप्तान हरमनप्रीत, अमित रोहिदास, जुगराज सिंह, संजय, सुमित और यशदीप सिवाच के कंधों पर होगी। मिडफील्ड की कमान मनप्रीत, हार्दिक सिंह और विवेक सागर प्रसाद की तिकड़ी संभालेगी। साथ ही नीलाकांता शर्मा और होनहार युवा खिलाड़ी राजेंद्र सिंह और आदित्य अर्जुन लालागे भी इसमें शामिल होंगे। अटैक की जिम्मेदारी मनदीप सिंह, दिलप्रीत सिंह, अभिषेक, सुखजीत सिंह और शिलानंद लाकड़ा के कंधों पर होगी। भारत को इंग्लैंड, पाकिस्तान और वेल्स के साथ पूल डी में रखा गया है। भारत अपने अभियान की शुरुआत 15 अगस्त को वेल्स के खिलाफ करेगा। इसके बाद 17 अगस्त को इंग्लैंड और 19 अगस्त को अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान का सामना करेगा। वैष्णवी स्पोर्ट्स कैन।
1: तो टीम अब तैयारियों को अंतिम रूप देने की कड़ी में पहुंच चुकी है और अब टीम के चयन पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं भारतीय हॉकी टीम के मुख्य चयनकर्ता और पूर्व दिग्गज हॉकी खिलाड़ी आरपी सिंह। आपका स्वागत है स्पोर्ट्स कैन में। और सबसे पहला सवाल आरपी सिंह आपसे हमारा यही है कि भारतीय टीम में इस बार अनुभवी खिलाड़ियों के साथ साथ कई युवा चेहरे भी देखने को मिल रहे हैं, तो फिर ये क्या कहा जाए कि विश्व कप जैसे बड़े अवसर पर टीम में संतुलन बनाने की भरपूर कोशिश की गई है?
2: देखिए, ये 6 महीने से जो हमारी टीम प्रिपेयर्ड हो रही थी अंतर्राष्ट्रीय जितनी भी प्रतियोगिताएं, टेस्ट मैचेस, ऑस्ट्रेलिया से लेके साउथ अफ्रीका तक, अभी आपने वर्ल्ड हॉकी लीग जितनी भी हो रही थी, तो उसी के ध्यान में रखते हुए वर्ल्ड कप की और क्या कॉम्बिनेशन से खेलेंगे और कौन सा प्लेयर कहाँ फिट होगा, नए भी हैं, पुराने भी हैं, पुराने क्या जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, एज वाइज मैं बात नहीं करता, जो आज बेस्ट है उसकी बात करता हूँ। तो कुल मिला के मैं देखूं तो जो बेस्ट हमारे पास लॉट है या बेस्ट टीम है उसको सेलेक्ट किया गया है।
1: जी बिल्कुल, कह सकते हैं कि बेस्ट टीम को मौका देने की कोशिश की गई है। और इन नए खिलाड़ियों की जो टीम में मौजूदगी है वो कहीं ना कहीं एक इशारा ये भी करती है कि भारतीय हॉकी में जो बेंच स्ट्रेंथ है, जो एक पीढ़ी जो है तैयार हो रही है, वो काफ़ी मजबूत है। मैं ये जानना चाहूँगा आरपी सिंह जी आपसे कि इस पूरी बेंच स्ट्रेंथ को डेवलप करने में नई उभरती हुई प्राइवेट लीग्स की कितनी भूमिका है?
2: देखिए, जो हॉकी इंडिया लीग फिर शुरुआत हुई है, उसके पहले तो अब रेगुलर नेशनल चैंपियनशिप का भी आयोजन हो रहा है, सब जूनियर, जूनियर, सीनियर। बाकी जो हॉकी लीग है उससे बहुत फर्क पड़ता है। पहले भी जो हमारी हॉकी लीग हुई थी उसी का नतीजा था कि हम लोग टोक्यो में मेडल लाए, फिर पेरिस में भी ओलंपिक में मेडल लाए। एशिया में हमारी दोनों टीमें जा रही हैं, मेन वोमेन दोनों, और मैं ये कह सकता हूं कि इस बार वोमेन्स का भी हॉकी लीग हुआ था, मेन्स का भी हुआ था। उससे जो नई उभरती हुई प्रतिभाएं हैं, अपने सीनियर जो वर्ल्ड लेवल के बेस्ट खिलाड़ी होते हैं उनके साथ खेलते हैं, तो अपने खेल को उनको भी देखते हैं, फिर अपनी कमियों को भी दूर करते हैं।
1: जी बिल्कुल, उनके लिए एक मौका होता है। आपने टीम की परफॉर्मेंस की बात की कि ओलंपिक में पदक आ रहे हैं, लेकिन आरपी सिंह जी भारत ने आखिरी बार विश्व कप मेडल स्वर्ण पदक जो है 1975 में मलेशिया में जीता था, वो फाइनल मुकाबला जब पाकिस्तान को भारत ने हराया था, अब 51 वर्षों का इंतजार हो चुका है। क्या इस बार आपको लग रहा है कि ये टीम मेडल लेकर आती हुई नजर आ रही है?
2: देखिए, ओलंपिक में तो हम लगातार ले रहे हैं, ये विश्व कप हम लोग 75 में जीते थे, उसके बाद से नहीं जीत पाए हैं, तो वो उसका एक मलाल है, क्योंकि हम ओलंपिक में, एशियन गेम्स में, एशिया कप में, एशियन चैंपियनशिप में, सब में मेडल दे रहे हैं, अभी वर्ल्ड कप में इधर नहीं दे पाए हैं। तो सबसे पहला काम है हमारी टीम को क्वालिफाई करना, पहले अपना पूल क्वालिफाई करिए। वर्ल्ड कप जैसे प्रतियोगिता में सभी टीमें तैयार होके आती हैं, तो अभी पहला काम ये है कि हम सब टीमों को पहले पूल को जीते। हर मैच हमारे लिए वर्ल्ड कप के फाइनल की तरह होगा और हमारी टीम को हर मैच को फाइनल समझ के खेलना पड़ेगा, तभी हम मेडल की तरफ अग्रसर होंगे।
1: जी बिल्कुल, कह सकते हैं कि हर स्तर पर रणनीति होगी और मजबूत तैयारी ही आखिर में उस लक्ष्य तक पहुंचाएगी जिसकी उम्मीद भारतीय हॉकी कई वर्षों से इस टीम से लगा रहा है। और अब बात करते हैं स्क्वाश की। कनाडा में विश्व स्क्वाश जूनियर चैंपियनशिप में 7 भारतीय खिलाड़ी अगले दौर में पहुंच गए हैं। महिला वर्ग में अनहस सिंह, सानवी, अनिका दुबे और रुद्र सिंह ने अगले दौर में जगह बनाई, जबकि पुरुषों में आरवीर दीवान, युषा नसीफ और गुरवीर सिंह की टिकड़ी ने पुरुष सिंगल्स के अगले दौर में जगह बना ली है। और चीन ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में आज का दिन भारत के लिए थोड़ा निराशाजनक रहा। पुरुष सिंगल्स में HS प्रणॉय और महिला सिंगल्स में देविका सिहाग का अभियान आज पहले ही दौर में समाप्त हो गया।
0: चीन के

0: तांगझोउ में आज चीन ओपन का पहले दिन खेले गए मुकाबले में एचएस प्रणॉय को मलेशिया के लियोन जून हाउ ने 21-10, 21-14 से हरा दिया, जबकि देविका सिहाग को थाईलैंड के बुसानन ओंग बाम रूंगफान ने 21-19, 19-21, 21-13 से हराया। प्रतियोगिता में कल कई अहम मुकाबले खेले जाएंगे, जहां पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन जापान के यूसी तनाका और आयुष शेट्टी इंडोनेशिया के अली फरहान के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। महिला सिंगल्स में जापान ओपन जीतकर आ रही पीवी सिंधु भारत की उन्नति हुड्डा के खिलाफ अभियान की शुरुआत करेंगी। पुरुष डबल्स में हरिहरन हमसाक रूणन और एमआर अर्जुन की जोड़ी चीन के लियांग वेई केंग और वांग चांग का मुकाबला करेगी। मिक्स्ड डबल्स में रोहन कपूर और रुत्विका गद्दे का मुकाबला चीन के फेन यांग जी और वांग डोंग पिंग से होगा। वहीं ध्रुव कपिला और तनिषा क्रिस्टो की जोड़ी चीन के ही गाओ जिंगवा तथा चेन फंग हुई के खिलाफ अभियान की शुरुआत करेगी। पुरुष सिंगल्स में भारत की ओर से अब लक्ष्य सेन और आयुष शेट्टी चुनौती पेश करेंगे। महिला सिंगल्स में भारत की खिलाड़ी पीवी सिंधु का मुकाबला कल पहले दौर में उन्नति हुड्डा से होगा। सर फिरोजी, स्पोर्ट्स कैन।
1: तो कह सकते हैं कि भारत के कई अहम खिलाड़ी कल भारतीय चुनौती रखेंगे और सबसे अधिक नजरें होंगी भारत के लिए दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु पर, कि जिस तरह का शानदार जापान ओपन गुजरा है, क्या वो ये करिश्मा चीन ओपन में भी नशाती हुई नजर आएंगी। और अब बात करते हैं क्रिकेट की, जहां भारतीय क्रिकेट टीम जिम्बाब्वे के साथ 3 T20 मैचों की श्रृंखला के लिए जिम्बाब्वे पहुंच चुकी है। दोनों टीमों के बीच पहला मुकाबला 23 जुलानी यानी बृहस्पतिवार को खेला जाएगा। ये मैच हरारे स्पोर्ट्स क्लब में भारतीय समय अनुसार शाम 4:30 बजे से शुरू होगा।
2: श्रेयस अय्यर की अगुवाई में युवा भारतीय T20 टीम एक और परीक्षा के लिए तैयार है। इंग्लैंड के निराशाजनक दौरे के बाद टीम की नजरें जिम्बाब्वे में खोया हुआ मनोबल हासिल करने पर होंगी। 3 मैच की श्रृंखला का पहला मुकाबला 23 जुलाई, दूसरा 25 जुलाई और अंतिम मुकाबला 27 जुलाई को खेला जाएगा। सभी मैच हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले जाएंगे। तिलक वर्मा उप कप्तान बनाए गए हैं। भारतीय टीम में कई नए चेहरों को मौका मिला है। प्रभसिमरन सिंह, यश ठाकुर, अशोक शर्मा और बाएं हाथ के स्पिन ऑलराउंडर हर्ष दुबे को पहली बार T20 अंतर्राष्ट्रीय टीम में जगह मिली है। वहीं रिंकू सिंह और तेज गेंदबाज मयंक यादव की भी टीम में वापसी हुई है। वैभव सूर्यवंशी भी जिम्बाब्वे में खुद को साबित करने के इरादे से खेलते नजर आएंगे। इन खिलाड़ियों के अलावा बाएं हाथ के बल्लेबाज अभिषेक शर्मा, विकेटकीपर ईशान किशन, शिवम दुबे, सूर्यांश शेटगे और रवि बिश्नोई भी भारतीय दल का हिस्सा है। इस श्रृंखला में पूर्व भारतीय दिग्गज बल्लेबाज VVS लक्ष्मण टीम के कोच की भूमिका में नजर आएंगे। अगर जिम्बाब्वे की बात की जाए तो टीम की कप्तानी सिकंदर रजा के पास है। टीम में ब्रायन बेनेट और डायोन मायर्स जैसे अनुभवी खिलाड़ी शामिल रहेंगे। दोनों टीमों के बीच अब तक 14 T20 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें भारत ने 11 और जिम्बाब्वे ने 3 जीते हैं। भारत ने जिम्बाब्वे में 2024 में खेली गई पिछली श्रृंखला 4-1 से अपने नाम की थी। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
1: तो एशियन गेम्स से पहले भारतीय इस युवा टीम के पास एक बहुत बड़ा अवसर है। एक तो उस मनोबल को हासिल करना जो शायद इंग्लैंड दौरे में इस टीम ने कहीं ना कहीं खोया है, और दूसरा एक नई लय बनाना जिसके साथ हम एशियन गेम्स में इस टीम को उतरते हुए देखेंगे। हालांकि संजू सैमसन इस टीम का हिस्सा नहीं है, जो एशियन गेम्स के भारतीय स्क्वाड का हिस्सा है। तो देखना होगा ये टीम जिम्बाब्वे की धरती पर किस तरह का प्रदर्शन करती है। और इसके पहले जब ये दोनों टीमें जिम्बाब्वे में आमने सामने हुई थी तो भारत ने श्रृंखला 4-1 से अपने नाम की थी। हालांकि जिम्बाब्वे अपने मैदान पर उलटफेर करने की क्षमता रखती है, एक अच्छी टीम है जिससे अच्छी फाइट की उम्मीद होगी, लेकिन भारतीय खिलाड़ी एक इसको एक्सपोजर ट्रिप के तौर पर, एक एक्सपोजर टूर के तौर पर लेना चाहेंगे, जहां पे वो बेहद कई सारा अनुभव लेकर के जापान के लिए अपनी तैयारियों को और पुख्ता करने की कोशिश करेंगे, जहां ये टीम एशियन गेम्स के लिए जाएगी। और एशियन गेम्स का जिक्र हुआ है तो अब चर्चा की जाए राष्ट्रमंडल खेलों की भी। 23वें राष्ट्रमंडल खेल 23 जुलाई से स्कॉटलैंड के ग्लासगो में शुरू होने जा रहे हैं। ओलंपिक खेलों के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा खेल आयोजन है ये, जहां खिलाड़ी 10 खेलों और 6 पैरा खेलों में पदकों के लिए अपना दमखम आजमाते हुए नजर आएंगे। भारत की ओर से तकरीबन 125-126 खिलाड़ियों का एक दल भेजा गया है, जो 13 खेलों जिसमें पैरा कैटेगरी भी शामिल है उसमें पदकों के लिए मैदान पर उतरेगी। और इसमें स्टार जैवलिन थ्रोवर खिलाड़ी नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू जो एक शानदार वेटलिफ्टर हैं, और मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन जैसे दिग्गज खिलाड़ी शामिल हैं। और खेलों के इस दल और इस पूरे आयोजन

0: से जुड़ी अधिक जानकारी लेकर के हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी विशेष। विशेष, सबसे पहले तो बात ये कि कितना बड़ा ये आयोजन होता है ये श्रोताओं को बताइए, और साथ ही कि भारत ने कितनी तैयारियां की हैं इस आयोजन को लेकर के।
1: जी शक्ति, इस आयोजन में 72 टीमें जो हैं वो हिस्सा लेंगी, जिसमें 56 जो अलग अलग राष्ट्र रहेंगे, जबकि 16 दल जो हैं वो आश्रित क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते नज़र आएंगे। अगर हम बात करें तो इस बार ये जो आयोजन हो रहा है इसमें कई सारे खेलों को हटा दिया गया है, जिसमें क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, रेसलिंग, टेबल टेनिस, स्क्वॉश, शूटिंग, ट्रायथॉन, बीच वॉलीबॉल और रग्बी सेवन्स जैसे खेल शामिल हैं। और अगर हम बात करें 2022 कॉमनवेल्थ की, तो भारत ने 61 मेडल जीते थे उसमें, और जो स्पोर्ट्स हटा दिए गए हैं उनमें भारत के 30 मेडल थे, तो यानी कि 47% जो मेडल थे वो खेल अब इस आयोजन से हटा दिए गए हैं।
0: जी बिल्कुल, जब आप ये कह रहे थे कि कितने खेलों को इस आयोजन में शामिल नहीं किया गया है, तो शायद हमारे सामने वो मेडल्स और उन खिलाड़ियों की तस्वीरें भी ताज़ा हो रही थी जो इन खेलों में भारत के लिए अच्छी संख्या में बड़े नंबर्स में मेडल लेकर के आते थे। और 2022 का आपने जिक्र किया, उसके पहले 2018 की बात की जाए या फिर 2010 जो भारत का सबसे सफल कैंपेन था दिल्ली में, भारत ने किसको अंजाम दिया, ये खिलाड़ी इन इवेंट्स में, इन खेलों में शानदार मेडल लाते हुए नज़र आए हैं। हालांकि अब नज़र ये होगी कि जो खेल हमारे सामने हैं उसमें हम कितना बेहतर कर सकते हैं, तो किन खिलाड़ियों पर सबसे अधिक नज़रें रहने वाली हैं भारतीय दल से।
1: देखिए, अगर सबसे पहले बात करें तो नीरज चोपड़ा जो है भाला फेंक में सबसे बड़े खिलाड़ी के तौर पर उभर कर सामने आएंगे। वहीं सर्वेश कुशारे जो है ऊंची कूद में, मुरली श्रीशंकर लंबी कूद में, तो और बॉक्सिंग में अगर बात करें तो जैस्मीन लंबारा, साक्षी चौधरी ये अपना दमखम दिखाएंगी। मीराबाई चानू वेटलिफ्टिंग में, वहीं तुलिका मान जूडो में, और पैरा स्पोर्ट्स की अगर बात करें तो सोमांक राणा शॉटपुट में और शर्मिला भी शॉटपुट में अपना दमखम दिखाएंगी।
0: जी बिल्कुल कह सकते हैं। और इनके साथ साथ अगर बात की जाए गुरविंदर सिंह पे भी नज़र रहेंगी, स्टार भारतीय खिलाड़ी जिन्होंने पिछले 6 महीनों में भारत में ट्रैक एंड स्पीड इवेंट्स की एक नई इबारत लिखी है। इस खिलाड़ी ने अपने पदक से, अपनी रफ्तार से 100 मीटर में वापस पदक के लिए उतरेंगे, और उम्मीद होगी कि भारत इस तरह के स्प्रिंटिंग इवेंट्स में भी अब गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल जैसे पोडियम फिनिश करते हुए अपने खिलाड़ियों को देखेगा। और नीरज चोपड़ा का तो बिल्कुल जिक्र होता है, चाहे वो ओलंपिक हो, एशियन गेम्स हो, जहाँ पर भी ये खिलाड़ी उतरता है, डायमंड लीग से लेके कोई भी आयोजन। इन खिलाड़ियों के साथ साथ और क्या खास भारत के लिए इस कॉमनवेल्थ गेम में हो सकता है, अगर हम बहुत कम समय में समझना चाहें तो?
1: देखिए, भारत जो है वो इस टूर्नामेंट की जो है चौथी सबसे सफल टीम है, तो उसी की तरह से भारत को खेलना होगा, अपने जो कोर स्पोर्ट्स हैं उन पर ध्यान देते हुए एक बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद की जा सकती है।
0: जी बिल्कुल, अपने खिलाड़ियों से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी, और उम्मीद होगी कि इतने कम खेलों में भी किस तरह से वो 2010 का दिल्ली कॉमनवेल्थ वाला प्रदर्शन दोहराया जाए। और श्रोताओं, समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस पर अपनी राय और सुझाव हमें आप sportscan.air@gmail.com पर भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमको अनुमति दीजिए, नमस्कार।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें, कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। सरकार नीट पेपर लीक और संबंधित मुद्दों पर संसद में चर्चा को तैयार, विपक्ष के विरोध के बाद संसद दिन भर के लिए स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया, कहा सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठा रही है। भारत और उत्तरी मैसिडोनिया स्कोपिये में राष्ट्रपति स्तरीय वार्ता के बाद व्यापार बढ़ाने और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने पर सहमत। मध्य प्रदेश विधानसभा ने समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया। अमेरिका और ईरान के लगातार 10वें दिन एक दूसरे पर हमलों के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में तनाव और बढ़ा। और भारत ने अगले महीने से शुरू होने वाले पुरुष हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्य टीम की घोषणा की, हरमनप्रीत सिंह होंगे टीम के कप्तान। और अब समाचार विस्तार से। सरकार संसद

0: में नीट और उससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर लोक कल्याण मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा की मांग मान ली है।
1: सरकार संसद में न केवल इस विषय को लेकर बल्कि इस विषय के साथ संबंधित अन्य सभी विषयों को विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि नीट और पेपर लीक इत्यादि विषयों को लेकर के जो लोग भी जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और हम अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे।
0: इस बीच लोक कल्याण मार्ग के पास विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और विपक्षी दलों के अन्य सदस्यों को हिरासत में ले लिया है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार स्थगित हुई। दोनों सदन तीन बार स्थगित हुए। विपक्षी दल नीट पेपर लीक मामले और अन्य मुद्दों पर नारेबाजी करते रहे। हंगामे के कारण दोनों सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल भी नहीं हो सका। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला और बाद में पीठासीन अधिकारियों ने विरोध कर रहे सदस्यों से बार बार सदन की मर्यादा बनाए रखने और तय कामकाज को आगे बढ़ाने का आग्रह किया, लेकिन हंगामा जारी रहने के कारण सदन को दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा का हाल भी कुछ ऐसा ही रहा। राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन और डिप्टी चेयरमैन हरिवंश की बार बार अपील के बावजूद विरोध कर रहे सदस्य नारेबाजी करते रहे, जिसके कारण सदन को स्थगित करना पड़ा। सुपर्णा सेकिया और आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि हाल ही में हुए नीट पेपर लीक मामले में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 13 आरोपी अभी जेल में हैं।
3: आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया और ये भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिल करके करें।
0: खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने आज कहा कि सरकार शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। संसद भवन परिसर में श्री पासवान ने विपक्ष से रचनात्मक सुझाव देने और सार्थक बातचीत में भाग लेने का आग्रह भी किया।
4: प्राइम मिनिस्टर इज वेरी क्लियर कि हमें रिफॉर्म्स करने होंगे। हर मंत्रालय को कहा जा रहा है इंक्लूडिंग शिक्षा मंत्रालय कि आप रिफॉर्म्स लाइए। आज की परिस्थिति के हिसाब से हम लोगों को व्यवस्था निर्माण करने की जरूरत है। आप सुझाव देंगे हम करेंगे रिफॉर्म्स। कल से संवाद के दरवाजे खुले हैं।
0: वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा है कि सरकार ने बदलती वैश्विक भू राजनैतिक और आर्थिक स्थितियों के बीच निर्यात बाजारों में विविधता लाने के लिए कई कदम उठाए हैं। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में श्री प्रसाद ने कहा कि इनमें मुक्त व्यापार समझौते और व्यापक आर्थिक साझेदारी तथा सहयोग समझौतों का विस्तार करना और प्राथमिकता वाले बाजार पहुंच हासिल करने के लिए प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं और क्षेत्रों के साथ व्यापार वार्ता करना शामिल है। भारत का वस्त्र और परिधान निर्यात 2025-26 में 3,25,000 करोड़ रुपये से अधिक रहा, जिसमें 1.8% की वृद्धि दर्ज की गई। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सरकार ने वस्त्र और परिधान क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता और निर्यात को मजबूत करने के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है।

0: मध्य प्रदेश विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पारित कर दिया। मानसून सत्र के दूसरे दिन सदन में हंगामे और विपक्ष के कड़े विरोध के बीच यूसीसी विधेयक पारित हुआ। एक रिपोर्ट।
1: कांग्रेस विधायकों ने बिल को प्रवर समिति के पास भेजने की मांग की, लेकिन सरकार ने ये मांग खारिज कर दी। इसके बाद विपक्षी विधायक सदन के बीच में आकर नारेबाजी करने लगे और कार्यवाही दो बार स्थगित करनी पड़ी, लेकिन सरकार ने बहुमत के बल पर बिल को पास करा लिया। राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू हो जाएगा। यूसीसी के प्रमुख प्रावधानों के अनुसार प्रदेश में एक से अधिक विवाह मान्य नहीं होगा, तलाक की प्रक्रिया कानूनी होगी और महिला पुरुष को समान उत्तराधिकार का अधिकार मिलेगा। लिव इन रिलेशनशिप में एक महीने के भीतर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा और विवाह का रजिस्ट्रेशन ग्रामीण स्तर तक जरूरी किया जाएगा। हालांकि आदिवासी समाज को इससे अलग रखा गया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने नामची जिले के समरदुंग में राष्ट्रीय जल विद्युत निगम NHPC की घटना की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। घटनास्थल से अब तक 12 शव निकाले जा चुके हैं और 13 अन्य लोग अभी भी सुरंग के अंदर फंसे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के मुख्यमंत्री से बात करके हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के निकट परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है।
2: सिक्किम के गवर्नर ओम प्रकाश माथुर और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ओले ने आज दुर्घटना वाली जगह का दौरा किया और हालत का जायजा लिया। श्री गोले ने उम्मीद जताई कि एक उच्च स्तरीय जांच से इस दुखद घटना से जुड़ी सभी बातें सामने आ जाएंगी। उन्होंने कहा कि सिक्किम सरकार मृतकों के परिवार को मुआवजा देगी। इस बीच सिक्किम के मुख्य सचिव ने भी आज नामची में अलग अलग विभागों के साथ समीक्षा बैठक की ताकि चल रहे बचाव अभियान में तेजी जा सके। इस बीच NDRF की और एक टीम नए उपकरणों के साथ बचाव अभियान में लगे हुए हैं। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
0: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में तत्काल स्थानांतरित करने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश DK उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश पारित किया। सरकार ने दिल्ली में नीट पेपर लीक मामले में विरोध कर रहे लोगों पर पुलिस के पैलेट गन का इस्तेमाल करने की सोशल मीडिया की खबरों को गलत बताया है। सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस द्वारा कील लगे डंडों के इस्तेमाल करने के दावों को भी खारिज कर दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये दावे झूठे हैं। झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर प्रतिबंधित नक्सली संगठन के कट्टर माओवादी अजय महतो की पत्नी अनीता किस्कू उर्फ बबीता महतो ने आज गिरिडीह पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया। गिरिडीह के पुलिस अधीक्षक डॉ विमल कुमार ने बताया कि उसे झारखंड सरकार की नई दिशा, एक नई पहल, पुनर्वास नीति के तहत 3 लाख रुपए की सहायता और अन्य पुनर्वास सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप NewsOnAIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और उत्तरी मैसेडोनिया ने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और आपसी सम्मान पर आधारित अपने गहरे और दोस्ताना रिश्तों को फिर से मजबूत किया है। स्कोपियो में राष्ट्रपति गोर्डाना सिल्जानोवस्का दावकोवा के साथ बातचीत के बाद राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि दोनों पक्षों ने आपसी सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों ही देश व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने पर सहमत हुए हैं।
3: आर्थिक सहयोग हमारे द्विपक्षीय संबंधों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है। हम अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर भी सहमत हुए। हमने IT, कृषि, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स तथा टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और फिल्म मेकिंग सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा। हम स्वास्थ्य सेवा में सहयोग पर अपने द्विपक्षीय अग्रीमेंट को भी रिन्यूअल कर रहे हैं।
0: पश्चिम एशिया में ईरान और अमेरिका के एक दूसरे

0: पर लगातार 10वें दिन हमले जारी रहने से होर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। ईरान की अर्ध सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार बुशहर प्रांत को भी निशाना बनाया गया है। एक रिपोर्ट।
1: ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर रहे एक टैंकर पर हमला किया, वहीं अमेरिका ने ईरान के भीतर तक हवाई हमले किए। इस बीच ईरान के एक अधिकारी ने आज पाकिस्तान में मध्यस्थों के साथ बैठकें शुरू की। ईरान और अमेरिका के बीच अंतरिम समझौते को बचाने के राजनयिक प्रयास भी लगातार जारी है। इससे पहले अमेरिका ने हमलों में दक्षिण पश्चिमी ईरान के होर्मुज शहर को निशाना बनाया। जॉर्डन, कुवैत और बहरीन ने ईरान की ओर से नए हमलों की जानकारी दी है। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी JAAC ने आज कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर POJK में बंद और चक्का जाम जारी है। JAAC ने आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों के लिए न्याय और अपनी मांगें मनवाने के लिए 23 जुलाई को विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का आह्वान किया है। मौसम विभाग ने अगले दो दिन में

0: संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी JAAC ने आज कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर POJK में बंद और चक्का जाम जारी है। JAAC ने आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों के लिए न्याय और अपनी मांगें मनवाने के लिए 23 जुलाई को विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का आह्वान किया है। मौसम विभाग ने अगले दो दिन में गुजरात, पूर्वी राजस्थान और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम, मेघालय, बिहार, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, उत्तराखंड, विदर्भ और पश्चिमी राजस्थान में अगले तीन दिनों में तेज बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी कल तक आंधी तूफान की संभावना है। दिल्ली में कल बादल छाए रहने का अनुमान है। हॉकी इंडिया ने बेल्जियम और नीदरलैंड्स में 15 से 30 अगस्त तक होने वाले हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय पुरुष टीम की घोषणा कर दी है। टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह संभालेंगे। मोहित एचेस और सूरज करकेरा गोलकीपर के रूप में हैं। हरमनप्रीत सिंह, अमित रोहित, जुगराज सिंह, सुमित मनप्रीत और हार्दिक सिंह भी इस टीम का हिस्सा हैं। उधर कनाडा के नियाग्रा ऑन द लेक में विश्व स्क्वॉश जूनियर चैंपियनशिप में 7 भारतीय खिलाड़ी अगले दौर में पहुंच गए हैं। महिला वर्ग में अनाहत सिंह, सानवी कलंकी, अनिका दुबे और रुद्र सिंह ने अगले दौर में जगह बना ली है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार नीट पेपर लीक और संबंधित मुद्दों पर संसद में चर्चा को तैयार। विपक्ष के विरोध के बाद संसद दिन भर के लिए स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। कहा, सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठा रही है। भारत और उत्तरी मैसिडोनिया स्कोपिये में राष्ट्रपति स्तरीय वार्ता के बाद व्यापार बढ़ाने और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग और मजबूत करने पर सहमत। मध्य प्रदेश विधानसभा ने समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया और भारत ने अगले महीने से शुरू होने वाले पुरुष हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्य टीम की घोषणा की। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Government says it is ready to discuss NEET paper leak issue and other related matters in Parliament. Both houses adjourned for the day amid opposition protests. Prime Minister Narendra Modi vows strict action against those involved in NEET issue, says government taking steps to prevent such incidents. India and North Macedonia agree to enhance trade and cooperation in key sectors after presidential level talks in Skopje. Madhya Pradesh Assembly passes Uniform Civil Code Bill. US and Iran trade strikes for the 10th day in row, mounting tensions over Strait of Hormuz. And in hockey, 20-member Indian squad led by Harmanpreet Singh announced for the Men's World Cup set to begin next month. And now the news in detail. The government today said it is ready to hold discussion in Parliament on NEET paper leak case and other related issues. Talking to media in New Delhi this evening, Union Minister Jitendra Singh accused leader of opposition in Lok Sabha Rahul Gandhi of deviating from his earlier demand of having the discussion over NEET related issues despite government assurance.
2: It was conveyed that on behalf of the government, I could assure Rahul Gandhi ji that government is ready to have a detailed discussion on NEET related agitation, protest, also on all the other issues related to NEET. When I went back to Rahul ji with this message, he said no, but I also want the resignation of the education minister. Then I politely tried to submit before him. I said, look here, this is not done, because just a few minutes back you told me that if I got the assurance from the government, you would call off your dharna immediately, but now you're saying no.
1: Earlier in the day, Congress President Mallikarjun Kharge, Congress leaders Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi Vadra, along with other party members, staged a protest demanding discussion on the NEET issue. Union Minister Jitendra Singh and Union Home Secretary Govind Mohan met the Congress leaders at the protest site at Lok Kalyan Marg. Mr. Gandhi told them that if the government agreed to a discussion in Parliament on NEET and related issues, he would immediately end the protest. After meeting the Congress leaders, Union Minister

0: हॅलो गोरबंद कार्यक्रम सुनिये सगळ्या परिवाराने आज श्रीपाल सारस्वतरा मोकळा मोकळा राम राम सा लियो सा। आज महिन्यारो तिसरो मंगळवार हाजिरा थारो मनपसंद कार्यक्रम गोरबंद लेर ई बात गे सागे के मरुदर थारा धोरिया सूख रया तिण धान, मरुदर थारा धोरिया सूख रया तिण धान, महिमा रुत कलायण री कद बरसे भगवान, कद बरसे भगवान शान धोरारी राखे, चढ़े कलायण गाज लाज धोरारी राखे, के आवे सावण सोवणो खेता निपजे धान, कड़के मरुधर बीजली जद बरसे भगवान, के जद बरसे भगवान सावण सुरंगो लागे, हाली जावे खेत जद रुतरी बिरखा लागे, के श्रीपाल करे अरदास मत ना तरसो, श्रीपाल करे अरदास अब तो मत ना तरसो, करो धोरा ने राता राम जी अब तो बरसो। ए बात ऐसा आपने उड़ी करा के बिरखा जल्दी आवेली, अबे आवे वो फोन देखा कीरो आवे करा बात। हेलो,
1: राम राम श्रीपाल जी।
0: राम राम जी, कार्यक्रम हेलो गोरबंद।
1: हेलो गोरबंद, मैं हिराणी वाला पहुंच गया जी।
0: वाह जी वाह, हिराणी वाला का बहुत सारो स्वागत है कार्यक्रम हेलो गोरबंद के माए।
1: बड़ी खुशी है जी, माइट बादशाह को प्रोग्राम अब तो महीने बाद इंग माए हाजिरी देने जी कर बोकर जी, बाकी गैप पूरा रखा जी का नियम।

0: बनाया सूरतगढ़ की तरफ हूँ, आप श्रोताओं वास्ते।
1: बिल्कुल बिल्कुल, ए देखो नियम कायदा तो अपने वास्ते ही हुआ ऐसा, क्योंकि सारा को जे बातचीत में नंबर लाग जाए, फोन लाग जाए, तो सारा श्रोता जो कहे मैं अपना शामिल हो सके।
0: हाँ जी हाँ जी,
1: और बताओ की खबर है मेह पानी की?
0: मेह पानी बढ़िया हो जी, परसों चौथा है और आज भी बदलवाई है, कोई नेट नुट भी दिखाने लग रहा है जी, भी सारे वास्ते बढ़िया रहेगा।
1: चलो बहुत अच्छी बात है सर। तो आज कौन लोग है थारे सागे?
0: हमेशा ही सागा है जी, घर वाली बिमला देवी, बच्चा इंदू वाला, पार्वी देवी, लड़का हिमांशु, सरवण जी रिणवा और हंसराज भाटिया जी, आंगोनी टेलरिंग को काम है जी, एक जगह मनीराम जी है, बा नलको लगावे जी, है जगह वह नहीं, एक रणजीत राम जी करोड़ीवाल है, ये मौके पर रिटायर ही है जी, रेडियो आगे सागे ही रहे जी।
1: वाह जी वाह, इतना सारा अपना सुन वाला है जेका रेडियो मन लगा के सुने, तो इन वास्ते घनो सारो धन्यवाद सगला ने। के सुना आज
0: आज सुलोचना खमीर की आवाज में कोई भी लोग की सुना जी।

0: हेलो।
1: हाँ नमस्कार जी।
0: राम राम जी। नमस्कार। कार्यक्रम हेलो गोरबंद। कौन बोलो सा?
1: मैं गांव कुड़ियाणा से बोलता हूँ, कुलदीप चंगड़िया जी।
0: वाह जी वाह। तो कार्यक्रम लगो सुनो आकाशवाणी सूरतगढ़।
1: हाँ जी हाँ जी, बहुत जी गोरबंद बहुत सुनते हैं जी।
0: तो राजस्थानी भाषा समझ में आवे?
1: हाँ जी पूरी आती है जी।
0: के सुनावा आज थाने?
1: जी गाना सुना दो जी, मतवाला देवरियो भाभी पे जादू करके हो।
0: वाह जी वाह, नखराड़ो देवरियो भाभी पर जादू।
1: हाँ जी हाँ जी हाँ जी।
0: कौन लोग है आज थारे सागे?
1: जगतार है जी टेलर जी तो, अमन वर्मा जी बुरजा तो, भोला सिंह सुहाग जी कुड़ियाने तो, एक सोहन लाल राठी है जी पिंड असलाम वाला तो
0: जी। तो सुनो सा, मिल गए सारा थारी पसंद को वो गीत।

0: हेलो।
1: राम राम जी।
0: राम राम। कार्यक्रम हेलो गौर बंद कुण बोलो सा।
1: मैं तारा राम मोटोनिया वाली जानी बोली।
0: वाह जी वाह, कार्यक्रम में घणो सारो स्वागत है थारो।
1: धन्यवाद थारो भी।
0: तो तारा राम जी, कार्यक्रम सुनो आकाशवाणी सूरतगढ़ का सारा।
1: हाँ, सारा सारे सुना।
0: तो आज के सुनावा थाने?
1: आज की सही राम को भजन सुना दियो। और क्या?
0: बिल्कुल भजन सुना सिया थारे सागे वाला जो नाम थे लेनो चाहो तो ले इसको सा।
1: हाँ, मोटोड़ छोरो सतपाल छोटी सिंधु सिंह। अरे दो तीन पोता है दीपक सजीव राजवीर। तीन पोतियां है रवीना ज्योति चाल सिंह। मेरे घर से है चंदो देवी
0: जी।
1: अरे दो बीन है वीरपाल कौर चरण कौर।
0: वाह जी वाह, सुनो मिल गए वो बचन।

0: हेलो।
1: हेलो गोरबंद
0: हाँ जी, कार्यक्रम हेलो गोरबंद।
1: शिवपाल जी, राम राम।
0: राम राम सा, राम राम, कुण बोलो सा।
1: हांडी खेड़ा से सतेदारी श्याम शर्मा।
0: राधे श्याम जी, गणो गणो स्वागत है थारो कार्यक्रम के मा।
1: जी
0: और बताओ के हाल चाल है थारा।
1: बढ़िया जी, आज बारिश होगी, बहुत
0: बढ़िया
1: बढ़िया मौसम।

0: हेलो।
1: हेलो गोरबंद,
0: हाँ जी, कार्यक्रम हेलो गोरबंद।
1: शिवपाल जी, राम राम।
0: राम राम सा, राम राम, कुण बोलो सा।
1: हांडी खेड़ा से सतेदारी श्याम शर्मा।
0: राधे श्याम जी, गणो गणो स्वागत है थारो कार्यक्रम के मा।
1: जी
0: और बताओ के हाल चाल है थारा।
1: बढ़िया जी, आज बारिश हो।

0: हेलो
1: हाँ जी, कार्यक्रम हेलो गोरबंद।
0: श्री पाल जी, राम राम।
1: राम राम जी, घना सारा राम राम।
0: पवन कटारिया, श्री करणपुर।
1: पवन जी, घणो सारो स्वागत है।
0: आज तो कई टाइम बाद में बात हो रही है, फोन में मिलावा, देखा मिल जाए तो अच्छा हो जाए काम सारो। आज
1: बिल्कुल बिल्कुल, देखो फोन मिलाए और थारो मिलाते ही फोन मिल गयो है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ज्यादा देर कौन लगी।
1: देखो वही हुए लगाव, देखो यानी रेडियो
0: मैड भाषा में तो लगाव है ही जी।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: बताओ क्या आकाशवाणी परिवार।
1: बस आकाशवाणी सारो बहुत बढ़िया है। कुछ बरसात की भी उम्मीद है, कुछ बादलवाई भी हुई है, कुछ ठंड भी हुई है।
0: मिला जुला काम ही है जी तो।
1: बिल्कुल बिल्कुल, उम्मीद करा जल्दी भगवान बरसात कर सी।
0: ए हफ्ते सुन लियोगे पुकार भगवान आपने।
1: बिल्कुल बिल्कुल, तो बताओ आज कौन लोग है थारे सागे।
0: मेरे सागे चालू कटारिया, बेटा समीर कटारिया, मेरा पूरा आकाशवाणी परिवार।
1: के सुना दे आज थाने,
0: साथ करवा दो फिर कोई।
1: सुनो बरसात को गीत।
2: हेलो शिशुपाल जी, नमस्कार।
1: नमस्कार जी, नमस्कार।
2: जितेंद्र गांव बाबला सर, जैसलमेर जिले से।
1: जितेंद्र जी, घणो सारो स्वागत है।
2: की हाल चाल है।
1: बहुत बढ़िया थे, बताओ।
2: हाल चाल बहुत जोरदार है, इनके तो बरसात हुई को नहीं।
1: उम्मीद करा भगवान के अब जल्दी आपने बरसात हुए ला है।
2: बिल्कुल बरसात आया को, आठों महीने भी खत्म होने लग रहे हुए।
1: बिल्कुल बिल्कुल, कई बार हो जाए थोड़ी देरी, कुदरत को काम
2: तो
1: हुई हुए।
2: गीत बढ़िया हो।
1: कुल बरसात को गीत थाने जरूर सुना वाला सा, तो कौन लोग है थारे सा गया।
2: नीन जी है, जोधपुर बाबूराम जयपाल है, राजा राम जी है, और आप तो
1: सुनो सा सारा मिल गए होगी।

0: हेलो।
1: शिवपाल जी, राम राम। हंसराज
0: राम राम जी। राम राम।
1: भाटिया बोल रहा है।
0: हंसराज जी, घणो सारो स्वागत है थारो कार्यक्रम हेलो और बंद गए माँ।
1: मेहरबानी जी। गांव तो मारो ईरान है, वैसे गांव वो रहा जी।
0: बिल्कुल बिल्कुल। देखो आज तो कार्यक्रम गए माँ ईरान वाला छा रहे।
1: ठीक
0: बताओ क्या हाल चाल है थारा।
1: है, टाइम पास बैठे हूँ।
0: तो के सुनाओ आज थाने।
1: माना सुना रही हो, थे सीमा मिश्रा को गांव सुना रही हो कोई।
0: हाँ जी, कार्यक्रम हेलो गोरबंद।
2: हेलो गुरु, नमस्कार सर जी।
0: नमस्कार जी। नमस्कार।
2: बहुत ही अच्छे हैं और मस्त बारिश भी हो रही है हमारी इधर, बहुत अच्छी हो रही है सर जी। लगभग 15 दिन हो गए।
0: बहुत बढ़िया बात है। तो मैं आ चाहूँ कि आपने सुनने ने माने थारो नाम थे बताओ।
2: मैं वी पूनम नायडू बोल रही हूँ,
0: जी
2: प्रेम झील धनोरा जगदलपुर बस्तर छत्तीसगढ़ से।
0: वाह जी वाह। तो पूनम जी, अभी के काम धंधा चल रहे थे? तो खेती बाड़ी को काम करो, पढ़ाई को भी काम करो।
2: हाँ, पढ़ाई का भी काम कर रहे हैं सर जी। आज हमारे खेती में काम चल रहा है तो स्कूल में गए। अभी सब्जी लग रही है सर जी, बरबट्टी, भिंडी। बरबट्टी जानते हैं?
0: थे बता दियो राजस्थानी भाषा में, आपा पहचान करा दे।
2: राजस्थानी भाषा में क्या बोलते हैं तो नहीं मालूम सर जी। जो लंबे लंबे रहते हैं, उसके बीज भी रहते हैं अंदर में, और एक सेम बोलते हैं, सेम की फली है, लौकी है, ये सब
0: हाँ
2: लग रहा है सर जी।
0: बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो आज कौन लोग है थारे सागे?
2: मामा है, मामी है, भैया है, भाभी है, हम उनके बच्चे हैं, और हमारे नाना नानी भी सुनते हैं आपके गोरबन प्रोग्राम को
0: वह बहुत बढ़िया बात है। देखो अपना
2: जी।
0: देखा बुजुर्ग है, मायत है, वे भी कार्यक्रम सुने मन लगा
2: सुने
0: गए।
2: सुने सर जी, बहुत प्रेम से सुनते हैं।
0: तो और अपन के चाहिए यूं बढ़िया और क्या हो सके हैं।
2: हाँ सर जी, हमारे सर पे उनका साया है, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। जेका बुजुर्ग अपना माँ बाप दादा दादी जेका भी अपना बुजुर्ग है, अरे बांगी जेकी दुआ है नी भगवान हुकम कोनी में, बांगी दुआ जेकी बहुत।
2: जी।
0: आज के सुनावा थाने।
2: आप कोई भी अपने पसंद से कोई भी बारिश वाला राजस्थानी मस्त गीत सुनवा दीजिएगा सर जी, हम लोग
0: बिल्कुल
2: सब सुनेंगे यार।
0: बिल्कुल बिल्कुल। सुनो सा सारा मिल गए होगी।
2: थैंक यू सर जी, नमस्कार।

सावण आयो हे सखी हियो हिलोरा खाय, सावण आयो हे सखी हियो हिलोरा खाय, गोरी उड़ी के पीव ने कद परिणो घर आय, कद परिणो घर आय मुंडेरिया काग उड़ावे, झिरमिर बरसे मेह पिया थरी ओलियो आवे। राम राम सा, राम राम।

0: अभी आप सुन रहे थे राजस्थानी लोकगीत और लोक भजनों का फरमाइशी कार्यक्रम हेलो गोरबंद। कार्यक्रम के प्रस्तोता थे श्रीपाल शर्मा, कार्यक्रम के संयोजक नवीन सिसोदिया। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्स पर रात्रि के 10 बजे हैं। लीजिए गीत गंगा सुनिए। गीत गंगा कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को आज विकास पारिक का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रसिद्ध गीतकार आनंद बख्शी को उनके जन्मदिवस पर याद करें इस बात के साथ कि अल्फाज जब दिल से निकलते हैं तो गीत बन जाते हैं। अल्फाज जब दिल से निकलते हैं तो गीत बन जाते हैं। कुछ लफ्ज़ सदियों तक लोगों के दिलों में बस जाते हैं। जिसने हर एहसास को सुरों की जुबां दी वो शायर नहीं मोहब्बत की दास्तां बन जाते हैं। आनंद बख्शी साहब, जिनका जन्म आज ही के दिन 1930 को हुआ, आपने प्रेम, विरह, उम्मीद, दोस्ती और इंसानी जज्बात को ऐसे शब्द दिए जो पीढ़ियों तक गुनगुनाए जाएंगे। आपका हर गीत दिल की गहराई को छूता है। बतौर गीतकार आपने सिने कैरियर की शुरुआत बड़ा आदमी फिल्म से की। 1965 की फिल्म जब जब फूल खिले से बतौर गीतकार आपने अपनी पहचान बनाई। इसके बाद आपने अनेक
1: विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार स्थगित हुई। दोनों सदन 3 बार स्थगित हुए। विपक्षी दल नीट पेपर लीक मामले और अन्य मुद्दों पर नारेबाजी करते रहे। हंगामे के कारण दोनों सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल भी नहीं हो सका। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला और बाद में पीठासीन अधिकारियों ने विरोध कर रहे सदस्यों से बार बार सदन की मर्यादा बनाए रखने और तय कामकाज को आगे बढ़ाने का आग्रह किया, लेकिन हंगामा जारी रहने के कारण सदन को दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा का हाल भी कुछ ऐसा ही रहा। राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन और डिप्टी चेयरमैन हरिवंश की बार बार अपील के बावजूद विरोध कर रहे सदस्य करते रहे, जिसके कारण सदन को स्थगित करना पड़ा। सुपर्णा सेकिया और आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा में सरकार के संकल्प को दोहराया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय जनता समान नागरिक संहिता UCC विधेयक पारित कर दिया है। मॉनसून सत्र के दूसरे दिन सदन में हंगामे और विपक्ष के कड़े विरोध के बीच ये विधेयक पारित हुआ।

अभी आपने आप सभी श्रोताओं की पसंद का ये गीत सुना मिलन फिल्म से। गीत के बोल हमारे आज के गीतकार आनंद बख्शी साहब का, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, आवाज़ें थी लता मंगेशकर और मुकेश की। सुनना चाहते थे आप सभी और आपके संदेश जो हम तक पहुँचे हैं। सबसे पहला संदेश इसी गीत की फरमाइश के साथ गांव खोखरावाली से विनोद बराशा, विशाल बराशा, विकास बराशा, रोशनी बराशा और शगुन बराशा ने किया। कार्यक्रम में अगला संदेश हमें लिख करके भेजा नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नवाकर, निर्मला नवाकर और विशाल नहावकर। ये संदेश हमें लिखा जिला मुरादाबाद गांव धूलापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू राजपाल, पंकज काजल, सीमा तन्वी मानवी, लक्ष्य सोनी, मोहित ऋतिक और बलवीर सिंह ने। लिखते हैं कि कोई भी गीत आप हमें सुनवा दें। यह संदेश हमें लिखा नागपुर महाराष्ट्र से कमल साहनी, श्रीमती पिंकी साहनी, हाजी अफजल मलिक, निपी साहनी, श्रीमती सुनीता साहनी। लिखते हैं कि आज मौसम बड़ा बेईमान है, ये गीत हमें सुनवाएं। बिल्कुल आप कार्यक्रम सुने, हम जरूर आपको आपकी पसंद का गीत सुनवाएंगे। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश हमें संदेश करते हैं। संदेश इसी गीत के लिए हमें किया सूरतगढ़ राजस्थान से भूपेंद्र मिशन, प्रभजोत मिशन और बेबी जानविका ने। लोफर फिल्म का ये गीत सुनना चाहते हैं, जरूर हम आपको सुनवाएंगे। अस्पताल रोड विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश से चंद्रेश गौहर, श्रीमती वंदना गौहर, मयंक गौहर, तन्वी गौहर और जयपाल यादव का संदेश हम तक पहुंच गया। अलीका डब्वाली से बसंत सिंह चंद, राजकुमार, सुनीता, कुलदीप गांधी। लिखते हैं कोई भी गीत आप हमें सुनवा दें।

ये संदेश हमें लिखा छत्रपति संभाजीनगर महाराष्ट्र से अनिल कुमार खोड़के, वैशाली अनिल, प्रजाक्ता खोड़के, वैष्णवी गायत्री और यज्ञेश खोड़के ने। संदेश हमें किया गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौड़, मंजुला राठौड़, विशाल और निशा ने। लिखते हैं कि मिलन फिल्म का गीत हमें सुनवाएं, तो उसी गीत से हमने आज के कार्यक्रम की शुरुआत की। इसी फिल्म का यदि संभव हुआ तो ये गीत भी हम आपको सुनवाएंगे। सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से यशमित यशु, निर्जन निरंजन सिंह, सौम्या सिंह, अविरल सिंह लिखते हैं कोई भी गीत आप हमें सुनवा दें। गांव खारिया जिला सिरसा हरियाणा से सतवीर सिंह बिजारनिया, देवेंद्र राजपाल, अभिषेक, योगेश, पूजा आरजू और नव्या बिजारनिया का ये संदेश हम तक पहुँचा है। संदेश हमें किया आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मेहंदी शर्मा, सौरव शर्मा, सायना शर्मा और निवांश शर्मा ने। ये संदेश हमें किया रघुनाथपुरा से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी ने। लिखते हैं कि हमारी पसंद का गीत आनंद बख्शी का लिखा हमें जरूर सुनाएं। बिल्कुल आप कार्यक्रम सुने, आपको ये गीत हम जरूर सुनवाएंगे। पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु ताशु, अर्णव आनंद और सत्यम आनंद का ये संदेश हम तक पहुँचा। संगरिया से श्याम मिड्ढा, सुमन मिड्ढा हमें संदेश करते हैं। गांव आदरणीय मेहर नगर उमेरखेड़ा महाराष्ट्र से अभिजीत ग्वाड़कर राही, श्रीमती सरिता ग्वाड़कर, अर्जुन ग्वाड़कर टुक टुक और प्रिंस एकांश ग्वाड़कर हमें संदेश करते हैं। ये संदेश हमें किया गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन, राहुल खुराना और रचिता खुराना के साथ केशु रिंघाना ने। संदेश हमें किया मंसूरी रेडियो लिसनर क्लब बाजार रोड मुंगी सापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, शबिस्ता मोहम्मद नसीब, पलक लुबना और यस मंसूरी ने। आइए आप सभी को आपकी पसंद का ये गीत हम आपको सुनवाएं। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में लोफर फिल्म से।

गीत अभी आपने सुना, कुछ मेल पे जो हमें संदेश मिले हैं वो भी हम शामिल करें। ये पहली मेल पर संदेश हमें लिखा हमारे नियमित श्रोता कवाई सालपुरा जिला बारा राजस्थान से सतीश श्रीवास्तव, श्रीमती प्रेमलता श्रीवास्तव, हिमानी, हर्षिता और अभिषेक श्रीवास्तव। लिखते हैं कि सर जी, आज आपने गीतकार आनंद बख्शी के बारे में विस्तार से बताया, उनके बारे में भरपूर रोशनी डाली। आनंद बख्शी साहब एक भारतीय कवि और गीतकार थे। आनंद बख्शी साहब सन 1930 से 2002 तक हिंदी सिनेमा के इतिहास में सबसे महान और लोकप्रिय गीतकारों में से एक थे। आपने 40 से अधिक वर्षों में 300 से अधिक फिल्मों में 6000 से अधिक सदाबहार गीत लिखे। उनके लिए बहुत सरल और दिल को छू लेने वाले आज भी गीत लोगों की जुबां पर रहते हैं। आपकी आवाज़, आपके गीत हमारे दिल में और जुबान पर हमेशा हमेशा याद रहेंगे। ऐसी महान हस्ती को परिवार श्रीवास्तव भावपूर्णी श्रद्धांजलि देता है। बहुत खूब श्रीवास्तव साहब। और लिखते हैं कि आज उन्हीं का लिखा कोई गीत हमें सुनवा दें, यदि संभव हो तो हमारी पसंद का भी गीत सुनवाएं। बिल्कुल, आप कार्यक्रम सुने, हम आपको आपकी या हमारे श्रोताओं की पसंद के ही गीत सुनवाएंगे। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जय वीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, और कालका से शुभचंद्र बजाज और साहिल बजाज के साथ बिट्टा बजाज की मेल हम तक पहुंच गई है। ऑरेंज सिटी नागपुर से विट्ठल जाधव, अनुसुईया जाधव और पवन राजे जाधव की मेल हम तक पहुंची। ये मेल हमें की बक्सर बिहार से शफुद्दीन अंसारी, फतेमा खातून अंसारी, सुरीत रमेश साहू, डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्लू अंसारी, सोनम अदीबा, दानिश अंसारी, गोल बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयानंद आर्य, परमानंद आर्य, सारीपुर बक्सर से राज एस टी अंसारी और आसमा खातून अंसारी ने। मेले में की गोगावा जिला खारगोन मध्य प्रदेश से उस्मान खत्री, रिजवान खत्री, अब्दुल गफार खत्री। लिखते हैं कि कोई भी गीत आप हमें सुनवा दें, बिल्कुल आप कार्यक्रम सुने। पद्मा टाकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रकर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विनी शाह, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र जी शाह की मेल हम तक पहुंच गई है। यह मेल हमें लिखी बोरखेड़ा पितरामल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मुणत, नेहा जैन, दीपक, मयंक मुणत, चेतन नाहटा। लिखते हैं कि कोई भी गीत आप हमें सुनवाएं और हमारी मेल शामिल करें, बिल्कुल आपकी मेल शामिल हो चुकी है। व्हाइटफील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण, अंजु श्रीवास्तव, दिव्येंदु भूषण और संस्कृति के साथ पोरुष हमें मेल करते हैं। ये मेल हमें कि दादाबादपुर रोड गिरडी झारखंड से मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा नवाज़, हसन नवाज़, बाबू अहद, मिफरा नवाज़ और बेबी चाहत के साथ सादिया ने। मेल हमें कि डाबकी रोड अंकोला से सुशीला देवी मंदुकर,

सदानंद और कुमार गौरव मंदुकर ने लिखते हैं, कोई भी गीत आप हमें सुनवा दें, बिल्कुल आप कार्यक्रम सुनते रहें। गांव हंडीखेड़ा जिला सिरसा हरियाणा से ये मेल हमें की राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा और सार्थक शर्मा ने। गांव पंजोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श सार्थक अलौकिक चंसोलिया हमें मेल करते हैं कि कोई भी गीत आप हमें सुनवाएं, बिल्कुल आप कार्यक्रम सुनें। राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक वर्मा, आर्यन वर्मा। शिव मंदिर से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा पीहू लिखते हैं कि कोई भी गीत आप हमें सुनवा दें, बिल्कुल आप कार्यक्रम सुनते रहें। छत्तीसगढ़ भाटापारा से सोनम बेलदार, फातिमा बेलदार, आसमा बेलदार, सफुद्दीन फ़कीर, वली उल्ला फ़कीर, डब्लू वली फ़कीर हमें ये संदेश करते हैं मेल पर। ये मेल हमें किया छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबिल पाटिल, राजेश के साथ राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश लिखते हैं कि कोई भी मनमोहक गीत आप हमें सुनवाएं, बिल्कुल हर गीत जो है वो मनमोहक है और आप सभी श्रोताओं की पसंद का है। एसएम जावेद शगुफ्ता अंजुम गुमला झारखंड से हमें संदेश करते हैं। ये संदेश हमें किया जो हम पहले शामिल कर चुके हैं, कृपया एक साथ ही एक ही मेल करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा और विमला अनेजा हमें मेल करते हैं, लिखते हैं कि आपकी पसंद का कोई भी गीत हमें सुनवा दें, बिल्कुल हमारी नहीं हमारे श्रोताओं की पसंद का गीत आपको सुनने को मिलेगा। नई बस्ती गज डुडवारा से मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, तौसिफ हाशमी और कलीम अंसारी का ये मेल हम तक पहुंचा है। इसके बाद कुछ संदेश हम शामिल करें, उससे पहले हम आपको सुनवाते हैं हमारी अगला गीत अवतार फिल्म से आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, आवाज़ें किशोर कुमार और लता मंगेशकर की।

अवतार फिल्म का गीत अभी आपने सुना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में, गीत के बोल आनंद बख्शी के, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। कुछ संदेश हम शामिल करें नज़दीक बस स्टैंड भुज हनुमानगढ़ फाजिलका से। रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदन लाल वर्मा का ये संदेश हम तक पहुँचा है। संदेश हमें किया जिला अम्बागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा, सबिया, अनस और रेहान ने। यह संदेश हमें किया कवर कॉलोनी बढ़वा जिला खारगोन मध्य प्रदेश से प्रवीण श्रीमाली और मीना श्रीमाली ने। संदेश हमें किया मजनू का टीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक ने। बहलोल नगर से हरीश हरी, जगतार जहरी, सुशील डेलू, राकेश चाहर लिखते हैं कि आज आनंद बख्शी के जन्मदिवस पर उन्हीं का लिखा हमारी पसंद का गीत हमें सुनवाएं। बिल्कुल आप कार्यक्रम सुने, हम आपको आपकी पसंद का गीत जरूर सुनवाएंगे। ये संदेश हमें लिखा मुताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर, आरती कुमारी और ओम कुमार ने। लिखते हैं कि यहाँ पे बरसात हो रही है, आनंद बख्शी का कोई गीत हमें सुनवाएं। बिल्कुल आप कार्यक्रम सुने, हम उन्हीं के लिखे गीत हम आपको सुनवाएंगे। सैयद मसरू, शाइना हसन, आक्सा, नाजिया, आफिया, इब्राहिम, सद्दाम और अदीब ने हमें संदेश किया गांव कुमार हेड़ा सहारनपुर से। ये संदेश हमें किया कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय ने। संदेश हमें किया सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनीत कुमार वर्मा और सोनम वर्मा ने। दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा और कुणाल मेहरा हमें संदेश करते हैं। छत्रपति संभाजीनगर, सूर्यवाड़ी, औरंगाबाद से प्रकाश बोरगांवकर, सुषमा प्रांजलि, सोहम, सदानंद, विराज, स्वीट, अंशुमन बेबी, ओवी का यह संदेश हम तक पहुँचा। सूरतगढ़ से कन्हैया टेलर, श्रवण कुमार, पवन कुमार, भगवान राम और मनोज, नितेश, करण और कृष्णा का ये संदेश हम तक पहुंचा है। संदेश हमें किया नारकोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी, दिशा गोस्वामी ने। संदेश पहुंचा हम तक बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया का। यह संदेश जनकपुर सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल डिकेस्ट्रो और विलिस डिकेस्ट्रो का हम तक पहुंचा है। हनुमानगढ़ टाउन से रजाक मोहम्मद, शमी बेगम, इमरान खान, जिशान खान का संदेश हम तक पहुंच गया है। गांव बनवंता हनुमंता फाजिलका पंजाब से विनोद मायल, सीमा, लक्षिता, यशिका, विद्या देवी और पूरा मायल परिवार हमें संदेश करता है। नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, पूना राम देवांगन, कृष्णा देवांगन का संदेश पलारी छत्तीसगढ़ से हम तक पहुंचा है। नई बड्डी नई

बस्ती गज डुटवारा से मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, तोशीन हाशमी और तैमूर हाशमी का ये संदेश हम तक पहुंचा। गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी, पूजा पायल, जगदीश जौहरी का संदेश हम तक पहुंचा है। ये संदेश हमें किया गांव हेपर सोगा, तहसील ओसा, जिला लातूर से उस्मान शेख फौजी, सायरा बानो शेख, बाबा शेख, सिमर शेख और करिश्मा शेख का। तो आइए सुनाते हैं हम आप सभी को आप सभी की पसंद का ये गीत आया सावन झूम के फिल्म से। गीत को गाया मोहम्मद रफ़ी ने। क्षमा करें, ये गीत हम किसी कारण से नहीं सुनवा पाएंगे। आप सुने दो रास्ते फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में।

अब कुछ मेल पे जो संदेश हम तक पहुँचे वो शामिल करें। ये संदेश हमें किया जिला गंगानगर गोविंदपुरा 18 जीजी से खुशीराम रिणवा, मोहन महला, विजय झाझरिया, पवन जाखड़, चमन महला, ऋषभ महला, मनीष महला, उदेश पिंचर, दीपक महला, राम प्रताप जी सहारण नेतेवाली से, हनुमान खैरवा, अवतार सिंह, लालचंद।

0: महिला लिखते हैं कि गीत गंगा हम नियमित रूप से सुनते हैं, कार्यक्रम हमें बेहद पसंद आता है, कोई भी गीत आप हमें सुनवाएं। बिल्कुल, आप कार्यक्रम सुने। ये संदेश हमें मेल पर मिला साधु शैल से, हमारे नियमित श्रोता राम कुमार रिवार्ड, चंद्रकला रिवार्ड का। लिखते हैं कि हसरतें बहुत थी तुम्हें अपना बनाने की, एक कम का आंसू सारी तमन्ना बाह ले किया। क्या बात है रिवार्ड साहब, बहुत खूबसूरत लाइन आप लिखते हैं। और जो गीत आज आप सुनना चाहते हैं वो हम आज आपको नहीं सुनवा पाएंगे, क्योंकि आज हम गीतकार आनंद बख्शी साहब को याद कर रहे हैं। उनके जन्मदिवस पर उन्हीं के लिखे गीत हम आज आपको सुनवाएंगे, यकीनन आपको पसंद आएंगे, हमारे और आपके साथी श्रोताओं की पसंद के। ये संदेश हमें किया गांव फरासी हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी ने। लिखते हैं कि कोई भी गीत आप हमें सुनवा दें, बिल्कुल आप कार्यक्रम सुनते रहें। ये संदेश हमें लिखा है मॉडल टाउन करनाल से सुधीर, नूतन, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापत, किरण ठाकुर, शशिबाला, आशा गुगलानी और मीनाक्षी तिवारी। लिखते हैं कि कोई भी गीत आप हमें सुनवा दें, बिल्कुल आप कार्यक्रम सुनते रहें, हम आपको आपकी पसंद के गीत जरूर सुनवाएंगे। ये संदेश हमें किया कोड़ी सेक्टर 5 सूर्यनगर जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी करवी, बेबी बाय और हिमाक्ष ने। लिखते हैं कि गीत गंगा कार्यक्रम हमें बेहद पसंद आता है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रेडियो आवाज़ रिपोर्टिंग मधुबनी बिहार से AK झा जी, लक्ष्मण जगताप, फरियाद हुसैन अंसारी, सदानंद मडुरकर, बलदेव दामोदर जी, कृष्ण कुमार डाबी, किरण वीर और दुर्गा प्रसाद सैनी की ये मेल हम तक पहुंची है। ये मेल हमें की गांव लसूड़िया पाता तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से गोविंद वैष्णव दिव्या, सुमन कोमल परी, कृतिका रमेश चंद्र तांगी ने। लिखते हैं कि गीत गंगा हम नियमित रूप से सुनते हैं, कार्यक्रम हमें पसंद आ रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया। लखवाली हट से मास्टर भवनलाल, कृष्णा, सौरभ, विशाल, राजबाला, नव्या, लक्षिता, ममता, मोहम्मद, रफीक, मुकनाराम। लिखते हैं कि कोई भी गीत आप हमें सुनवा दें, बिल्कुल आप कार्यक्रम सुने, हम आपको संभव हुआ तो आपकी पसंद का वरना हमारे श्रोताओं की पसंद के गीत सुनवाएंगे। हरियाणा से अंकित कांगड़ा, मोनी कांगड़ा, प्रिंस बोध, सीताराम कांगड़ा और साहिल कांगड़ा का ये संदेश हम तक पहुंचा है। गांव कलमंडी खुर्द जिला झालावाड़ राजस्थान से अनूप सिंह नथावत और पूरा परिवार हमारा कार्यक्रम सुन रहा है। ये मेल हमें किया मलोट पंजाब से राजकुमार इंदौरा, विकास इंदौरा, गैरी इंदौरा, बेबी दिव्या इंदौरा। लिखते हैं कि कोई भी गीत आप हमें सुनवा दें, बिल्कुल आप कार्यक्रम सुने। एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा और तन्वी बोध का ये संदेश हम तक पहुंचा है। ये संदेश हमें किया विक्रम कड़वासरा ने गांव कलाना तहसील भादरा राजस्थान से, इनके साथ सचिन, सतीश, योगेश कड़वासरा, युद्धव कड़वासरा और लीलाधर स्वामी। लिखते हैं कि गीत गंगा कार्यक्रम हमें बेहद पसंद आता है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेला में किया चक 5 MD पत्रोड़ा से अनूपगढ़ राजस्थान से मंगल जनागल, श्रीमती रोशनी जनागल, अंकुर जनागल, इंदु और डॉक्टर सुनील जनागल। लिखते हैं कि हमारी पसंद का गीत यदि संभव हो तो जरूर सुनाएं, बिल्कुल आप कार्यक्रम सुनते रहें, हम आपकी पसंद का गीत भी सुनवाने का भरपूर प्रयास करेंगे, वरना यकीनन आपके और आपकी साथियों की ही पसंद के गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। ये संदेश हमें किया बीकानेर रानी बाजार से बिट्टू झाम और रानी झाम ने। लिखते हैं कि कोई भी गीत आप हमें सुनवा दें, बिल्कुल आप कार्यक्रम सुने, यकीनन आपको हमारे श्रोताओं की पसंद के गीत भी पसंद आएंगे। ये संदेश हमें लिख करके भेजा है गांव नलोई तहसील शिवानी मंडी जिला हिसार से सज्जन जांगड़ा, राजबला, नवीन, मनदीप, प्रियंका, सपना, नीतू, कार्तिक और नन्हा वेदांश। लिखते हैं कि गीत गंगा हम नियमित रूप से सुनते हैं, कार्यक्रम हमें पसंद आता है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप कार्यक्रम यूं ही सुनते रहें और जो गीत हम पहले आपको नहीं सुनवा पाए वो हम आपको सुनवाते हैं, आइए सुने।
1: ये शमा तो जली

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में अभी आपने आया सावन झूम के फिल्म का ये गीत सुना। गीत के बोल आनंद बख्शी के, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का। सुनना चाहते थे आप सभी और व्हाट्सएप पे जो संदेश हमें मिले हैं वो हम आप शामिल करें। तहसील भादरा अनूप शहर से गजानंद सारस्वत, डॉक्टर तारचंद सारस्वत, सोनू पवन, साहिल या राघव, मुरारी लाल शर्मा, ममता मीनू, किनू, मदन लाल शर्मा, सीआई कृष्ण कुमार, महावीर लोहरा और परिवार के लोग लिखते हैं कि कार्यक्रम हमें बेहद पसंद आता है। गांव सूर्यवाड़ा जिला हनुमानगढ़ से डॉक्टर सतनाम सिंह, सावन, सावना, जसवीर, जस्सी और सुमन लिखते हैं कि कोई भी गीत आप हमें सुनवाएं। रिगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा का संदेश हम तक पहुँचा है। कोहला हनुमानगढ़ से महावीर सुतार, नरेंद्र सुतार, सुनील सुतार, मोहन सुतार, अमरजीत सुतार और भजन लाल मेला और साथ में पवन हमें संदेश करते हैं। राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग और तानिया नारंग का बठिंडा रोड मंडी डबवाली से ये संदेश हम तक पहुंचा। वडिंगेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा का संदेश हम तक पहुंच गया है। ये संदेश हमें किया धनौरी तोलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और अयान बाबू ने। संदेश हमें किया टोरोवाल जिला नवाशहर पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमार थांदी, डॉक्टर प्रियंका थांदी, डॉक्टर प्रशांत थांदी, डॉक्टर प्रियम थांदी, बेबी वामिका वाणी और इनके परिवार के लोग लिखते हैं कि गीत गंगा कार्यक्रम हमें बेहद पसंद आता है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। गांव खमंडिया सूरतगढ़ से जगदीश ढुकिया, प्रमिला ढुकिया, ज्योति, शिवम ढुकिया, सरिता, सचिन, अमन्ना, तमन्ना, साइना, विश्व

मोम की गुड़िया फिल्म का गीत अभी आपने सुना। व्हाट्सएप संदेश कुछ और हम शामिल करें। जमानिया गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल, स्वाति जायसवाल का ये संदेश हम तक पहुंचा। संदेश हमें किया गांव पंचायत बैठना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से पलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा, पंटी बबली वर्मा ने। डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, तन्मय गजभिये का संदेश हम तक पहुंचा। ज्योतिनगर नोखा राजस्थान से पुखराज बड़गुजर, कैलाश मिस्त्री, गोर्धन धरा, फरसराम सोलंकी, श्यामलाल चौहान, घनश्याम भार्गव, बाबू गौरी और हसन सिक्का का ये संदेश हम तक पहुंचा है। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया, दिशानी, निमित आहूजा का ये संदेश हम तक पहुँचा। मेहरनगर उमरखेड़ा महाराष्ट्र से अभिजीत गवाड़कर, राही, सरिता, प्रणीता, सिद्धांत, लाडला, टुकटुक, एकांश, सुमित, कुमारी ध्वनि, गवाड़कर परी का ये संदेश हम तक पहुंचा है। कुम्हार गली श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता दले, अनिकेत दले, रोहिणी, ऋषिकेश, जीविका और सानिका दले का ये संदेश हम तक पहुंचा। गांव हीरावाड़ी फाजिलका पंजाब से सुभाष गोदारा, विमला गोदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु गोदारा, सरवन रिणवा, हंसराज भाटिया, मनीराम, रणजीत राम किरोड़ीवाल, सुरेंद्र भादू लिखते हैं कि गीत गंगा लाइव सुन रहे हैं, कार्यक्रम हमें बेहद पसंद आता है, बहुत बहुत शुक्रिया। कहते हैं कि आनंद बख्शी पर आज का कार्यक्रम है, कोई भी गीत आप हमें सुनवाएं, बिल्कुल आप कार्यक्रम सुने। मोहाली पंजाब से बबल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा का ये संदेश हम तक पहुँचाए। मेरठ से दिग्दर्शन कविता गोड़ लिखते हैं कि कोई भी गीत आप हमें सुनवा दें। शेरगांव बुलडाड़ा महाराष्ट्र से संतोष, तेजस और लोकेश का ये संदेश हम तक पहुंचा है। हितेंद्र दास का संदेश आसाम से हम तक पहुंच गया है। ये संदेश हमें किया कस्बा कुनीर यूपी से फारूक अली खान, फैजी फैराज, फरहीन फराज, फारिया और ताहिरा ने। पटेल नगर मलोट से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीतारानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, आरजू जाजोरिया, गुड्डू का ये संदेश हम तक पहुंचा है। संदेश हमें किया हिंदुस्तान रेडियो मित्र बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली, सोनम और आशीष विश्वकर्मा ने। मोहम्मद कलीम अंसारी, जहरा बेगम अंसारी, मोहम्मद दयान अंसारी, मोहम्मद उस्मान अंसारी का गज टुटवारा से ये संदेश हम तक पहुँचा है। काशी निवास बंगाली पंजा नागपुर से प्रकाश रंभाड़े, आरती रंभाड़े, जानवी रंभाड़े और वैष्णवी रंभाड़े के साथ हर्षल रंभाड़े का ये संदेश हम तक पहुंचा। भूपेंद्र सुथार संगरिया से हमें संदेश करते हैं। ये संदेश हमें लिखा नाईवाला जिला हनुमानगढ़ से वेद मिड्ढा और अलका मिड्ढा ने। संदेश हमें किया गांव कल्याण मलका जिला बठिंडा पंजाब से अमृतपाल सिंह रामगढ़िया, परमिंदर सचनूर, मनिंदर सिंह ने। कहते हैं कि कोई भी गीत आप हमें सुनवा दें। गांव मवन जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा का ये संदेश हमें लिख

का किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास और आशा देवी का ये संदेश हम तक पहुंचा है। तहसील ओसियां जिला जोधपुर से श्रीराम जानी और करवित जानी का ये संदेश पहुंचा हम तक। अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, कव्या मल्होत्रा, भाई सुचार सिंह पाठक और जयपाल यादव का ये संदेश हम तक पहुँचा। जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन और माहिरा नूर का ये संदेश हम तक पहुंचा। चकपंद्रा पीएस से के आर भाटिया, प्रेरणा भाटिया, डिंपल भाटिया और रोशनी का ये संदेश पहुंचा। करणवीर हाउस बुच्चो कैंचिया बठिंडा पंजाब से प्रेम सिंह जोड़ा, मनजीत कौर जोड़ा, करणवीर करण, दीपेंद्र वरिंदर, कुलदीप सिमू, एकम दमन और अभिज्योत का ये संदेश हम तक पहुँच गया है। कलानौर हरियाणा से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा का ये संदेश पहुँचा। ये संदेश हमें किया भोपाल मध्य प्रदेश से मनीष श्रीवास्तव, हर्षिता लाली श्रीवास्तव और पूरा परिवार। सांगली जिले से अल्ताफ हजूरे, सहुला सबादत, किरण हजूरे, हुजरे और रेहान शेख का ये संदेश हम तक पहुंचा। ये संदेश हमें लिखा लेकिन केवल फ़ोटो खींच के भेजिए जो साफ दिखाई नहीं दे रही, इसलिए हम उनका संदेश शामिल नहीं कर पाएंगे। विजय पाटिल महाराष्ट्र जालना से ये संदेश हम तक पहुंचा। और प्रतिष्ठान रेडियो श्रोता संघ नेहरू चौक पैठन से सुरेश जांघव, अनिता आरती, पूजा प्रसाद, सोनल और बेबी सिया जांधव का ये संदेश हम तक पहुंचा है। आइए आप सभी को सुनवाते हैं ये गीत।

जो ये एक संदेश बचा है जो फ़ोटो के रूप में था उसको भी हम शामिल करें। चक 58 NP रायसेनगर से सुल्तान राम मलखेट, सरस्वती देवी मलखट, हरवंश लाल मलखट, बनवारी लाल मलखट, गोपी राम मलखट, ललित कुमार मलखट, नरेंद्र कुमार मलखट और मीनाक्षी मलखट और पूरा मलखट परिवार हमारा कार्यक्रम सुन रहा है। आप ये गीत सुनें।

किशोर कुमार के गाए अमर प्रेम फिल्म के इसी गीत के साथ अपने साथी विकास पारिक को गीत गंगा कार्यक्रम समाप्त करने की इजाज़त दें। नमस्कार। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल

किशोर कुमार के गाए अमर प्रेम फिल्म के इसी गीत के साथ अपने साथी विकास पारिक को गीत गंगा कार्यक्रम समाप्त करने की इजाज़त दें। नमस्कार, हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 988 किलो हर्ट्स पर, FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर। रात्रि के 11 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।

0: मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार स्थगित हुई। दोनों सदन तीन बार स्थगित हुए। विपक्षी दल नीट पेपर लीक मामले और अन्य मुद्दों पर नारेबाजी करते रहे। हंगामे के कारण दोनों सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल भी नहीं हो सका। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला और बाद में पीठासीन अधिकारियों ने विरोध कर रहे सदस्यों से बार बार सदन की मर्यादा बनाए रखने और तय कामकाज को आगे बढ़ाने का आग्रह किया, लेकिन हंगामा जारी रहने के कारण सदन को दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा का हाल भी कुछ ऐसा ही रहा। राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन और डिप्टी चेयरमैन हरिवंश की बार बार अपील के बावजूद विरोध कर रहे सदस्य नारेबाजी करते रहे, जिसके कारण सदन को स्थगित करना पड़ा। सुपर्णा सेकिया और आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीतिक बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने ये जानकारी दी। मध्य प्रदेश विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पारित कर दिया। मानसून सत्र के दूसरे दिन सदन में हंगामे और विपक्ष के कड़े विरोध के बीच ये विधेयक पारित हुआ। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए लागू प्रवर्तन उपायों की समीक्षा की। प्रवर्तन कार्यबल की बैठक के दौरान आयोग ने बताया कि उसने उड़न दस्तों ने पहली से 13 जुलाई के बीच 175 निरीक्षण किए। इनमें निर्माण और विध्वंस स्थलों, औद्योगिक इकाइयों तथा डीजल जनरेटर सेट से संबंधित गतिविधियों का निरीक्षण शामिल है। युवा कार्य विभाग ने माई भारत पोर्टल पर राष्ट्रीय ध्वज प्रश्नोत्तरी 2026 का शुभारंभ किया है। ये प्रश्नोत्तरी 15 अगस्त तक खुली रहेगी। इससे देश भर के युवाओं को भारत के राष्ट्रीय ध्वज तथा उसके महत्व के बारे में अपनी समझ को बढ़ाने का अवसर मिलेगा। युवा कार्य और खेल मंत्रालय ने कहा है कि इस पहल का उद्देश्य युवाओं में भारत के राष्ट्रीय ध्वज के इतिहास, विकास, महत्व और गरिमा के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और उत्तरी मैसेडोनिया ने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और आपसी सम्मान पर आधारित अपने गहरे और दोस्ताना रिश्तों को फिर से मजबूत किया है। स्कोपिये में राष्ट्रपति गोर्डाना सिल्जानोवस्का दावकोवा के साथ बातचीत के बाद राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि दोनों पक्षों ने आपसी सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की। पश्चिम एशिया में ईरान और अमेरिका के एक दूसरे पर लगातार 10वें दिन हमले जारी रहने से हॉर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर रहे एक टैंकर पर हमला किया, तो वहीं अमेरिका ने